कारण शब्दित होते हैं। प्राचीन नगरी वाराणसी के मध्य बहने वाली दो पौराणिक नदियाँ वरुणा और असी के कारण काशी का नामकरण वाराणसी हुआ। असी का अस्तित्व कब का खत्म हो चुका है और वरुणा पूरी तरह गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर बसे इस पौराणिक स्थल पर गंगा जमुना तो अभी भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं, लेकिन सरस्वती कब की विलीन हो चुकी है। राजस्थान में ऐसी कुछ नदियां हैं जो समुद्र में नहीं मिलती हैं, ये सभी झीलों में मिल जाती हैं और रेत में समाप्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मरुस्थल की नदियाँ ऐसी होती हैं जो कुछ दूरी तक बहती हैं और मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती हैं। ऐसी नदियों में लूनी, मच्छे, स्पैन, सरस्वती, बानस और घग्घर जैसी अन्य नदियाँ शामिल हैं। मौत के कगार पर खड़ी इन नदियों में हमारी गंगा भी है। यदि हालात नहीं सुधारे गए तो आने वाले दो दशकों में इसका अस्तित्व इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। यह खुलासा विश्व वन्यजीव कोष WWF की एक रिपोर्ट में किया गया है। गंगा के बिना भारत का अस्तित्व कल्पनातीत है, लेकिन लगता है यह कल्पना हकीकत में बदलने जा रही है। दुनिया गंभीर जल संकट के दौर से गुजर रही है। इस पर नियंत्रण करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर की सरकार और नीति निर्माताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि यह समस्या जलवायु परिवर्तन से कम खतरनाक नहीं है। गंगा, सिंधु नदियां प्रदूषण और जलवायु प्रदूषण के कारण गंभीर संकट में है। आज गंगा के हिमालयी उद्गम गंगोत्री और उसके आसपास के क्षेत्र में फैलती जा रही गंदगी को लेकर काफ़ी अफरा तफरी मच रही है। गंगोत्री का पूरा इलाका कचरे गंदगी से घिरता जा रहा है। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या पटना जैसे लाखों की आबादी वाले गंगा तटीय नगरों के निवासी नहाना तो क्या, शायद घूमना भी पसंद ना करेंगे। दिल्ली, आगरा या मथुरा में यमुना की जो दुर्दशा है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। किसी भी जल में जीवन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम से कम 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, किंतु दिल्ली में एक हाल के नमूना परीक्षण के दौरान कई जगहों पर देखा गया कि ऑक्सीजन जल से पूरी तरह गायब है। पौराणिक काल से हम नदियों की स्तुति करते चले आ रहे हैं, पर हमारी क्षुद्र मनोवृत्ति यथार्थ में अपनी क्षुधा तृप्ति के लिए सबका नाश करने को तत्पर है। पर्यावरणविदों का मानना है कि औद्योगिक प्रदूषण के अलावा बूचड़खानों की बढ़ती हुई संख्या, धोबी घाटों और झोपड़पट्टियों की हजारों हमारी नदियों को निरंतर जहरीली बनाने में बड़ी भूमिका रही है। धर्म के नाम पर असंख्य मूर्तियों का विसर्जन नदियों में होता है। आस्था जैसी बातों पर प्रशासन भी हस्तक्षेप करने से कतराता है। दिल्लीवासी सलेक चंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने के लिए दायर किया था, किंतु न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, यह अदालत इतने राज्यों को रोक लगाने का आदेश देने में असमर्थ है। झारखंड में हो रहे अनियमित खनन और खनिज उद्योगों ने स्वर्णरेखा नदी को गाद से पाट दिया है।
1995

0: में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP शुरू हुआ था। भारत की मुख्य नदियों को साफ सुथरा बनाना उसका परम लक्ष्य था। 10 राज्यों में फैली 18 अति गंदी हो चली नदियों को सामान्य दशा में वापस लाने के लक्ष्य के इस कार्यक्रम का बजट 772 करोड़ रुपये का रखा गया था। 1985 में शुरू हुए गंगा एक्शन प्लान की अगली कड़ी ही थी यह योजना। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में अब 20 राज्यों के 167 शहर शामिल हैं और कुल नदियों की संख्या अगस्त 2009 में जोड़ी गई पंचगंगा को मिलाकर इसकी संख्या 38 हो गई है। अभी हाल ही में गंगा की सफाई के लिए विश्व बैंक ने $1 अरब के अनुदान की घोषणा की है। विश्व बैंक ने कहा है कि गंगा की सफाई के दौरान नदी के पूरे 2500 किलोमीटर के दायरे का ध्यान रखा जाएगा। स्थान स्थान पर सीवेज संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नाकाफी है और गंगा पर खतरे के बादल बरकरार छाए हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गंगोत्री ग्लेशियर खतरनाक रफ्तार से सिकुड़ रहा है और इस खतरनाक रफ्तार की बात की संभावना से अधिक है कि हमारी पवित्र नदियां गंदगी और कीचड़ से भरे छोटे छोटे तालाबों में ना तब्दील हो जाएं। चेन्नई में अडयार और कुवम नदियां औद्योगिक प्रदूषण के कारण दम तोड़ने की स्थिति में हैं। कुछ समय पहले राजस्थान के अलवर जिले के छोटे से गांव भीखमपुरा में हुए नदी संरक्षण सम्मेलन में नदियों का इकोलॉजिकल फ्लो बरकरार रखने वो बायोडायवर्सिटी बहाल करने की मांग जोरदार ढंग से उठाई गई थी। गंगा बेसिन प्राधिकरण द्वारा नदी का सीमांकन और अतिक्रमण को हटाने का मुख्य लक्ष्य रखा गया। अतिक्रमण से मुक्ति के बाद हरित पट्टी का विकास और जमीन का फोकस था और शायद यही वक्त की सबसे पहली जरूरत भी थी। हमें इसके अलावे राज्यों की छोटी छोटी नदियों को भी मिटने से बचाने की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सोन, कोइलवर, चांदन, चीर, बड़ुआ, अजय, दामोदर, सुंदर, कझिया, चंपा, अंधरी, कोशी, गंडक, बागमती, पुनपुन, घाघरा सहित कई नदियों के अस्तित्व मिटने के कगार पर हैं। नदी का सीमांकन और भूजल का पुनर्भरण नहीं हुआ तो पानी का बड़ा संकट सामने आएगा। पहाड़ों का खनन और वनों की कटाई रोकनी होगी। हजारों साल पहले इस ग्रह पर रहने की जिस सुगठित जीवन शैली का आविष्कार रावी और सिंधु नदी के तट पर किया गया था वह ताजे जल के अधिकार पर ही आश्रित थी। इतिहास बताता है कि जब कभी भी धरती पर पानी का प्रवाह थमा है मानव सभ्यता के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। पानी एक वैश्विक और बहुमूल्य संसाधन है जिसका बाजारीकरण कदापि नहीं होना चाहिए। इसलिए जल का प्रबंधन भी वैश्विक नजरिए से किया जाना चाहिए।
1: अभी आपने वार्ता सुनी मनोज कुमार मिश्रा से। ग्लोबल वार्मिंग के कारण नदियों पर उत्पन्न हो रहे खतरे विषय पर अभी आपने वार्ता सुनी। वार्ताकार थे मनोज कुमार मिश्रा। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। वक्त हुआ है 7:30। अब बारी है फिल्मी नगमों की।

0: अभी आपने सुना अजा नचले फिल्म का नगमा राहत फतेह अली खान की आवाज़ थी। गीत लिखा था जयदीप साहनी ने, संगीतबद्ध किया था सलीम सुलेमान ने। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को टटोलने का। सबसे पहली सुर्खी है एक दुखद घटना से पटी हुई सारे अखबार। जोरहाट के वायुसेना स्टेशन पर सुबह 10 बजे हादसा, सिर्फ सह पायलट ही बचा। विमान में लैंडिंग के बाद आग, पायलट समेत 5 की मौत, इनमें से 2 बिहार के। आज के सभी अखबारों ने इस खबर को छापा है जिसमें विशेष रूप से लिखा गया है असम के जोरहाट एयरबेस पर शनिवार को भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान परिवहन विमान लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार लैंडिंग के बाद विमान में भीषण आग लग गई, इसमें वायुसेना के 5 कर्मियों की मौत हो गई। इसमें जहानाबाद के रहने वाले वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार और कोइलवर के अग्निवीर दानिश आलम भी शामिल हैं। ये बहुत दुखद घटना और इसे सभी अखबारों ने छापा है। इसके अलावा एक खबर छपी है भारतीय सुरक्षा से मामले की खबरों से जुड़ी हुई कि 5,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइलों के खिलाफ सुरक्षा कवच तैयार, वायुमंडल के अंदर अंतरिक्ष में भी मिसाइलें नष्ट की होंगी। 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक एंडो एटमॉस्फेरिक और उससे ऊपर अंतरिक्ष के लिए एक्सो एटमॉस्फेरिक सुरक्षा कवच हासिल हुआ। और इस खबर के बारे में लिखा गया है पाकिस्तान और चीन से बढ़ती मिसाइल खतरे के बीच भारत में अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता का बड़ा प्रदर्शन किया। DRDO ने दिखाया कि भारत अब लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर मार गिराने में सक्षम है। इसके लिए 10 और 11 जून को 24 घंटे के अंदर लगातार 3 सफल परीक्षण किए गए। अब अमेरिका रूस की कतार में भारत भी। इसके अलावा 30 जून को संभालेंगे पद, धीरज सेठ होंगे अगले आर्मी चीफ, ड्रोन फोर्स लाने का श्रेय है धीरज सेठ को। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के अगले आर्मी चीफ होंगे। 30 जून को मौजूदा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सेवानिवृत्त होने के बाद पद संभालेंगे धीरज सेठ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कसवासला के छात्र रहे धीरज सेठ 1986 में आर्मर्ड कॉर्प्स में कमीशन हुए थे। इसके अलावा इसके अखबारों में और विशेष क्या है तो फीफा फीवर में डूबे भारतीय राज्य, फुटबॉल को लेकर जुनून चरम पर, हर गली में कटआउट, बड़ी स्क्रीन पर मैच, सज गई फीफा गली, थाईलैंड से आ रही जर्सी, घर में मिनी स्टेडियम सुबह तक जाग रहे फैंस, ये अखबारों की अलग अलग सुर्खियां हैं। ये सभी सुर्खियाँ फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड ने 17वें मिनट में एम्बोलो को पेनाल्टी से कतर पर बनाई बढ़त, स्विट्जरलैंड हाफ टाइम तक 1-0 से आगे थी। फीफा वर्ल्ड कप से ही जुड़ी हुई ये खबर भी है। इसके अलावा फ्रांस से 12 समझौते संभव, राफेल के सोर्स कोड लेने पर भी होगी बात, 3.25 लाख करोड़ की डील यात्रा के बाद फैसले की लगी लेगी कैबिनेट। प्रधानमंत्री के 6 दिन के फ्रांस स्लोवाकिया के दौरे पर, G7 सम्मेलन में ट्रंप से मिलेंगे, ट्रेड डील पर भी होगी चर्चा, ये आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। इसके अलावा नालंदा की बावन बूटी, गया की पत्थरकट्टी और भोजपुर के पेड़िया पेंटिंग को जीआई टैग, इलाके के बाहर नकल पर लगेगी रोक, ग्लोबल बाजार में कला के केंद्र कद्रदानों का बढ़ेगा भरोसा, ज़्यादा मिलेगी कीमत। आज के अखबारों ने जीआई टैग मिलने पर इसे सुर्खी बनाई है। इसके अलावा विक्रमशिला से तुसी जुड़ी हुई खबर छपी है। डीएम ने किया निरीक्षण, कहा सुरक्षा कर्मियों के लिए नए शेड और शौचालय बनेंगे, सेतु पर ट्रैफिक सुधार होगा, बढ़ेगी सुविधा, सेतु पर रात 10 बजे के बाद ट्रकों का भी हो रहा परिचालन, नवगछिया की ओर पुलिस बल बढ़ाए जाएंगे, कोटा केबिन क्षतिग्रस्त हुआ है, ये आज के अखबारों की सुर्खियाँ। इसके अलावा तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के से जुड़ी हुई खबर छपी है। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का हाल, आवेदन 38,844 और चयन 23,374, नामांकन मात्र 11,000, 10 कॉलेज बढ़े चयनित, आज छात्रों में आधे भी नामांकन को अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में स्नातक में पिछले वर्षों की तुलना में इस बार 2026-30 के सत्र के लिए सबसे कम नामांकन की स्थिति बताई गई है। तो ये आज के अखबारों की सुर्खियाँ थी। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब आइए सुनते हैं टू स्टेट्स फिल्म का नगमा। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है, संगीत बद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं अरिजीत सिंह, चिन्मयी श्रीपदा और साथियों की।

अभी आपने सुना टू स्टेट्स फिल्म का नगमा अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा था, संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लोय ने, आवाजें थी अरिजीत सिंह, चिन्मय श्रीपदा और साथियों के कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। आज 14 जून है और आज के इतिहास को टटोलते हैं। आज के इतिहास के पन्नों में क्या क्या दर्ज है 14 जून के लिए, तो आज की तिथि को ही 1907 में 14 जून को नॉर्वे की महिलाओं को सर्वप्रथम वोट डालने का अधिकार मिला था। और आज की तिथि को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। 1901 में 14 जून को पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और रूस और पोलैंड के बीच पेलियानो शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1634 में। आज की तिथि यानी 14 जून को ही। इसके अलावा अगर जन्मदिन के बारे में देखें तो 14 जून को 1996 में प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज भारतीय महिला मुक्केबाज निखत जरीन का जन्म हुआ। 1960 में कुमार मंगलम बिड़ला जो मशहूर भारतीय उद्योगपति उनका जन्म हुआ था। 1955 में किरण खेर मशहूर भारतीय फिल्म अभिनेत्री उनका जन्म हुआ। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कलाकार हीराबाई बरोदकर का जन्म हुआ था 1905 में 14 जून को। और प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक आविष्कारक सतीश चंद्र दास गुप्ता का जन्म हुआ था 1880 में 14 जून को। इसके अलावा निधन की बात करें तो मशहूर भारतीय हिंदी सिनेमा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया था 2020 में आज की तिथि यानी 14 जून को। 2011 में असद अली खान का निधन हो गया था, प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक थे। 14 जून 2011 को उनका निधन हुआ था। और मशहूर भारतीय भौतिक विज्ञानी श्रीनिवास श्री कृष्ण का निधन हो गया था 1961 में 14 जून को। तो आज के इतिहास के पन्नों को टटोल रहे थे हम 14 जून के बारे में, इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है, कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। आइए सुनते हैं एक और गाना, वो लम्हे फिल्म का नाम है, गीत सईद कादरी ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने, आवाजें हैं ग्लेन जोन और साथियों की।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना वो लम्हे फिल्म का नगमा, ग्लेन जोन की आवाज़ थी। इसके साथ ही कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला आज अपने समापन तक आ पहुंचा। आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा पता है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन है 8120001। अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं हमारी मेल आईडी नोट करें। हमारी मेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। आप इस पर हमें अपनी सुझाव, शिकायत, प्रशंसा या कोई भी अपने विचार हमें लिख सकते हैं। तो अब आज के इस कार्यक्रम को समेटने की अनुमति चाहता है रविंद्र। नमस्कार।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने ही वाले हैं। समाचारों के लिए अब आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारण में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
4: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये वाकया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय

0: कर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
7: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. U.S. President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister.

0: वजीर आजम मोदी ने भारतीय बिरादरी के अफराद से पुरजोश अंदाज में खुशगवार मुलाकात की और रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से महजूज हुए। इन प्रोग्रामों में भारतीय क्लासिकी रक्स की मुख्तलिफ शक्लें, जिनमें कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम शामिल हैं, पेश की गईं। ये रक्स फ्रांसीसी और इतालवी फनकारों ने पेश किए। ये पुरजोश इस्तकबालिया भारत और फ्रांस के दरमियान मजबूत सकाफती और अवामी रवाबित की अक्कासी करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के साथ नीस में पैलेस देस एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत के स्टार्टअप और इख्तराई इको निज़ाम को उजागर किया जाएगा, जहाँ तकरीबन 120 स्टार्टअप आलमी सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी कायदीन के सामने अपनी इख्तराआत पेश करेंगे। तकरीब के बाद वजीर आजम मोदी और सदर मैक्रों विला कैरलोस में दो तरफा बातचीत करेंगे। यही साल भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को खुसूसी आलमी स्ट्रेटजिक शराकतदारी की सतह तक बढ़ाने के बाद पहली मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी, तजारत और इख्तरा के शोबों में ताउन के अलावा अहम इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर भी तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। इसके बाद वजीर आजम अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत स्लोवाकिया के लिए रवाना हो जाएंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
0: स्लोवाकिया में भारत की सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक व तआवुन के नए मौके फराहम करेगा और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में भी मुआविन साबित होगा। मोहतरमा अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में आकाशवाणी के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू कर रही थी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये वाकया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते फ्रांस में मुनक़िद होने वाली G7 समिट के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक इन मुलाकातों में इक्तिसादी तरक्की, सप्लाई चेन्स, मस्नूई जहानत, सरमायाकारी में इश्तराक और आलमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। सदर ट्रंप बुध के रोज वजीर आजम मोदी के साथ एक दो तरफा मीटिंग करेंगे, जिसके बाद वो एक जोहराने में शिरकत करेंगे। इस जोहराने में G7 मुल्कों के रहनुमा, शराकतदार और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स भी शरीक होंगे। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसे जदीद मस्नूई हीटिंग निजाम को तैयार करने के लिए एटमी तवानाई के महकमे के साथ इश्तराक किया है, जो चांद की सतह पर उतरने वाले खलाई जहाज को चांद के बेहद ठंडे मौसम से महफूज रख सके। बेंगलुरु में CSIR राइस कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए इसरो के सरबराह ने

0: बताया कि शमसी तवानाई वाले चंद्रयान 3 मिशन का खलाई जहाज विक्रम चांद पर महज 14 दिन ही काम कर पाया। इसरो अब एटमी तवानाई के महकमे के साथ एक ऐसे खलाई जहाज को तैयार करने के लिए काम करेगा जो 200 दिन तक चांद की सतह पर काम कर सकेगा। पिछले 12 वर्षों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम उन इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जो मोदी सरकार ने शहरियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए किए हैं।
1: इस्लाहात के 12 साल, एतमाद के 12 साल बन चुके हैं। चाहे वो जीएसटी हो, फेसलेस टैक्स का निजाम हो या डिजिटल इंडिया, हर पहल ने शहरियों को ये एहसास दिलाया है कि वो मुल्क की तामीर में शरीक है। मरकजी बजट 2025-26 में आमदनी टैक्स स्लैब्स और टैक्स की शरहों में जाम तब्दीलियां की गई हैं ताकि तमाम टैक्स दहिंदगान को फायदा पहुंच सके। नए टैक्स निजाम के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स वाजिबुल अदा नहीं है। 88% टैक्स दहिंदगान को आमदनी 12 लाख रुपए तक है और वो बराह रास्त फवायद हासिल कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद माली साल 2022 में 6.90 करोड़ से बढ़कर माली साल 2025 में 9.20 करोड़ हो गई है। अगले सिलसिले के जीएसटी निजाम ने टैक्स के अमल को मजीद आसान बना दिया है और शहरियों के रहन सहन को सहल बनाया है। टैक्स का ढांचा अब बुनियादी तौर पर 5% और 18% के स्लैब्स पर मुश्तमिल है, जिसके नतीजे में टैक्स दहिंदगान की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। इस साल अप्रैल में जीएसटी की वसूली 2.42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो अब तक की आला तरीन सतह है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी इस्लाहात मुल्क के सबसे अहम पॉलिसी फैसलों में से एक है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इस टेक्नोलॉजी को सियासत और पॉलिसी साजी दोनों शो में मुअसर तरीके से इस्तेमाल किया है। 5G खिदमात सिर्फ 22 महीने में मुल्क के 99.6% अजला तक पहुंच चुकी हैं। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97.07% कमी आई है, जिससे इंटरनेट ज्यादा सस्ता और काबिल रसाई हो गया है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज शिमाल मशरकी भारत के मुख्तलिफ इलाकों अंडमान और निकोबार जजायर, केरला, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के मजीद कुछ इलाकों और जनूबी छत्तीसगढ़ के बाज़ हिस्सों में पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में महकमाए डाक की जानिब से ड्रोन पर मबनी मेल ट्रांसमिशन खिदमात के आगाज का ऐलान किया है। मजकूरा खिदमात मंडी के सदर पोस्ट दफ्तर और रिहारधर शाख के पोस्ट दफ्तर के बीच शुरू की गई हैं। इस पहल का आगाज मरकजी वजीर के ग्रामीण डाक सेवकों और डाक असिस्टेंटों के साथ तबादला ख्याल के दौरान मौसूल हुए फीडबैक के तनाजुर में किया गया है। इस मीटिंग के दौरान दूर दराज के इलाकों में ज्यादा तेज और मुअस्सर कनेक्टिविटी की जरूरत को उजागर किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए आज एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे और इसके फौरन बाद अहम गुजरगाह आबनाए हुरमुज को तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये मुआहदा तवक्कुआत के मुताबिक पायाए तकमील तक ना पहुंच सका तो मजीद हमलों का ऑप्शन भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि ये अमल कामयाब होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो उनके पास आखिरी मुतबादल भी मौजूद है। अमरीकी सदर ने मुजव्वजा मुआहदे का मुवाजना साल 2015 के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से भी किया। ईरानी हुकाम ने ईरान के मरहूम रहबरे आला आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात के शेड्यूल का ऐलान किया है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात की तकरीब तेहरान में इमाम खुमैनी इबादतगाह के मकाम पर 4 और 5 जुलाई को मुनक्किद की जाएगी। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मुमलिकत प्रताप राव जाधव ने आज खून अतिया करने वालों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के लोगों से अपील की है कि वो रजाकाराना तौर पर खून अतिया करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जाधव ने कहा कि अतिया किए जाने वाले खून के हर कतरे में किसी जरूरतमंद को सेहतयाब करने और एक खानदान की खुशियों को वापस लाने की ताकत होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आगे आएं, जिम्मेदाराना तौर पर खून अतिया करें और कीमती जानों को बचाने में अपना रोल अदा करें। मर्दों के क्रिकेट में कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक रोजा बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासिर पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। जीत के लिए 195 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने 22 ओवर्स 5 गेंदों में जीत हासिल कर ली। कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों में नॉट आउट 84 रन बनाए। शुभमन गिल को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 17 जून को खेला जाएगा। ख्वातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज बर्मिंघम में एजबेस्टन के मकाम पर ग्रुप ए के मुकाबले में भारत रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शायर होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाय किया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, G7 ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात को मिलेगी नई कुव्वत। तजारत, टेक्नोलॉजी, इख्तरा और आलमी उमूर समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादले ख्याल का इम्कान। फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला आर्मी चीफ मुकर्रर किए जाने की खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबार लिखता है, मुस्तकबिल के दिफाई चैलेंजेस से निमटने के लिए तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल जरूरी। G7 इजलास के मौके पर अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे पर दस्तखत का इम्कान। माहदा होने की सूरत में दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमाई मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आबनाए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। और धर्मशाला में बारिश से मुतासिर पहले एक रोजा बैनुल अक्वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
3: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल।
5: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कहीं दिखे तीन सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
3: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप

0: राना, स्कूल फीस सब हो गया,
1: बन गया बजट।
0: हाँ 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
0: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
0: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
0: जाओ भाई।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चांद पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। असम के जोरहाट में वायुसेना विमान दुर्घटना में जहानाबाद के शुभम कुमार और भोजपुर के दानिश आलम समेत 5 जवान शहीद। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जताया शोक। नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पेड़िया पेंटिंग को मिला GI टैग। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए अपार ID अनिवार्य किया। अब समाचार विस्तार से। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि इसरो ने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में CSIR RISE कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा से चलने वाला चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा पर केवल 14 दिनों तक ही काम कर पाया था। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला यह लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक मदद मिलेगी। असम के जोरहाट में कल भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में बिहार के 2 जवान समेत 5 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। हादसे में जान गंवाने वालों में बिहार के शुभम कुमार और दानिश आलम भी शामिल हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र के बनवरिया गांव के निवासी थे। वहीं अग्निवीर वायु दानिश आलम भोजपुर जिले के कोयलवर प्रखंड के कायम नगर के रहने वाले थे। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की गई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश शहीदों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व के साथ याद रखेगा। उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र शहीदों के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण करेगा। बिहार के 3 पारंपरिक उत्पादों नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है। इससे इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक नई पहचान मिलेगी। बिहार की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने राज्य के शिल्पकारों, बुनकरों, कलाकारों और संबंधित संस्थाओं को बधाई भी दी है। श्री चौधरी ने कहा कि यह उपलब्धि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला कौशल और ग्रामीण प्रतिभा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली है।

0: उन्होंने कहा कि राज्य की लोक कला, हस्तशिल्प और हथकरघा परंपराएं बिहार की अमूल्य धरोहर हैं तथा जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों की विशिष्ट पहचान को कानूनी संरक्षण के साथ वैश्विक बाजार में नई प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया है। समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी करते हुए 30 जून तक सभी छात्रों की अपार आईडी तैयार करने का निर्देश दिया है। बिहार बोर्ड ने स्कूल प्रधानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी छात्रों की अपार आईडी बनवाने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही यू डाइस कोड के साथ अपार आईडी का विवरण उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा। यह कार्रवाई शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से एकीकृत और सुरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की 1,278 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री चौधरी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1,512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्य का शुभारंभ भी करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री आज ही कृषि विभाग के कार्यक्रम में खरीफ महाअभियान 2026 के तहत किसान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह वाहन राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं श्रम बाजार विशेषज्ञ प्रोफेसर अलख नारायण शर्मा को केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी उच्चत स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए प्रोफेसर अलख नारायण शर्मा को बधाई दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: Akashwani at 90.
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के 19 जिलों तक मानसून पहुंच चुका है। मानसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मानसून के प्रभाव से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान पटना, औरंगाबाद, रोहतास, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
2: राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना एवं शेखपुरा जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि खेल व्यक्तित्व निर्माण, नेतृत्व क्षमता और मानसिक दृढ़ता के विकास के लिए प्रभावी माध्यम है। उन्होंने पटना में खेल भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि खेल केवल एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मजबूत राष्ट्र का निर्माण भी करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा पास करने के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 निर्धारित की गई है। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वे इस आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के पालन के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।
3: क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हम भी चिंतित हैं और सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो देश भर के मामले को देख करके और कोई ना कोई डायरेक्शन हमेशा वहां से पास होता रहा, उसका अध्ययन करेंगे। अभी हमारे पास ये जानकारी आई है, हमने अपने लीगल टीम को कहा है कि उसका अध्ययन करिए, मंडे को उस पर सेक्रेटरी के साथ बैठेंगे, क्या एक्शन प्लान हो सकता है उस पर बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
1: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बाल हृदय योजना के तहत कल 32 बच्चों को अहमदाबाद के लिए रवाना किया। अहमदाबाद में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का बेहतर और निशुल्क इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बाल हृदय योजना के तहत अब तक 3,101 बच्चों का सफल इलाज कराया जा चुका है। परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने कहा है कि वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मल्टी ट्यून्ड हॉर्न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रेशर हॉर्न और ट्यून्ड हॉर्न बजाने वालों वाले प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव ने कहा कि इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए राज्यव्यापी विशेष जांच और प्रवर्तन अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच अब तक खेले गए 16 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत ने 13 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान को केवल 3 मैचों में सफलता मिली है। वहीं आज एक अन्य मैच में नीदरलैंड्स का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने आईआईटी पटना की रिपोर्ट पर सुर्खी लगाई है, राज्य के 23 बड़े पुलों की स्थिति बेहद गंभीर, 10 पर चल रहा है काम। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार के विकास के लिए सभी को 20 घंटे करना होगा काम। दैनिक जागरण का शीर्षक है, आईसीबीएम मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, डीआरडीओ ने किया सफल परीक्षण। दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से जुड़ी खबर पर लिखा है, फ्रांस से 12 समझौते संभव, रफाल के सोर्स कोड लेने पर भी होगी बात। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चांद पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। असम के जोरहाट में वायुसेना के विमान दुर्घटना में जहानाबाद के शुभम कुमार और भोजपुर के दानिश आलम समेत 5 जवान शहीद, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जताया शोक। नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को मिला GI टैग। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए अपार ID अनिवार्य किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
7: बाढ़ से बचने के उपाय, आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या TV देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
8: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
9: आगे फैमिली, आओ, नए झुमके
10: ना, पहले बचत,
9: पहले झुमके।
10: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
9: लेकिन झुमकों का क्या,
10: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
11: RBI कहता है,
12: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
13: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
14: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
13: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नगमे नए पुराने। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ए दिल है मुश्किल फिल्म के इस नगमे के साथ, जिसे कि लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत तैयार किया है प्रीतम ने, आवाजें अरिजीत सिंह और साथियों की।

ए दिल है मुश्किल फिल्म के इस नगमे के बाद अब आइए सुनते हैं अजूबा फिल्म का नगमा। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक और साथियों की।

0: अभी आपने सुना अजूबा फिल्म का नगमा आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, संगीत बद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाजें थी अलका याग्निक मोहम्मद अजीज और साथियों की।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
0: अब ये सुनते हैं अगर तुम ना होते। इस फिल्म का ये नगमा गुलशन बाबरा ने इसे लिखा है, संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने, आवाज लता मंगेशकर की।

अभी आपने सुना। अगर तुम ना होते, इस फिल्म का ये नगमा गुलशन बावड़ा ने इसे लिखा था, संगीतबद्ध किया था आर डी बर्मन ने, आवाज़ लता मंगेशकर की थी। नगमा नए पुराने कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं चोर मचाए शोर। इस फिल्म का ये नगमा गीत और संगीत रविंद्र जैन ने तैयार किया है, आवाज़ आशा भोसले की है।

0: नगमे नए पुराने कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना चोर मचाए शोर फिल्म में आशा भोसले को। गीत लिखा था रविंद्र जैन ने और धुन भी रविंद्र जैन ने ही बनाई थी। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: मेडीवेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे बाल श्रोतागणों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम बाल मंजूषा।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: बाल मंजुषा के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दीदी मुनमुन और हमारे साथ हैं
1: आपका दोस्त अमन।
0: बच्चों, हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमृतवाणी के साथ। आज की अमृतवाणी में आप सुनेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बातों को। बच्चों, वे कहते थे जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको तीन शक्तिशाली शक्तियों को समझना और उन पर नियंत्रण करना होगा, इच्छा, विश्वास और अपेक्षा। बच्चों, इसका अभिप्राय है कि सफल होने के लिए खुद के अंदर अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करना चाहिए, खुद पर विश्वास रखते हुए अपने लक्ष्य के प्रति सजगता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इच्छा विश्वास की कसौटी पर ही अपेक्षित वस्तु प्राप्त की जा सकती है। कई बार आप ऐसे बच्चों से भी मिलेंगे जो बिना मेहनत किए ही सफल होना चाहते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर ही उसे पाया जा सकता है। बच्चों, आपको तो पता ही है आज के समय में प्रतियोगिता का लेवल कितना बढ़ गया है, तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। हाँ, मार्ग में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन कठिनाइयों से लड़ना ही मेहनत है और सफलता प्राप्त करने की पहली सीढ़ी भी। बच्चों, अमृतवाणी के बाद शुरू करते हैं आज की चर्चा। बच्चों, आज 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। बच्चों, रक्तदाता उसे कहते हैं जो दूसरों के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान करते हैं। बच्चों, रक्तदान जीवनदान केवल एक नारा नहीं बल्कि मानवता की सेवा का सबसे बड़ा संकल्प है। मानव शरीर में बहने वाली रक्त की धारा जीवन का आधार है। जब किसी दुर्घटना बीमारी के दौरान शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया रक्त ही उस व्यक्ति को जीवन देता है। इसी निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी। 14 जून का दिन इसलिए भी चुना गया क्योंकि इसी दिन महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर का जन्म हुआ था, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। उनकी इस खोज ने ही चिकित्सा विज्ञान में सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रास्ता साफ किया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में ये संदेश फैलाना है कि रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित है और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को आगे आकर स्वैच्छिक रूप से बिना किसी पैसे के रक्तदान करना चाहिए, ताकि अस्पतालों में रक्त की कमी से किसी की जान ना जाए। बच्चों, रक्त हमारे शरीर में एक अद्भुत और जादुई तरल है। इसे यदि जीवन की नदी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रक्त की अपनी एक अनोखी कहानी है। रक्त का निर्माण हमारी हड्डियों के खोखले हिस्से यानी बोन मैरो में होता है। हमारा रक्त मुख्यतः चार चीजों से मिलकर बनता है। प्लाज्मा, जो रक्त का तरल भाग है और पोषक तत्वों को अंगों तक पहुंचाता है। लाल रक्त कोशिकाएं, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में पहुंचाती है। सफेद रक्त कोशिकाएं, जो हमारे शरीर की रक्षक हैं, जो बीमारियों और संक्रमण से लड़ते हैं। प्लेटलेट्स, शरीर में कहीं चोट लगने पर खून को बहने से रोकने के लिए थक्का बनाने का काम करती है। बच्चों, विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज तक प्रयोगशाला में कृत्रिम रक्त नहीं बनाया जा सका है। इसकी कमी को केवल और केवल एक इंसान द्वारा ही दूसरे इंसान को दिए गए रक्त से पूरा किया जा सकता है। आपको पता है बच्चों, रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं होती। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में दान किया गया रक्त मात्र 24 से 48 घंटों में फिर से बन जाता है। रक्तदान करने से हृदय रोग का खतरा भी ना के बराबर होता है और शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। बच्चों, रक्त का कोई धर्म नहीं होता। प्रत्येक इंसानों की रगों में एक जैसा बहता है। जब हम रक्तदान करते हैं तो हम किसी अनजान व्यक्ति को जीवन का सबसे अनमोल उपहार देते हैं। एक वयस्क व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है, साथ ही उसे कोई गंभीर बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। बच्चों, इस चर्चा के बाद प्रस्तुत है बच्चों की प्रस्तुति।
1: अच्छी बातें, अच्छी बातें मन में पालो, बात बरो की कभी न टालो, कभी किसी को नहीं सताओ, कभी न खुद को बड़ा बताओ, मीठा बोलो प्यार मिलेगा, आदर का उपहार मिलेगा। झूठ ना बोलो यह अवगुण है, इसे छोड़ दो यह दुगुण है। अगर यह बातें अपनाओगे प्यारे सबके बन जाओगे। दीदी मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ प्रकृति पर। हरी भरी यह धरती प्यारी, नदियों पर्वत फूलों की क्यारी, चिड़ियों की मीठी तान सुनाए, प्रकृति हर पल गीत सुनाए। सूरज सुनहरी रोशनी लाता, चांद रातों को सुंदर बनाता, ठंडी हवा जब बहती है मन में नई उमंग जगती है। पेड़ों की छाव सुकून देती, बारिश धरती को खुश कर देती, प्रकृति का हम मान करे, इसे बचाने का प्रण करे। दीदी मैं कविता सुनाना चाहता हूँ मेरे देश भारत पर। देश है मेरा सबसे प्यारा, कहते हैं सब इसे निराला, भिन्न भिन्न राज्यों का देश, मिलकर रहने का देता संदेश। अलग अलग है बोली सबकी, अलग अलग अंदाज है, मनाते हैं सब भिन्न त्यौहार, जिसमें अपनेपन की मिठास है। जैसे सुंदर हमारा मन, तो क्यों ना हो सुंदर देश का तन। रहेंगे साफ हम इसको इतना, कि फूलों सा महकाएंगे उतना। मेहनत कर आगे बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे अपने देश का नाम, तारों सा रोशन रहेगा, करेंगे सब इसे सलाम। दीदी मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ चिड़िया पर। चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, तुम हो पैरों की रानी, सुबह सवेरे उठ जाती हो, ना जाने क्या गाती हो। क्या तुम भी पढ़ने को जाती हो, या नौकरी करने को जाती हो। शाम से पहले आती हो, बच्चों का दाना लाती हो, भर भर चोच खिलाती दाना, चूचू चहक सुनाती गाना। दीदी मैं कविता सुनाना चाहता हूँ तितली रानी पर। तितली रानी, तितली रानी, कितनी प्यारी कितनी सियानी, रंग बिरंगे पंख सजीले, लाल गुलाबी नीले पीले, फूल फूल पर जाती हो, गुनगुन गुनगुन गाती हो, कली कली पर मंडराती हो, मीठा मीठा रस पीकर उठ जाती हो, अपने कोमल पंख दिखाती, सबको उनसे है सहलाती। तितली रानी, तितली रानी, कितनी सुंदर कितनी रानी, इस बगिया में आना रानी, तितली रानी, तितली रानी। दीदी मैं एक और कविता सुनना चाहता हूँ शिक्षक पर। जीवन में जो राह दिखाए, सही तरह चलना सिखाए, माता पिता से पहले आता, जीवन में सदा आदर पाता, सबको मान प्रतिष्ठा जिससे, सीखी कर्तव्यनिष्ठा जिससे, कभी रहा ना दूर में जिससे, वह मेरा पथ दर्शक है जिससे, वह मन को भाता, वह मेरा शिक्षक कहलाता। कभी है शांत कभी है धीर, स्वभाव में सदा गंभीर, मन में दबी रहे यह इच्छा, काश मैं उस जैसा बन पाता, जो मेरा शिक्षक कहलाता। दीदी मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है सब्र का फल। एक बार एक देश में अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष थे, उन्होंने सब छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठे हुए, उन्हें रोटियां बंटने लगी। रोटियां छोटी बड़ी थी, सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी, वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरे में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी, उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वह घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गई, उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर में रोटी तोड़ी तो रोटी में से एक सोने की एक मोहर निकली, वह उसे धनी को लौटा दी। धनी बहुत प्रसन्न हुआ, उसने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया और उसकी माता के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया। सच्चा मित्र। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक आम के पेड़ पर एक गोरैया का घोंसला था। उसी पेड़ के नीचे एक चींटी भी रहती थी। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और अक्सर सुख दुख में बातें किया करते थे। एक दिन तेज़ गर्मी के कारण चींटी को बहुत प्यास लगी। वह पानी की तलाश में नदी के किनारे पहुंची। नदी का बहाव बहुत तेज़ था, इसलिए जैसे ही चींटी पानी पीने के लिए झुकी, वह फिसल कर नदी में गिर गई और बहने लगी। चींटी ने बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। पेड़ की डाल पर बैठी गोरैया ने चींटी को डूबते हुए देख लिया। गोरैया ने बिना एक पल गंवाए पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और चींटी के पास नदी में गिरा दिया। चींटी झट से उस पत्ते पर चढ़ गई। पत्ते के सहारे चींटी बहती हुई नदी के किनारे आ गई और उसकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद उसी जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ पर बैठी उसी गोरैया को अपने तीर कमान का निशाना बनाया। चींटी ने शिकारी को गोरैया पर निशाना साधते हुए देख लिया। वह समझ गया कि उसकी दोस्त खतरे में है। चींटी फुर्ती से दौड़कर आई और शिकारी के पैर पर काट लिया। दर्द के मारे शिकारी का निशाना चूक गया और उसका तीर पेड़ से टकरा गया। तीर की आवाज़ सुनकर गोरैया उड़ गई और उसकी जान बच गई।
0: धन्यवाद अमन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो बच्चों की प्रस्तुति के बाद आइए जानते हैं ज्ञान विज्ञान के बारे में। बच्चों, सीवी रमन, जिन्हें प्रकाश प्रकीर्णन के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसे रमन प्रभाव भी कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत का नाम रोशन किया। जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने खोज की थी कि पौधों में भी जीवन और भावनाएं होती हैं। बच्चों, आपको पता है पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन महासागरों द्वारा उत्पादित होती है। हम में से ज़्यादातर लोग मानते हैं कि हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि हम जिस ऑक्सीजन को सांस लेते हैं उसका आधे से अधिक हिस्सा महासागरों से आता है। विभिन्न वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी की 50% से 80% ऑक्सीजन महासागरों द्वारा उत्पादित होती है। मानव पेट रेजर ब्लेड को घोल सकता है। ये सुनने में भले ही भयानक लगे, लेकिन उस विज्ञान के सबसे आश्चर्यजनक तत्वों में से एक है कि मानव पेट रेजर ब्लेड को भी आसानी से घोल सकता है, क्योंकि उनमें अम्लों को 0 से 14 के पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान रहे, pH स्तर जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। पेट का pH स्तर 1 से 3 के बीच होता है, जो इतना प्रबल होता है कि एक अध्ययन के अनुसार ये पेट के अम्ल में कुछ घंटों तक डूबे रहने पर एक धारदार ब्लेड को भी घोल सकता है। विज्ञान के तथ्यों की खोज हमें हमारे पसंदीदा फलों में से एक केले तक ले जाती है, लेकिन इस बार ये कोई स्वादिष्ट वाली बात नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि केला खाते समय ये प्राकृतिक विकिरण का स्रोत हो सकता है? शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन ये सच है। इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जिसमें थोड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि आपको अपने स्वादिष्ट केले के स्मूदी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें विकिरण की मात्रा बहुत ही कम होती है। जानवर अपनी स्थिति जानने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। विज्ञान के बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो हमें आश्चर्यजनक करते हैं। समुद्री जीव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करके अपनी दिशा का पता लगा सकते हैं। हीलियम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। आपको पता है हीलियम को उसके क्वथनांक से कुछ डिग्री कम तापमान पर ठंडा करने, यानी 452 डिग्री फॉरेनहाइट पर अति तरल बन जाता है वो, जिसका अर्थ है कि वो बिना घर्षण के गति कर सकता है। वो ग्लास के किनारों से ऊपर उठ सकता है। इतना ही नहीं, वह किसी पात्र में मौजूद अणु आकार की पतली दरारों से भी बह सकता है। आपको पता है बच्चों, लार के बिना भोजन में स्वाद नहीं होता है। भोजन का स्वाद लेने के लिए लार की आवश्यकता होती है। भोजन में मौजूद रसायनों का लार में घुलना आवश्यक है। भोजन में मौजूद रसायन घुल जाने के बाद हमारी स्वाद कलिकाओं में मौजूद रिसेप्टर्स द्वारा उनका पता लगाया जा सकता है। आपको पता है बच्चों, भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है विविधता में एकता। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा जिस ग्रंथ से ली गई थी, उस ग्रंथ का नाम है उपनिषद। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थों की संख्या 4 मानी जाती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ओणम पर्व मुख्य रूप से केरल से संबंधित है। कथक नृत्य शैली का उद्गम क्षेत्र उत्तर भारत माना जाता है। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तबला वाद्य यंत्र अवनद्व वाद्य को से जुड़ा हुआ है, जिन वाद्यों में चमड़े का प्रयोग होता है, जिन्हें अवनद्य वाद्य कहा जाता है। तबला इसी श्रेणी में आता है। भारतीय समाज की सबसे छोटी सामाजिक इकाई परिवार है। आपको पता है बच्चों, देवनागरी लिपि जिसे हिंदी की लिपि भी कहा जाता है, ब्राह्मी लिपि से संबंधित है। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है, जो भारतीय भाषाई संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में सबसे प्राचीन मानव अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए, जिन्हें भारत में सबसे प्राचीन मानव अवशेष माना जाता है। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश राज्य में

स्थित है। मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्नानागार था वो। ऋग्वेद को कुल 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। आपको पता है बच्चों, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। आपको पता है 1857 का विद्रोह हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। आपको पता है बच्चों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है। दक्कन पहाड़ का निर्माण बेसाल्ट शिला से हुआ है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन असम राज्य में होता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। कक्ष का रण किस प्रकार का क्षेत्र है बच्चों? नमक का मैदान। कक्ष के रण को नमक का मैदान भी कहा जाता है, जो मॉनसून में जलमग्न हो जाता है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय है। सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वर्षा का प्रमुख कारण स्थल और जल का असमान ताप है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील को कहा जाता है, जो उड़ीसा में स्थित है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन उड़ीसा में ही होता है। आपको पता है बच्चों, भारत में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली है। भारत की GDP की गणना बाजार मूल्य के आधार पर की जाती है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं फसल पर पड़ा। भारत की में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश CACP करता है, यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। बच्चों, ज्ञान विज्ञान के बाद आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: इस गीत के बाद बच्चों प्रस्तुत है हमारी पूर्व प्रसारित वार्ता फास्ट फूड। वार्ताकार हैं रंजीत कुमार सिन्हा।
1: बच्चों, यह तो हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मस्तिष्क को तरोताजा और स्वस्थ रखने के लिए हमें शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, हमारे शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए भोजन का संतुलित होना जरूरी है। आज के इस बदलते जीवन शैली में हम पश्चिमी देशों का अनुकरण करने लगे हैं। आज हम वही करना चाहते हैं या वही करते हैं जो पश्चिमी देश में चलन है, चाहे वो रहन सहन हो या खान पान। जंक फूड खाने का चलन भी इन्हीं देशों की देन है। बच्चों, जंक फूड या फास्ट फूड का अर्थ ऐसे खाद्य पदार्थों से है जो देखने में आकर्षक, खाने में स्वादिष्ट, चटपटे लगते हैं और उन्हें पकाने में भी बहुत कम समय लगता है, इसलिए ही इन्हें फास्ट फूड कहा जाता है। यह एक ऐसा धीमी गति से असर करने वाला विषय है जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। आजकल बाज़ार में अनेक प्रकार के जंक फूड उपलब्ध हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स, पफर्स, चिप्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, फ्रेंच फ्राई वगैरह वगैरह। और तो और चाइनीज फूड खाने का फैशन भी चल रहा है। ऐसे खाद्य पदार्थों को बच्चों, बड़े, युवा, सभी आयु वर्ग के लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे और युवा में इसका प्रचलन अधिक है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। इस प्रकार के खाद्य पदार्थों में वसा, शक्कर, लवणता, कैलोरीन आदि भरपूर मात्रा में होता है और पोषक तत्व की मात्रा बहुत ही कम होती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं फास्ट फूड के लगातार सेवन करने से हमारा शरीर किस तरह प्रभावित होता है? बच्चों, इसके लगातार सेवन से हमारा शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। पोषक तत्वों की कमी से शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है, जिसके कारण हमारी पाचन क्रिया भी बिगड़ जाती है। ऐसा खाना कुछ पल के लिए तो हमारी भूख को शांत कर देता है, लेकिन इससे हमें काफ़ी कमजोरी और मांसपेशियों की थकावट का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, जंक फूड या फास्ट फूड में शक्कर और कैलोरी की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इससे हमारे शरीर का वजन बढ़ने लगता है और जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। बच्चों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, जंक फूड खाने वाले इसी या सातवीं कक्षा के पढ़ने वाले छात्रों का वजन 60 केजी से ऊपर चला जाता है। कई बच्चों इसी कारण मोटापा का शिकार हो जाते हैं और उनका वजन लगातार बढ़ने लगता है। धीरे धीरे यही मोटापा हमें बीमारियों की ओर धकेलने लगता है। बच्चों, हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। पौष्टिक एवं संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमें अपनी आदतों में भी सुधार लाना होगा। अधिक तैली खाद्य पदार्थ या फास्ट फूड का पूर्णतः त्याग करना होगा। अपने स्वास्थ्य

0: को ठीक रखने के लिए हमें ताज़ा और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। हरी साग सब्जी, अंकुरित अनाजों का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। मौसमी फलों, दूध, दही, अंडा वगैरह को आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। बच्चों, यह बिल्कुल सही है कि कोई भी आदत एकदम से नहीं छोड़ी जाती, इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे इन फास्ट फूडों की आदत कम कर सकते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चाउमीन, इन सब का जितना जल्द हो त्याग करें और इसकी जगह घर का बना खाना खाएं। फलों का रस, दही, मट्ठा, शरबत का सेवन कोल्ड ड्रिंक की जगह कर सकते हैं। बच्चों, आज अधिकतर देखा जाता है कि बच्चों के टिफिन में प्रायः फास्ट फूड ही दिया जाता है। यह इसलिए क्योंकि बच्चे इसके अत्यधिक पसंद करते हैं और कम समय में तैयार भी हो जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल फ्लेवर और फूड कलर के इस्तेमाल से बच्चों में एलर्जी का खतरा होता है। इससे इनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके अलावा बच्चों में पेट संबंधी बीमारियां भी हो सकती है। बाज़ारों में मिलने वाले डिब्बा बंद फूड जूस भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, अतः इससे जितना हो सके बच्चों को बचना चाहिए। आइसिंग वाले केक, पेस्ट्री में पोषक तत्व बहुत कम पाया जाता है और इसमें वसा की मात्रा अत्यधिक होती है, जिससे उनमें मोटापा की समस्या के साथ साथ दांतों का भी काफ़ी नुकसान होता है। बच्चों, आप हमारे देश के भविष्य हैं। हमारा भविष्य सुरक्षित रहे इसके लिए आपका स्वस्थ रहना अत्यंत ज़रूरी है। इसलिए याद रखें, फास्ट फूडों से बनाओ दूरी, स्वास्थ्य के लिए है ये ज़रूरी।
1: बच्चों, अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित वार्ता फास्ट फूड। वार्ताकार थे रंजीत कुमार सिन्हा। बच्चों, समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी।

0: नया जोश, नया उमंग और ढेर सारे नए इरादों के साथ एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ बाल किलकारी के नए एपिसोड में। ढेर सारी मौज मस्ती और धमा चौकरी से आप सभी श्रोताओं के दिलों पर राज करने के लिए हम फिर से हाजिर हैं।
1: सुप्रभात बाल श्रोता सब, अपना सभ्य बाल मित्र के बहुते बहुते स्वागत है अपनों के इस सुंदर और अनोखा सा रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी के अंक 305 मा अपनो सभ्य बाल मित्र के तहे दिल से स्वागत करै छी। आरो आज के खास कार्यक्रम के साथ है हम सीखे अपनो सभ्य के प्यारी रेडियो साथी स्वाति। आरो अपनो के साथ छकै अपनो के रेडियो साथी
0: ऋषि। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी श्रोता बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और आज मैं और स्वाति मिलकर आपके साथ खूब मस्ती और धमाल मचाने वाले हैं।
1: हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही बात कहलो। मतर की ओकरा सब पहला अपनो बाल श्रोता सा तनी बातचीत तो करी लिए। दोस्त सुनी, ई भीषण गर्मी मा अपनो ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखियो और खूब समर कैंप के एंजॉय करियो।
0: हाँ स्वाति, समर कैंप का तो एंजॉय कर ही रहे होंगे हमारे साथी सब, और बहुत सारे बच्चे तो वेकेशन में नानी घर या दादी घर घूमने भी गए होंगे, साथ ही इस मौसम के फलों का आनंद भी खूब मस्ती से ले रहे होंगे।
1: ऋषि भैया, ई बात सा हमरो दिमाग मा एगो सवाल उठलो छे, पूछियन।
0: हाँ हाँ पूछो।
1: ऋषि भैया, तोरा ई मौसम के कौन सा फल ज्यादा पसंद छन?
0: मुझे तो आम बहुत पसंद है। आम तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि ये साल में एक ही बार आता है और मुझे आम के मौसम का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। अच्छा स्वाति, तुझे कौन सा फल पसंद है?
1: हमरा भैया, हमरा तो आम के साथ साथ लीची भी बहुत पसंद है, लेकिन आम से कुछ ज्यादा हमरा लीची पसंद है। ओकरा में रसीला रसीला रस होय छै। अरे भैया, हमरा तो सोचिए कि मुँह में पानी आ गेले।
0: हाँ स्वाति, तुमने तो बात बिल्कुल सही कही, लेकिन स्वाति कुछ भी कहो, ये गर्मी का मौसम जैसा भी हो लेकिन इस मौसम के फल बहुत ही यूनिक होते हैं और टेस्टी भी।
1: हाँ भैया, एकदम सही कहलो। तो
0: दोस्तों, आप भी अपने वेकेशन में इन रसीले फलों को एंजॉय कीजिए और समर वेकेशन को मजेदार बनाइए।
1: हाँ हाँ भैया, अब बातें करते रहो कि कार्यक्रम कभी शुरू करबो। कहना कि अपनो पास टाइम छै कम और कार्यक्रम छै लंबा, तो चलो शुरू करै छियै।
0: दोस्तों, वह कौन सी चीज है जिसे छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, मगर आप उसे महसूस कर सकते हैं?
1: हवा।
0: हाँ बिल्कुल सही जवाब स्वाति। क्या आपने कभी सोचा है कि हवा, जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? हवा हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है, मौसम को संतुलित रखती है, बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और पेड़ पौधे के जीवन में भी सहायक करती है।
1: हाँ भैया, ये सब तो पते है हमरा, लेकिन तो ये सब कहना बता रहे छो?
0: क्योंकि स्वाति, कल हम सब 15 जून को विश्व पवन दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें पवन ऊर्जा के महत्व को समझाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पवन ऊर्जा प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। यह प्रदूषण नहीं फैलाती और ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। आज दुनिया के कई देशों में बिजली बनाने के लिए पवन चक्कियों का उपयोग किया जा रहा है। इससे पर्यावरण की रक्षा होती है और ईंधन की बचत भी होती है।
1: हवा तो हमरो जीवन के बहुत जरूरी हिस्सा छे। अगर हवा न रहता तो जीवन संभव नहीं छे। एकरे सता हम सब सांस ले छी। मौसम भी बदले छै आरो प्रकृति भी संतुलित रहे छै।
0: आज के समय में जब दुनिया ऊर्जा संकट और प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना कर रही है, तब पवन ऊर्जा एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में सामने आई है। पवन चक्कियों के माध्यम से हवा की शक्ति को बिजली में बदला जाता है। इससे कोयला, पेट्रोलियम और अन्य ईंधनों पर निर्भरता कम होती है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ लगाएं और ऊर्जा का सही उपयोग करें। याद रखिए, स्वच्छ ऊर्जा ही स्वस्थ भविष्य की पहचान है।
1: हाँ ऋषि भैया, एकदम सही बात कहलो। तो ऋषि भैया, हम ई दिवस पर तोरा एगो कविता सुनाई छियन।
0: हाँ हाँ सुनाओ ना कविता, मैं भी तो सुनूं तुम्हारी रचना को।
1: हवा रे हवा, मधुर हवा, तोरो रूप बड़ा अनमोल, धरती अंबर नदी पहाड़, सबके संग बजाबे ढोल। भोर भये त धीरे आबे, फूल पात के सहलाबे, कोयल के मीठ गीत में अपनो सुरमा सुर मिलाबे। गर्मी के दिन जब आवे त राहत बनी का छाबे, थकलो मन का शीतल करै छे, नव उत्साह जगाबे छे। खेत खलिहान में घूम घूम धान के बाली झुलाबे छे, किसान के मेहनत देखी का खुशी के संदेश सुनाबे छे। बादल संग दूर देश जाय छे, बरखा के बौछार लाय छे, सुखल धरती के आंगन में हरियाली के रंग सजाय छे। कखनो तूफान बनी का गरजे, कखनो फुसफुस बात करै छे। प्रकृति के अद्भुत शक्ति छे, जीवन के संगीत बहै छे। हवा रे हवा तोरा नमन, तोहरो महिमा अपार, तोरे कारण जीवन सुंदर, तोरे कारण छे संसार।
0: वाह स्वाति, तुम्हारी कविता तो बहुत ही सुंदर है। हवा रे हवा, बहुत अच्छी कविता सुनाई तुमने। तो चलो मैं तुम्हें अब कहानी सुनाता हूँ।
1: अच्छा, तो कहानी सुनेबो भैया?
0: अरे नहीं रे स्वाति, हमारी प्यारी दादी अम्मा कहानी सुनाएगी।
1: अच्छा भैया, तो आज हम रश्मि के दादी अम्मा कहानी सुनाते है, तो चलो सुनाई छिए कहानी का।
0: तो आइए अब सुनते हैं दादी अम्मा की कहानियों को।
2: हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आप सभी को बहुत याद कर रही थी। बच्चों, आप सभी मेरी कहानियों को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, ये मैं भी जानती हूँ। आज मैं आपके लिए एक सुंदर सी कहानी लेके आई।

0: आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी को। कहानी का शीर्षक है हवा से रोशन हुआ सपना। एक छोटे से गांव में आरम नाम का एक जिज्ञासु बालक रहता था। वह हमेशा नई नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। गांव में अक्सर बिजली चली जाती थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई में कठिनाई होती थी। एक दिन स्कूल में विज्ञान शिक्षक ने पवन ऊर्जा के बारे में बताया। शिक्षक ने कहा, हवा केवल ठंड ही नहीं देती बल्कि उससे बिजली भी बनाई जा सकती है। ये बात आरव के मन में घर कर गई। उसने तय किया कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके गांव की समस्या दूर हो सकती है। आरव ने पुस्तकालय से पवन ऊर्जा पर किताबें पढ़ी। उसने इंटरनेट पर वीडियो देखे और अपने शिक्षक से भी कई सवाल पूछे। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने पुराने खिलौने, लकड़ी, एक छोटे मोटर की मदद से एक मॉडल पवन चक्की बनाई। जब तेज हवा चली तो उसकी पवन चक्की घूमने लगी। उससे जुड़ा छोटा बल्ब जल उठा। यह देखकर उसके माता पिता और पड़ोसी बहुत खुश हुए। लेकिन आरव यहीं नहीं रुका। उसने विज्ञान प्रदर्शनी में अपने मॉडल को प्रस्तुत किया। वहां उपस्थित वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने उसकी प्रतिभा की सराहना की। उसे पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार की राशि से उसने और बड़े मॉडल तैयार किए। धीरे धीरे उसकी मेहनत की चर्चा दूर दूर होने लगी। कुछ वर्षों बाद सरकार और वैज्ञानिकों की मदद से उसके गांव में छोटे पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए गए। अब गांव में बिजली की कमी नहीं थी। बच्चे रात में भी आराम से पढ़ सकते थे और किसानों को भी लाभ मिलने लगा। एक दिन किसी ने आरव से पूछा, तुम्हारी सफलता का क्या राज है? आरव मुस्कुरा कर बोला, मैंने केवल एक समस्या देखी और उसे हल करने का प्रयास किया। अगर हमें बड़े सपने देखे और लगातार मेहनत करे तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी शुरुआत भी बड़े बदलाव ला सकती है। मेहनत, जिज्ञासा और आत्मविश्वास सफलता की बड़ी कुंजी है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आज सभी में कोई आरव नाम का बच्चा होगा जो अपनी जिज्ञासा को उभारने के लिए कोशिश कर रहा होगा।
1: दादी माई के कहानी तो बहुत बढ़िया छलै। आशा करे छियै कि श्रोता सभ्य का जरूरे पसंद आइलो होतै। एकरा से सीख मिले छै कि छोटा छोटा प्रयास ही बड़का आविष्कार बने छै। आरव के ई छोटा सा प्रयास गांव के बिजली बनी गेलै। आशा करे छियै कि श्रोता सबका जरूरे सीख मिललो होतै।
2: कहानी तो बहुत अच्छी थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं नाटक चार दोस्त।
1: ई नाटक सुनार लो छे अपनो नाटक विधा के साथी सब। तो चलो सुने छिए नाटक चार दोस्त।

0: करूंगा जिससे मैं अपने सारे दोस्तों को दावत दे सकूं।
1: अरे भाई मुझे अरे
2: अरे भाई पकड़म पकड़ाई खेलने में मजा नहीं आ रहा, चलो हम लोग कुछ और खेलते हैं।
3: लेकिन हम लोग खेलेंगे क्या?
4: क्या खेलेंगे?
2: चलो चलो हम लोग छुपन छुपाई खेलते हैं।
3: तुम लोग छुप जाओ, मैं तुम लोगों को ढूंढूंगा।
2: चलो चलो सब छुप जाओ।
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी तैयार है, मैं आ रहा हूँ।
4: आ जाओ।
3: अभी भाई तुम उधर हो, निकल आओ। कछुए भाई तुम उधर हो, निकल आओ।
2: चूहे भाई तुमने सभी को ढूंढ लिया, पर हिरन भाई को तो ढूंढा ही नहीं।
3: अरे भाइयों मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन यह हिरन भाई तो कहीं है ही नहीं।
2: चलो चलो हम सब लोग मिलकर ढूंढते हैं हिरन भाई को।

0: सुहे भाई, इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक हिरण भाई नहीं मिले। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं हिरण भाई किसी जाल में तो नहीं फंस गए।
1: मुझे भी बहुत चिंता हो रही है, तुम लोग ठहरो मैं देख कर आता हूँ।

0: अरे भाई हिरन, यह क्या, तुम तो जाल में फंस गए।
1: हाँ, मेरा दुर्भाग्य है, क्या कहूँ।
0: तुम नहीं आए तो हम सब तुम्हारे लिए घबरा रहे थे। भाई चूहे और कछुए ने मुझे तुम्हें तुरंत ढूंढने के लिए भेजा है।
1: अच्छा हुआ तुम आ गई, ये मेरा अंतिम समय है। भाई कछुए और चूहे को मेरा आखिरी नमस्ते कहना।
0: यह कैसी बातें करते हो हिरन भाई, हम जैसे दोस्तों के होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी चूहे भाई को लेकर आता हूँ, वह तुम्हारा जाल काट देगा।
1: कौवे भाई बड़ी जल्दी आ गए।
2: भाई घबराओ नहीं, बस तो रुक जा, मैं तुम्हें जाल से फौरन छुड़ा दूंगा।
3: हाँ हाँ हिरन भाई, तुम चिंता मत करो।
0: अरे कछुए भाई, तुम क्यों आ गए।
1: कछुए भाई, तुमने क्यों तकलीफ की।
3: हिरन भाई, तुम्हारे पकड़े जाने का हाल सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मुझसे नहीं रहा गया, इसलिए मैं तुरंत तुम्हें देखने चला आया।
0: मगर तुमने अच्छा नहीं किया, अगर शिकारी आ गया तो मैं आसमान में उड़ जाऊंगा, हिरन भाग जाएगा, चूहा बिल में घुस जाएगा। तुम धीरे धीरे चलते हो, शिकारी तुमको पकड़ लेगा।
2: हाँ कछुए भाई, शिकारी के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ।
1: शिकारी आ गया, भागो भागो, अरे भागो भागो, शिकारी आ रहा है, भागो भागो।
2: देखा तुम लोगों ने, शिकारी हमारी कछुए को लिए जा रहा है।
1: ये सब मेरी ही वजह से हुआ है।
0: दुख करने से क्या, जो दुख के समय रोया करता है, उपाय नहीं करता, उसको रोना ही पड़ता है, वह दुख दूर नहीं कर सकता।
2: हाँ, हमें उपाय करके अपने मित्र को चुराना चाहिए, मित्र के कष्ट को दूर करना हम सबका कर्तव्य है।
1: लेकिन हम लोग अपने मित्र को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अगर हम शिकारी के सामने गए तो वो हमें पकड़ लेगा।
0: मैं तुम लोगों को एक तरकीब बताता हूँ। शिकारी के रास्ते पर जाकर यह हिरन किसी छोटे तालाब के पास पहुंचकर बेहोश बनकर गिर पड़ेगा। मैं उसके सिर पर चढ़कर धीरे धीरे चोट से कुरेदूंगा। मेरे चोट के कुरेदने से शिकारी हिरन को मरा हुआ जानकर कछुए को जमीन पर रख हिरन के लिए दौड़ेगा। तभी चूहे भाई, तुम अपने तेज दांतों से उसका झोला काट देना, जिससे कछुआ दोस्त पानी में चला जाए, और तब तक हिरन भाई तुम भी भाग जाना।
1: हाँ, ये तरकीब बहुत अच्छी है।
0: यह रहा तालाब।
1: हाँ ठीक है, हम लोग यहीं पर रुकते हैं, वो दुष्ट शिकारी घर से ही निकलेगा। अरे भाई, यहाँ से होकर मैं ये करूँगा।
0: मैं देखता हूँ, जैसे ही वो आएगा मैं तुमको पहले से ही बता दूंगा।
1: हाँ ये ठीक है, चूहे भाई तुम भी तैयार रहना।
2: हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ।
0: शिकारी आ रहा है।
4: अरे लगता है हिरन अपने आप ही मर गया, चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं इसे ले जाकर दोस्तों में दावत करूंगा। अरे यह क्या, हिरन तो भाग गया, लगता मरा नहीं था। कोई बात नहीं, कछुए का ही कबाब बनाऊंगा आज। अरे कछुआ भी चला गया, आज का तो दिन ही खराब था, अब मैं क्या करूं, चलो चला जाए, आज भूखा ही रहना पड़ेगा।
0: चूहे भाई, कछुए भाई, हिरन भाई, निकल आओ, शिकारी चला गया, शिकारी चला गया, शिकारी चला गया।
5: वाह, नाटक तो बहुत ही अच्छी रही। इस नाटक से तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि कैसे चारों दोस्तों ने एक दूसरे की मदद की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्तों की हमेशा मदद करनी चाहिए और उनके मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए। आशा करता हूँ कि श्रोताओं को ये नाटक बहुत पसंद आया होगा।
6: हाँ भैया, तो एकदम सही कहे छो, नाटक तो बहुत सुंदर छे। एकरा में दिखाईलो गेलो छे दोस्ती से बड़ी का कोनो रिश्ता नहीं होय छे। तो चलो आबा कार्यक्रम में आगे बढ़े छे आरो आबा बुलाबे छे आपनों के प्यारी बुझोवल रानी का। आरो सुने छे बुझोवल रानी सा नयका नयका पहेली का।
7: बुझोवल रानी हाजिर हो।
8: हेलो मेरे प्यारे प्यारे बाल श्रोताओ, मैं हूँ आपकी प्यारी बुझोवल रानी। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बाल श्रोताओ, तो मैं हूँ आपकी प्यारी बुझोवल रानी। नई पहेली
9: आज के साथ एक बार फिर से हाजिर है आपकी प्यारी बुझवल रानी।
7: हेलो बुझवल रानी, कैसे हैं आप?
9: मैं तो ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं?
6: हम भी बहुत अच्छे हैं। तो बुझवल रानी, जल्दी जल्दी हमारे बाल श्रोताओं को पहेली सुनाइए।
9: खोलती हूँ मैं पहेलियों का पिटारा और पेश करती हूँ मजेदार पहेलियों को। तो आज की हमारी पहली पहेली है रंग बिरंगी प्यारी प्यारी, दिखने में से सबसे न्यारी, छोटे हल्के पंख फैलाओ वह गया मैं रौनक लाऊं। तो बाल श्रोताओं, आज की दूसरी पहेली है एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर उल्टा धरा, चारों ओर फेरे वो थाल, मोती उससे गिरे ना लाल। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए, घुमाइए फिराइए और हमारे पहेलियों के जवाब को ढूंढ के लाइए और हमें जरूर भेजिए, क्योंकि आपकी बुझवल रानी को आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो दोस्तों, अब आप पहेलियों के जवाब को ढूंढते रहिए और दीजिए अपनी बुझवल रानी को इजाजत। हम फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में जवाब के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।
7: बाय बाय बुझवल रानी।
6: वाह बुझवल रानी, तोरो पहेली तो बहुत सुंदर छला। आशा करे छिया कि अपनो बाल श्रोता का भी बहुत पसंद आयलो होता है और बाल श्रोता सब ओकरो जवाब जरूर भेजता है। तो चलो साथी सब, आब सुनै छिया एगो भेंट वार्ता का, जेकरो नाम छिकाए प्रकृति आरो बच्चा। आरो ई भेंट वार्ता के भेंट करता छै सूर्यांश भैया। आरो अपनो के भेंट वार्ताकार छै अपनो के जिला संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन सर। तो चलो अब सुनै छियै ई भेंट वार्ता का, आरो बहुते कुछ सीखै छियै।
10: अब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं भागलपुर जिला के कला संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन जी, और उनसे जानेंगे कि आखिरकार हमें प्रकृति से क्यों जुड़ना चाहिए।
11: हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति का बहुत अच्छा संबंध हम लोग देख सकते हैं, चाहे वो ऋग्वेद से हम लोग अपनी संस्कृति को देखें, चाहे आज के बिहार के प्रसिद्ध छठ पूजा में, सभी में प्रकृति का बहुत अधिक महत्व हम लोग देख सकते हैं। प्रकृति हमारे संस्कृति में रची बसी हुई है, और यदि बच्चों के साथ ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए तो हमारी संस्कृति और प्रकृति दोनों बचेगी। प्रकृति में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसा समझ लिया जाता है। हमारी संस्कृति में जैसे भागलपुर के मंजूषा चित्रकला में आप देखेंगे, उसमें चंपा फूल भी है, चंपा नदी भी है और सांप भी है, सभी का मिश्रण देखते हैं। हमारे छठ पूजा में बहुत तरह के फल यूज होते हैं और भगवान सूर्य की पूजा नदी में जाकर के करते हैं। हमारे यहाँ बट वृक्ष की पूजा, हमारी संस्कृति में पीपल की पूजा, और उसके साथ साथ बहुत सारे भारतीय चिकित्सा पद्धति में औषधीय महत्व के जड़ पत्ते फूलों का भी उपयोग किया जाता है। हमारी संस्कृति में पूरी तरह से प्रकृति का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है, इसलिए हम लोग प्रकृति और संस्कृति को एक साथ लेकर के ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं।
10: बच्चों को प्रकृति से क्यों जुड़ना चाहिए?
11: बच्चों को हर वैसी चीज से जुड़ना चाहिए जिससे हमारा भविष्य सुधर सके। बच्चे ही हमारे भविष्य की नींव है, और हम लोग हमेशा बड़े मंचों पे सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है, ओजोन जो हमारा परत है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ग्लेशियर्स की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े बातों को हम लोग अखबारों में, टीवी चैनल्स पे, मोबाइल पे देखते पढ़ते सुनते हैं। अगर हम उसकी शुरुआत बच्चों से करें, छोटे संस्थानों से करें, मोहल्ले से करें, घर से करें, तो बच्चे वो भविष्य में वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हमने दोहराई है, हमसे पहले हमारे पूर्वजों ने दोहराई है। हमारा भविष्य बेहतर हो सके, हमारी संस्कृति जो हमें सिखाती है प्रकृति का संरक्षण, उसे हम बच्चों के साथ बहुत शुरुआती स्तर से ही अगर शुरू करेंगे तो ये हमारे भविष्य के लिए भी अच्छा होगा, हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति के लिए भी बेहतरी का कार्य करेगा।
10: हाँ, ये बात तो सही है दोस्तों कि हम हैं तभी हमारा भविष्य भी है, अगर हम ही भटक गए तो भविष्य अंधकार में चला जाएगा।
11: जैसा अभी संवेदनशीलता मुझे लगता है पौधों जीवों के बारे में है, वो तो बचपन में नहीं था। जैसे आमतौर पे जो बच्चे होते हैं वैसा ही मेरा भी स्थिति था। मैं भी ड्रैगन फ्लाई के पीछे सिक्की घास खोस करके उड़ाना, तितलियों को पकड़ना, पेड़ पौधों को उखाड़ करके दूसरे जगह लगाने का प्रयास करना, लेकिन हाँ ये जरूर था कि धीरे धीरे करके वो हमारी संस्कृति ने ये सिखाया कि प्रकृति से कैसे जुड़ें और कैसे उसका संरक्षण करें। बचपन में तो शैतानियाँ होती रहती थी, लेकिन उसके साथ ये भी होता था कि ये वाला पौधा हमारे घर में लगाना है, ये वाला फूल हमारे घर में लगाना है, और ये तितली हमारे घर में क्यों नहीं दिख रही है। तो उसके लिए बचपन से ही कुछ न कुछ ऐसा होता था, लेकिन तितली को पकड़ करके उसका रंग हाथ पे लग जाना, ये बचपन में हमारे भी होता रहता था।
10: प्रकृति का महत्व हमारे जीवन में क्या है?
11: आज जो किलकारी में क्लास हुई उसमें बच्चों ने भी इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हम सभी ऐसा कुछ जानते हैं, मुख्य रूप से हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्रकृति जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन हमें देती है। हमें कुछ बच्चों ने बताया उससे हमें लकड़ियाँ मिलती है, कुछ ने बताया छाँव मिलते हैं, कुछ ने उसके फल और फूल के महत्व को बताया। वहीं कुछ बच्चों ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए ये भी बताया कि वो पूरी पारिस्थितिकी तंत्र पूरे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर दूसरे जीव जंतु नहीं रहेंगे तो मानव भी नहीं रह पाएंगे। पौधों का, पेड़ों का, पूरे प्रकृति का सिर्फ ऑक्सीजन और ग्लोबल वार्मिंग से ही संबंध नहीं है, वो हर उस चीज से संबंधित है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। इसलिए प्रकृति का संरक्षण हमारा दायित्व भी है और हमारा कर्तव्य भी है, और हमारी हर एक सोच में उसे रहना भी चाहिए।
10: आपको बच्चों के साथ काम करने के बाद कैसा लगता है?
11: बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप अपनी उम्र भूल जाते हैं, आप भी बच्चों की तरह सोचते हैं, बच्चों की तरह दौड़ते हैं। बच्चे जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ आप भी जाते हैं। आपका जो दैनिक जीवन होता है वो हो सकता है बहुत सीरियस हो, लेकिन बच्चों के बीच में आकर के आप जब तक बच्चे नहीं बनेंगे तब तक आपको मज़ा भी नहीं आएगा और बच्चे कनेक्ट भी नहीं करेंगे। तो आप, मुझे तो यही लगा बच्चों के साथ काम करने में कि बच्चे जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो जो सोच रहे हैं, वो नई नई बातें सोच करके ढूंढ करके ला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बातें बच्चों ने बताई जो मुझे भी नहीं पता थी पहले, और ये बहुत अच्छी खासियत है नई सोच के साथ, नई पीढ़ी के साथ, नए जोश के साथ काम करना हमेशा अच्छा लगता है।
10: तो आप अपने बचपन के कौन से पल में अभी भी जाना चाहेंगे?
11: किसी को भी अपने बचपन में जाने का तो बहुत इच्छा होती है, बहुत मन करता है। जब मैं क्लास 4, 5, 6 का ऐसा समय था जब न एग्ज़ाम का टेंशन था, क्लास 8, 9 के बाद से तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन वो ऐसा समय था जब बहुत बच्चे भी नहीं थे, जहाँ पे बहुत कुछ ना करने की आज़ादी हो और बहुत कुछ करने की भी आज़ादी नहीं थी, वो बहुत मीडियम टाइम था। वो समय मैं बहुत आम के बगीचे में जाता था, मैं झूला खुद से लगा सकता था, खुद से झूल भी सकता था, और बहुत कुछ ऐसा कर सकता था जो अभी करना मुश्किल है। हम लोग दिवाली में घरौंदा बनाते थे, बहुत कुछ भी घर में आयोजन होता था तो उसमें कुछ क्राफ्ट का काम हो वो करने का मौका मिलता था, तो वो समय बहुत अच्छा था। मुझे लगता है क्लास 4, 5, 6 का जो समय था वो बहुत शानदार था।
10: सर की बातों से हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला।
6: आपनो के सर का बहुते बहुते धन्यवाद छे, आपनो ना बहुत सारा जानकारी दिल का है।
5: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी स्तंभ की ओर और पढ़ते हैं आज के सुविचार को। तो आज का सुविचार है, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं।
6: इस विचार के मतलब छे कि जेकरो सरल स्वभाव रहे छे ओकरो उ संस्कार होय छे। कोनो भी व्यक्ति के व्यवहार ओकरो माय बाप के संस्कार पर निर्भर रहे छे। आय के सुविचार त बहुते बढ़िया खूबे सुंदर छले आर ई बात बहुते सही छले। आशा करे छिए कि बाल मित्र का सुविचार पसंद आयलो होते, त बाल मित्र सब सुविचार का जरूर साझा करियो। त साथी सनी एकरे साथे अब कार्यक्रम यही समाप्त होय छे। तो आशा करे छिए
12: कि आज के कार्यक्रम में खूब मन लगलो होता है और खूब एंजॉयमेंट के साथ अपना के कार्यक्रम का सुनलो होबो। तो अब अपना के कार्यक्रम कैसनो लगला है जरूर बताइयो। आशा करे छे कि मजा ता अइले होता है। तो साथी सब अपना अपना ख्याल रखियो और प्यारा प्यारा मैसेज जरूर भेजियो।
5: जी हाँ दोस्तों, तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए। आप अपना कीमती मैसेज हमें जरूर भेजें क्योंकि हमें आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का बेसब्री से इंतजार रहता है और आपके मैसेज को पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो जरूर आप अपना मैसेज भेजें। आप अपना मैसेज हमारे मोबाइल नंबर के जरिए भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7542029695। तो अपना मैसेज याद से भेजें। तो साथियों अब मिलेंगे आपसे इसी कार्यक्रम में हर रविवार सुबह 10 बजे। इसी जोश और उमंग के साथ आपके चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखने के लिए हम फिर से हाजिर होंगे।
12: ता अब अपनो प्यारी रेडियो दोस्त स्वाति
5: और अपने प्यारे रेडियो दोस्त ऋषि को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी जोश और मुस्कान के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
7: बाय बाय। जय हिंद जय भारत।
13: बच्चों अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। इसके साथ ही बच्चों समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमारा पता है बाल मंजूषा अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए अपनी दीदी मुनमुन को और
14: अमन
13: को दीजिए इजाजत। जय हिंद
14: जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे बाल मंजूषा और बाल खिलकारी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हो चुके हैं। लोकगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है जयप्रकाश शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ में ये देवी गीत।

अभी आप लोकगीत कार्यक्रम में जयप्रकाश शर्मा के गाए कुछ लोकगीत सुन रहे हैं। देवी गीत के बाद अब आइए सुनते हैं इनसे ये शिव भजन।

0: अभी आप लोकगीत कार्यक्रम में जयप्रकाश शर्मा से कुछ लोकगीत सुन रहे हैं।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: अब आइए सुनते हैं जयप्रकाश शर्मा से ये पूर्वी।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: लोकगीत कार्यक्रम के आखिर में जयप्रकाश शर्मा से आइए सुनते हैं ये निर्गुण।

इस निर्गुण के साथ ही आज का लोकगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। कलाकार थे जयप्रकाश शर्मा। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने ही वाले हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से।

बॉर्डर टू फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम, पलक मुछाल और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार जावेद अख्तर, मनोज मुंतशिर, संगीतकार थे अनु मलिक और मिथुन। ओ रोमियो, आइए सुनते हैं इस फिल्म में अरिजीत सिंह को। गीतकार गुलजार, संगीतकार हैं विशाल भारद्वाज।

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं सचेत टंडन और परंपरा टंडन की आवाजों में। गीतकार कौसर मुनीर, संगीतकार सचेत परंपरा।

0: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: संदेशों के बाद एक बार फिर स्वागत है नई फिल्मों से कार्यक्रम में।

श्रेया घोषाल को आपने सुना फिल्म थी दे दे प्यार दे टू। गीतकार कुमार, संगीतकार थे आदित्य देव पायल देव। और श्रेया घोषाल को ही अब सुनिए, फिल्म है भूल भुलैया 3। समीर का गीत है, धुन बनाई है अमाल मलिक ने।

जुबिन ढौटियाल को अभी आपने सुना फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेस माहे। कौसर मुनीर का गीत और संगीतकार थे तनिष्क बागची। इसके साथ ही नई फिल्मों से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

श्रोताओं, आज का दिन समर्पित है उन अनगिनत अनाम नायकों को। आज हम आपको याद दिला दें, आज 14 जून है और आज विश्व रक्तदाता दिवस है। तो आज का दिन उन अनगिनत अनाम नायकों को हम समर्पित करते हैं जो बिना किसी पहचान, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी अपेक्षा के किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में आशा की नई किरण बन जाते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज जीवन है, और जब किसी का जीवन संकट में हो तब उसे बचाने के लिए जो सबसे अमूल्य उपहार दिया जा सकता है वो है रक्त। रक्त जो हमारे शरीर की नसों में बहता है, फिर वही किसी दूसरे के शरीर में जाकर उसकी धड़कनों को फिर से गति दे सकता है। यही रक्त किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नया जीवन देता है, किसी प्रसूता माँ को सुरक्षित रखता है, किसी थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे की मुस्कान बचाता है, तो किसी गंभीर रोगी के परिवार की उम्मीदों को टूटने से बचा लेता है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से दान हैं, अन्नदान, विद्यादान, वस्त्रदान और भी बहुत सारे, लेकिन रक्तदान एक ऐसा दान है जो सीधे किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। ये ऐसा दान है जिसमें देने वाले का कुछ कम नहीं होता, लेकिन पाने वाले को पूरी जिंदगी मिल सकती है। दोस्तों, हम बातें आगे करेंगे, लेकिन इस बीच एक गीत सुन लेते हैं।

दोस्तों, हमने पहले भी बातें की कि बहुत सारे दान हैं जो आप करते हैं, अन्न का दान करते हैं, विद्या का दान करते हैं, कपड़े दान में देते हैं, बहुत सारी चीज़ें दान में होती हैं, लेकिन रक्तदान के बारे में हमने आपको कहा कि ये एक ऐसा दान है जो सीधे किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, आज जो हम बातें कर रहे हैं तो ये है आज विश्व रक्तदाता दिवस, जो हर साल 14 जून को मनाया जाता है। तो इसके बारे में हर किसी को आगे आना चाहिए, सिर्फ जागरूक होने से काम नहीं चलेगा, हर किसी को आगे आना चाहिए। क्योंकि जब किसी को किसी का ब्लड खून मिलता है तो उसे एक नई जिंदगी मिलती है। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, किसी सड़क दुर्घटना में कोई घायल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि तुरंत ब्लड की ज़रूरत है। एक माँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। पिता की आंखों में चिंता है। परिवार के लोग इधर उधर फोन कर रहे हैं और तभी कोई रक्तदाता डोनर आगे आता है। वो उस परिवार को जानता भी नहीं, उससे उसका कोई रिश्ता नहीं, लेकिन उसके खून की कुछ बूंदें किसी के घर की खुशियां वापस लौटा देती हैं। और वो क्षण वो व्यक्ति केवल रक्तदाता नहीं रहता, वो किसी के लिए देवदूत बन जाता है। दोस्तों, ये जो विश्व रक्तदाता दिवस है ना, ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं। और अक्सर हम दूसरों को कहते भी हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, बहुत सारे लोग करते हैं और सचमुच वो ईश्वर के उपहार ही होते हैं। तो बातें तो हम आगे भी करेंगे, इस बीच हम सुनते हैं एक और गीत जिसे हमने लिया है फिल्म चिराग से। गायिका हैं लता मंगेशकर, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं मदन मोहन।

दोस्तों, आज की गुलदस्ता में हम बातें कर रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में, जो हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। पता है, ये दिन आधुनिक रक्त समूह प्रणाली के खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को स्वैच्छिक और नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित करना तथा उन डोनर्स का सम्मान करना जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करते हैं। हमारे देश में दोस्तों प्रतिवर्ष लाखों यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। कई बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, बड़े ऑपरेशंस होते हैं, या फिर कैंसर रोगियों के ट्रीटमेंट के लिए, और सबसे ज़रूरी थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के नियमित रूप से ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इन सब के लिए सुरक्षित रक्त की हमेशा ज़रूरत बनी रहती है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज भी रक्तदान को लेकर लोगों के मन में ढेर सारी भ्रांतियाँ मौजूद हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमज़ोरी आ जाएगी, कुछ लोग डरते हैं कि स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है। शरीर कुछ ही समय में उस रक्त की पूर्ति कर लेता है। दोस्तों, सच तो ये है कि रक्तदान केवल किसी और का जीवन नहीं बचाता, बल्कि ये हमें मानवता के और भी करीब ले जाता है। ये हमें एहसास कराता है कि हम किसी अनजान व्यक्ति के दुख को कम करने की क्षमता रखते हैं। बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन इस बीच एक और गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म है खामोशी, गायिका लता मंगेशकर, गुलजार का गीत है, धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

मीनिंगफुल हो जाएगा, कितना अर्थपूर्ण हो जाएगा। ये सारी बातें हम इसलिए आज आपसे कह रहे हैं क्योंकि आज विश्व रक्तदाता दिवस है, आज 14 जून है। तो अगर हम रक्तदान करें, कहते हैं ना पेड़ लगाइए सालगिरह के दिन, कई लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, बहुत तरीके से अनाथालय जाते हैं, अपना जन्मदिन हम सभी मनाते हैं या शादी की सालगिरह लोग मनाते हैं या कभी अपने पूर्वजों को याद करके कोई ख़ास दिन हम मनाते हैं, तो क्यों ना उसे हम रक्तदान के साथ जोड़ें। सोचिए कितना अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आपका एक यूनिट ब्लड जो है ना वो 3 लोगों की हेल्प कर सकता है। यानी आपका एक छोटा सा निर्णय दोस्तों 3 परिवारों में खुशियां लौटा सकता है। कितनी अद्भुत बात है ना कि जिस रक्त का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है वही किसी दूसरे की जीवन की डोर बन सकता है। आज जब हम विश्व रक्तदाता दिवस मना रहे हैं तब उन सभी रक्तदाताओं को हृदय से नमन करना चाहिए जिन्होंने अपने रक्त की कुछ बूंदों से हजारों सपनों को टूटने से बचाया है। नमन उन युवाओं को जो रक्तदान शिविरों में सबसे पहले पहुंचते हैं। सचमुच आज के युवा इस बारे में काफ़ी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और जो लोग बचे हुए हैं उन्हें तो ज़रूर इस बारे में बताना चाहिए। हम सबकी ये जिम्मेदारी होगी कि हम अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उन्हें इस बारे में जागरूक करें। डरना नहीं है दोस्तों। इसके अलावा, युवाओं के अलावा, हम उन महिलाओं और पुरुषों को भी नमन करते हैं जिन्होंने बार बार रक्तदान करके मानवता की सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। और एक बार फिर से सैल्यूट उन अनाम चेहरों को जिनकी वजह से आज न जाने कितने घरों में मुस्कान कायम है। तो ये मुस्कान हमेशा बनी रहे, बनी रहनी चाहिए भी। तो सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित कीजिए। इस बीच एक और गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म है मधुमती, शैलेंद्र का गीत है और संगीतकार हैं सलिल चौधरी।

दोस्तों, मानवता का अर्थ केवल बड़े बड़े शब्द नहीं है। मानवता का अर्थ है किसी की जरूरत के समय उसके साथ खड़ा होना, और रक्तदान इस मानवता की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। आइए, इस विश्व रक्तदाता दिवस पर, आज है ना ये विश्व रक्तदाता दिवस, तो इस विश्व रक्तदाता दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि यदि हम स्वस्थ हैं और चिकित्सकीय रूप से योग्य हैं तो समय समय पर स्वैच्छिक रक्तदान करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि पता है ना, रक्त की हर बूंद में जीवन की संभावना छिपी होती है। दोस्तों, रक्तदान केवल दान नहीं, किसी की धड़कनों को बचाने का संकल्प है। और याद रखिए, आपका दिया हुआ रक्त किसी अजनबी के लिए जीवन का सबसे अनमोल उपहार बन सकता है। इसी संदेश के साथ विश्व रक्तदाता दिवस पर क्यों ना हम सभी रक्तवीरों को नमन भी करें। तो दोस्तों, इस बीच एक और गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिल्म है प्यासा सावन, गायिका लता मंगेशकर, गीतकार संतोष आनंद और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

दोस्तों हमेशा याद रखिए कि रक्त की एक बूंद केवल शरीर में नहीं बहती, वो उम्मीदों में बहती है, विश्वास में बहती है और किसी परिवार की मुस्कान में बहती है। आइए रक्तदान को केवल एक अभियान नहीं बल्कि मानवता का उत्सव बनाएं। इसी अपील के साथ दीजिए अपनी रेडियो दोस्त अनिमा को अलविदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञानवाणी। प्रस्तुत करता है सौरभ कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान वाणी में। कार्यक्रम के आज के अंक के साथ हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त पीयूष आनंद। श्रोताओं आप तो जानते ही हैं कि विज्ञान वाणी कार्यक्रम में हम बातें करते हैं विज्ञान के विभिन्न तकनीकों विभिन्न आविष्कारों के बारे में। विज्ञान जगत की हलचल पर आधारित हमारे कार्यक्रम का स्तंभ होता है विज्ञान समसामयिक की प्रमुख वैज्ञानिकों के योगदान और उनके प्रेरणादायी जीवन के बारे में आपको बताने के लिए हमारा कार्यक्रम का स्तंभ होता है विज्ञान रत्न और आप सभी के ज्ञान को परखने और आप श्रोताओं से जुड़ने का हमारा स्तंभ होता है माइंड टेस्ट। तो श्रोताओं इंतजार किस बात का, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला और सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या कुछ हलचल रही इस हफ्ते विज्ञान की दुनिया में हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान समसामयिकी के तहत। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट द्वारा प्रशांत महासागर में एक ऐसे महाविनाशकारी सुपर अलनीनो की सुगबुगाहट देखी जा रही है जो आधुनिक सैटेलाइट युग के इतिहास में अब तक का सबसे शक्तिशाली अलनीनो साबित हो सकता है। यदि ऐसा संभव हुआ तो यह पूरी पृथ्वी के पर्यावरण, वैश्विक कृषि, खाद्य सुरक्षा और विशेष रूप से भारतीय मानसून के लिए एक विनाशकारी क्लाइमेट बम की तरह काम करेगा। प्रशांत महासागर की गहराई में वैज्ञानिकों ने एक अनोखी खोज की। गैलापागोस द्वीप समूह के पास बहुत छोटा नीला ऑक्टोपस मिला है। यह देखने में किसी कार्टून किरदार जैसा लगता है। इस प्रजाति का नाम माइक्रोलेडोन गैलेपेगेंसिस रखा गया है। श्रोताओं अभी हमने जाना कि क्या कुछ हलचल रही विज्ञान के क्षेत्र में इस सप्ताह विज्ञान समसामयिकी के तहत। अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान रत्न का। श्रोताओं विज्ञान जगत अपने वैज्ञानिकों के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। ये वैज्ञानिक जो नए नए प्रयोग नए आविष्कारों के द्वारा पूरी दुनिया को विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं उनके प्रेरणादायी जीवन को बताने का ही स्तंभ होता है विज्ञान रत्न। श्रोताओं विज्ञान रत्न में आज हम जानेंगे महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के प्रेरणादायी जीवन के बारे में। तो आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। कार्ल लैंडस्टाइनर का जन्म 14 जून 1868 को वियना में हुआ था। उनके पिता लियोपोल्ड सैंडस्टाइनर कानून के डॉक्टर थे और एक जाने माने पत्रकार और समाचार पत्र प्रकाशक थे, जिनका निधन कार्ल के 6 वर्ष की आयु में ही हो गया था। कार्ल का पालन पोषण उसकी माँ फैनी हेस ने किया, जिससे वे इतने प्रेम करते थे कि उनकी मृत्यु का मुखौटा उनकी दीवार पर टंगा रहा। स्कूल छोड़ने के बाद लैंडस्टाइनर ने वियना विश्वविद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन किया और 1891 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। छात्र जीवन के दौरान ही उन्होंने जैव रासायनिक अनुसंधान शुरू कर दिया था और 1891 में उन्होंने रक्त राख की संरचना पर आहार के प्रभाव पर एक शोध प्रकाशित किया। रसायन विज्ञान का और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने अगले 5 वर्ष ज्यूरिख में हंटजर्स वुजवर्ग और एमिल फिशर और म्यूनिख में ई बैम्बर्गर की प्रयोगशालाओं में बिताए। वियना लौटने पर लैंडस्टाइनर ने वियना जनरल अस्पताल में अपनी चिकित्सा की पढ़ाई फिर से शुरू की। 1896 में वे वियना के स्वच्छता संस्थान में मैक्स वॉन ग्रुबर के सहायक बने। इस दौरान उनकी रुचि प्रतिरक्षा तंत्र और एंटीबॉडी की प्रकृति में थी। 1898 से 1908 तक उन्होंने वियना विश्वविद्यालय के पैथोलॉजिकल एनाटॉमी विभाग में सहायक के पद पर कार्य किया, जिसके प्रमुख प्रोफेसर ए वेच सेलबाउम थे, जिन्होंने मेनिनजाइटिस के जीवाणु कारण की खोज की और फ्रेंकल के साथ मिलकर न्यूमोकोकस की खोज की थी। यहाँ लैंडस्टाइनर ने रोग जनित शरीर रचना विज्ञान के बजाय रोग जनित शरीर क्रिया विज्ञान पर काम किया। इस संस्थान में अन्य लोगों की आलोचना के बावजूद वेच सेलबाउम ने उन्हें इसमें प्रोत्साहित किया। 1908 में वेच सेलबाउम को वियना के विल्हेल्मियन हॉस्पिटल में प्रोसिक्यूटर के तौर पर नियुक्त किया गया, जहां वे 1919 तक रहे। 1911 में वे वियना विश्वविद्यालय में पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के प्रोफेसर बने, लेकिन उन्हें इसके अनुरूप वेतन नहीं मिला। सन 1919 तक रोग संबंधी शरीर रचना विज्ञान पर 20 वर्षों के कार्य के बाद लैंडस्टाइनर ने अपने सहयोगियों के साथ रोग संबंधी शरीर रचना विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान पर अपने निष्कर्षों पर कई शोध पत्र प्रकाशित किए। उन्होंने सिफिलिस की प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में नए तथ्य खोजे, वाशरमैन प्रतिक्रिया के ज्ञान में वृद्धि की और प्रतिरक्षात्मक कारकों की खोज की, जिन्हें उन्होंने हेप्टेंस नाम दिया। उन्होंने यह भी दिखाया कि पोलियोमाइलाइटिस के कारकों को बंदर में उन बच्चों की रीढ़ की हड्डियों को पीस कर तैयार किए गए पदार्थ को इंजेक्ट करके पहुंचाया जा सकता है, जिनकी इस बीमारी से मृत्यु हो गई। लैंडस्टाइनर ने रोग संबंधी शरीर रचना विज्ञान, उत्तक विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान में अनेक योगदान दिए, जिससे न केवल उसके अवलोकन और वर्णन में उनकी गहन सावधानी झलकती है बल्कि उनकी जैविक समझ भी स्पष्ट होती है। लेकिन उनका नाम निसंदेह 1901 में रक्त समूहों की खोज और उस पर किए गए उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए हमेशा सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें 1930 में शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1875 में लैंडोइस ने बताया था कि जब मनुष्य को अन्य जानवरों का रक्त चढ़ाया जाता है तो ये बाहरी रक्त कणिकाएं मनुष्य की रक्त वाहिकाओं में गुच्छे बनकर टूट जाती है और हीमोग्लोबिन मुक्त हो जाती है। 1901 से 1903 में लैंडस्टाइनर ने बताया कि इसी तरह की प्रतिक्रिया तब भी हो सकती है जब किसी मनुष्य के रक्त को किसी अन्य जानवर के रक्त से नहीं बल्कि किसी अन्य मनुष्य के रक्त से चढ़ाया जाता है, और यह कुछ पूर्व रक्त आधान प्रयासों के बाद हुए सदमे, पीलिया और हीमोग्लोबिनुरिया का कारण हो सकता है। हालांकि उनके सुझावों पर 1909 तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जब उन्होंने मनुष्यों के रक्त को अप्रसिद्ध AB और O समूहों में वर्गीकृत किया और दिखाया कि ए या बी समूह के व्यक्तियों के बीच रक्त आधान से नई रक्त कोशिकाओं का विनाश नहीं होता है, और यह समस्या केवल तभी उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति को किसी भिन्न समूह के व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाता है। इससे पहले 1901 से 1903 में लैंडस्टाइनर ने सुझाव दिया था कि चूंकि रक्त समूहों को निर्धारित करने वाले लक्षण वंशानुगत होते हैं, इसलिए रक्त समूहों का उपयोग संदिग्ध पितृत्व के मामलों का निर्णय करने के लिए किया जा सकता है। लैंडस्टाइनर उनके शिष्यों द्वारा रक्त समूहों और उनके प्रतिरक्षात्मक उपयोगों पर किया गया अधिकांश बाद का कार्य वियना में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में किया गया था। अपने जीवन के अंत तक लैंडस्टाइनर ने रक्त समूहों और रक्त में पाए जाने वाले प्रतिजनों, एंटीबॉडी और अन्य प्रतिरक्षात्मक कारकों के रसायन विज्ञान का अध्ययन जारी रखा। सीरोलॉजी के क्षेत्र में रसायन विज्ञान को शामिल करना उनकी महान उपलब्धियों में से एक था। लैंडस्टाइनर अपने आप से बेहद सख्त अपेक्षाएं रखते थे और उनमें अधिक ऊर्जा थी। अपने पूरे जीवन में वे मुख्य कार्य के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी अवलोकन करते रहे। उदाहरण के लिए स्पाइरो कीट्स के अध्ययन में डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन की शुरुआत करने का श्रेय उन्हें जाता है। स्वभाव से कुछ हद तक निराशावादी होने के कारण वे लोगों से दूर रहना पसंद करते थे। लैंडस्टाइनर ने 1916 में हेलेन ब्लास्टो से विवाह किया। 1993 में रॉकफेलर इंस्टीट्यूट में एमेरिटस प्रोफेसर बन गए, लेकिन पहले की तरह ही ऊर्जावान होकर काम करते रहे और विज्ञान की प्रगति से हमेशा अवगत रहे। उनकी विशेषता थी कि वे पिपेट हाथ में लिए ही प्राण त्यागते रहे। 24 जून 1943 को प्रयोगशाला में उन्हें हृदयाघात आया और 2 दिन बाद उसी संस्थान के अस्पताल में उनका निधन हो गया जहां उन्होंने इतना उत्कृष्ट कार्य किया था। श्रोताओं, कार्ल लैंडस्टाइनर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। विज्ञान वाणी टीम की ओर से उन्हें सादर नमन। श्रोताओं, विज्ञान रत्न के बाद अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान मंजूषा का। श्रोताओं, प्रत्येक रक्तदान से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। चाहे आप पहली बार रक्तदान कर रहे हों या लंबे समय से करते आ रहे हों, आपका प्रयास आपातकालीन देखभाल, सर्जरी और गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए सीधे तौर पर सहायक होता है। इसलिए विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मानित करने और सुरक्षित रक्त को वैश्विक आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2026 में इसकी थीम है सुरक्षित रक्तदान के माध्यम से जीवन को प्रेरित करना। श्रोताओं, 14 जून की तारीख को ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञानी कार्ल लैंडस्टाइनर की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने 1901 में ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी और बाद में अपने अभूतपूर्व कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। श्रोताओं, 18 से 65 वर्ष की आयु के स्वस्थ वयस्क जिनका वजन 50 किलोग्राम से ज्यादा हो, हर 3 महीने में संपूर्ण रक्त परीक्षण सुरक्षित रूप से किया जाता है। श्रोताओं, खाद्य जनित बीमारियों को रोकना, उनका पता लगाना और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु हर साल 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। वर्ष 2026 का विषय बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन था। यह थीम खाद्य जनित बीमारियों के स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ को कम करने के लिए साक्ष्य आधारित समाधानों को लागू करने पर केंद्रित है। यह दिन यह सुनिश्चित करने का वैश्विक प्रयास है कि खेत से लेकर थाली तक भोजन की पूरी श्रृंखला सुरक्षित, टिकाऊ और न्यायसंगत हो। इस अभियान का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और WHO द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। श्रोताओं, खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता और उस तक पहुंच सुनिश्चित करना है। यह मानव जीवन, जन स्वास्थ्य और देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खाद्य जनित बीमारियों को रोकना, उनका पता लगाना और मानव स्वास्थ्य में सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु हर साल 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। वर्ष 2026 का विषय बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन था। यह थीम खाद्य जनित बीमारियों के स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ को कम करने के लिए साक्ष्य आधारित समाधानों को लागू करने पर केंद्रित है। यह दिन यह सुनिश्चित करने का वैश्विक प्रयास है कि खेत से लेकर थाली तक भोजन की पूरी श्रृंखला सुरक्षित, टिकाऊ और न्यायसंगत हो। इस अभियान का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO और WHO द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। यदि खाद्य सुरक्षा के मुख्य पहलुओं की बात करें तो जन स्वास्थ्य की सुरक्षा, यानी दूषित भोजन और पानी से जो गंभीर बीमारियां जैसे डायरिया और कैंसर जैसी होती हैं, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन इन बीमारियों के जोखिम को कम करता है। कुपोषण और भुखमरी का अंत यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भरपेट और पोषण युक्त भोजन मिले। आर्थिक विकास और उत्पादकता, स्वस्थ नागरिक अधिक ऊर्जा और उत्पादकता के साथ कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षित खाद्य प्रबंधन से भोजन की बर्बादी रुकती है और खाद्य व्यापार में लागत में कमी होती है। राष्ट्रीय स्थिरता और कानून व्यवस्था, एक मजबूत खाद्य प्रणाली देश में सामाजिक अशांति, दंगों और भुखमरी को रोककर राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने में मदद करती है। भारत में नागरिकों को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत लाक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश की एक बड़ी आबादी को किफायती और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। श्रोताओं, खाद्य सुरक्षा में एक समस्या आती है जब खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है। खाद्य सुरक्षा और मिलावट, इस विषय पर आइए जानते हैं श्रोताओं विस्तार से एक वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार हैं कुमार संदीप।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो कि खाद्य सुरक्षा और मिलावट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, स्वस्थ शरीर और निरोग जीवन के लिए सुरक्षित और शुद्ध भोजन का सेवन अत्यंत आवश्यक है, लेकिन वर्तमान समय में खाद्य पदार्थों में मिलावट एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जो न केवल उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालती है बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा उत्पन्न करती है। खाद्य सुरक्षा क्या है, पहले हम जानते हैं खाद्य सुरक्षा हम किसे कहते हैं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति जो पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित, पौष्टिक या गुणवत्तापूर्वक भोजन उपलब्ध हो जिसके लिए और जिससे यह स्वस्थ और सक्रिय जीवन व्यतीत कर सके। सुरक्षित भोजन में किसी प्रकार का हानिकारक सूक्ष्म जीव, रसायन, विषैले तत्व अथवा अन्य अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, जिसे हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, द्वारा विभिन्न मानक निर्धारित किए जाते हैं। इन मानकों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा उन सभी उपायों का समुच्चय है जो भोजन में भोजन के उत्पाद, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और उपभोग के दौरान उसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए अपनाए जाते हैं। अब हम जानते हैं खाद्य मिलावट किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अधिक लाभ या मुनाफा कमाने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों में सस्ते, निम्न गुणवत्ता वाले या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ मिलाकर उसकी मात्रा, उसके रंग रूप या उसके गुणवत्ता में कृत्रिम परिवर्तन करता है, जो उसे खाद्य मिलावट कहा जाता है या फूड एडल्ट्रेशन के नाम से हम उसे जानते हैं। खाद्य मिलावट जानबूझ के भी की जा सकती है, जैसे दूध में पानी मिलाना, दूध में स्टार्च या अरारोट मिलाना, घी में वनस्पति तेल मिलाना, हल्दी में कलर मिलाना, आर्टिफिशियल कलर जैसे कि मेटलिन येलो या लाल रंग मिलाना, लाल

0: में ईंट का चूड़ा मिलाना, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाना, या कभी कभी उत्पादन प्रसंस्करण या भंडारण के दौरान अनजाने में भी ये हो सकता है, जैसे कि कीटनाशकों का अवशेष, भारी धातुओं की उपस्थिति, सूक्ष्म जीवों का संदूषण, भंडारण के दौरान फफूंद एवं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसमें आना। अब हम जानेंगे कि मुख्य रूप से मिलावट की घटना दूध, मसाले, चाय, अनाज, खाद्य तेल, घी, शहद, मिठाइयाँ, दालें, फल और सब्जियों या पेय पदार्थों में ज़्यादातर ये पाए जाती हैं। भारत सरकार के द्वारा या FSSAI के द्वारा इसमें मुख्य धारा जो है 57 धारा के अनुसार अपमिश्रक एडल्ट्रेंट रखने का कड़ा प्रावधान है और कड़ा दंड है इसमें, जो कि अगर अपमिश्रक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है तो अधिकतम 2,00,000 रुपये तक का फाइन आपको लग सकता है, या यदि अपमिश्रक के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो अधिकतम आपको 10,00,000 रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है। FSSAI की धारा नंबर 59 के अनुसार असुरक्षित खाद्य पदार्थों के लिए भी दंड निर्धारित किया गया है, जिसमें आपको मिनिमम 6 मास कारावास या 1,00,000 जुर्माना से लेकर आपको अधिकतम 7 वर्ष से आजीवन कारावास या न्यूनतम 10,00,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अब हम जानेंगे समानता मिलने वाले मिलावट कौन कौन से है। जैसे कि हम जानते हैं कि दूध हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में दूध का उपयोग किया जाता है, जिसमें दूध में सबसे ज़्यादा पानी, स्टार्च या डिटर्जेंट का मिलावट होता है। पनीर में आप देखेंगे कि पनीर में स्टार्च का मिलावट, मैदा का मिलावट, अरारोट का मिलावट होता है। हल्दी पाउडर में मेटलीन येल्लो या रेड क्रोमेट जैसे रंग का मिलावट होता है। लाल मिर्च पाउडर में ईंट का चूड़ा मिलावट होता है। धनिया पाउडर में बुरादा या चावल की भूसी मिलाई जाती है। घी और मक्खन में वनस्पति या अन्य सस्ते तेल की मिलावट होती है। शहद में चीनी या चाशनी या ग्लूकोज का मिलावट होता है। चाय की पत्ती ई में आप कृत्रिम रंग या आप लोहे का चूड़ा या बुरादा का मिलावट होता है। और एक तरबूज आप देखेंगे तो उसमें कृत्रिम रंग, लाल रंग का मिलावट किया जाता है। उपभोक्ता, जैसा कि हम जानते हैं अभी आम का सीजन चल रहा है और आम फलों का राजा कहलाता है। आम हर एक आयु वर्ग के लोगों में काफ़ी पसंद किया जाता है, लेकिन कुछ मुनाफाखोर इसे ज़्यादा पैसा में बेचने के लिए या जल्दी पकाने के लिए इसको कृत्रिम तरीके से पकाया जाता है। कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए लोग मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा बैन है। और ये कैल्शियम कार्बाइड नुमा युक्त आम आपको खाने से आपको गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं, और लंबे समय का प्रयोग करने से आपको कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती है, पेट के रोग हो सकते हैं, आपको लीवर, किडनी या अन्य मानसिक तरह के बीमारियां आपको हो सकती हैं। अब हम मुख्य रूप से जानेंगे कि कृत्रिम पके हुए आम कैसे होते हैं या नेचुरल पके हुए या प्राकृतिक आम जो पकते हैं उसमें क्या विभिन्नताएं हैं। जब हम नेचुरली या प्राकृतिक पके हुए आम में देखते हैं तो जो उसका रंग होता है ये अलग अलग होता है, कहीं आपको ये हरा दिखेगा, कहीं आपको पीला दिखेगा, लेकिन कृत्रिम जो पके हुए आम होते हैं आपको पूरी तरीके से पीला दिखता है, जिसे आपको अवॉइड करना है, आपको नहीं लेना है। जब आप नेचुरली पके हुए आम को देखते हैं तो ये स्वीट एरोमा या स्वीट टेस्ट होता है, ये स्लाइटली सॉफ्ट होता है और इसमें जूस ज़्यादा रहता है और इसमें कहीं कहीं आपको ब्लैक स्पॉट्स भी देखते हैं। और जब आप कृत्रिम पके हुए आम देखते हैं तो इसमें कोई स्मेल नहीं होता है, ये अंदर से काफ़ी सख्त होता है, इसमें अनयूजुअल टेस्ट, अलग तरह का कोई टेस्ट होता है इसमें, और इसके सतह पे एक आपको बाहर उजले पाउडर आपको देखने को मिल सकता है। तो उपभोक्ताओं, आपसे ये अनुरोध है कि जब भी आप आम खरीदें विश्वसनीय स्रोतों से खरीदें, या फिर आप कच्चे आम को अपने घर में ला के इसको अप्राकृतिक तरीके से इसको पकाने की कोशिश करें। अब मिलावट से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी हम जान सकते हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों का लगातार सेवन करने से स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, जैसे कि पेट संबंधी रोग और पाचन विकार, एलर्जी और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, आपको लीवर और किडनी को नुकसान हो सकता है, हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकार का प्रकूल प्रभाव पड़ता है, इसके साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी भारी कमी आती है। अब आप इसको देखेंगे कैसे घरेलू स्तर पर मिलावट की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। दूध में पानी का मिलावट जैसे आपको देखना है तो आप चिकनी सतह पर दूध की एक बूंद गिराएं, और शुद्ध दूध धीरे धीरे नीचे की ओर बहता है और सफ़ेद निशान छोड़ता है। हल्दी पाउडर में कृत्रिम रंग कैसे मिलाएं, जिसमें आप पानी में डालें और यदि रंग तुरंत घुल जाए तो मिलावट की संभावना हो सकती है। काली मिर्च में पपीते का बीज आप कैसे डालते हैं, तो पानी में डालकर पपीते का बीज ऊपर तैरने लगते हैं, तो इससे हम मिलावट की जानकारी ले सकते हैं। अब हम शहद की शुद्धता देखनी है आपको, तो पानी में डालने पर शुद्ध शहद आसानी से नहीं घुलता है और नीचे बैठ जाता है। हालांकि सटीक जांच के लिए प्रयोगशाला परीक्षण भी करना आवश्यक माना जाता है। अब हम खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उपाय के बारे में जानेंगे, तो इसमें सभी उपभोक्ता या ये जागरूक करने के लिए भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा आप विश्वसनीय दुकानों से खाद्य पदार्थों को खरीदें, और पैकेट प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो उसमें आप FSSAI का लाइसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर अवश्य देखें, उनकी निर्माण तिथि या समाप्ति तिथि या बैच कोड भी जरूर देखें। खुली या बिना लेबल वाली वस्तुओं को खरीदने से जहाँ आप बचें। फल और सब्जियों का प्रयोग से पहले अच्छी तरह से धोएं। भोजन को स्वस्थ वातावरण में तैयार और सुरक्षित तापमान में संरक्षित करें। अगर आपको कोई भी खाद्य पदार्थ संदिग्ध की शिकायत संबंधित विभाग में आप करें, या FSSAI के फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पे आप इसकी शिकायत दर्ज करें। जैसा कि हम जानते हैं, स्वस्थता शरीर, भोजन और संतुलित आहार को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, और आप उपभोक्ताओं की ये इसमें भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। खाद्य सुरक्षा केवल सरकार या उद्योग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक उपभोक्ताओं की भी यह महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। जागरूक उपभोक्ताओं को मिलावटखोरों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है, इसीलिए खरीदारी करते समय सतर्क रहें, लेबल पढ़ें, बिल अवश्य लें, और किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना संबंधित अधिकारी या विभागों को दें। प्रिय श्रोताओं, स्वस्थ जीवन का आधार सुरक्षित और शुद्ध भोजन है। खाद्य मिलावट के विरुद्ध जागरूकता और सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। यदि आप सभी मिलकर सुरक्षित खाद्य पदार्थों के प्रति सजग रहेंगे और गुणवत्ता युक्त भोजन को प्राथमिकता देंगे, तो ये एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने में संभव है। अंत में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि शुद्ध भोजन अपनाइए, मिलावट से बचिए और स्वस्थ जीवन का आनंद उठाइए। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, खाद्य सुरक्षा और मिलावट, इस विषय पर अभी हमने जाना विस्तार से एक वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार थे कुमार संदीप। श्रोताओं, भूमि के मरुस्थल में बदलने से खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और मानव आजीविका पर सीधा असर पड़ता है। शुष्क भूमि पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के एक तिहाई से अधिक हिस्से को कवर करता है, जो अनुचित उपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक संवेदनशील है। लोगों को टिकाऊ भूमि प्रबंधन और जल संरक्षण के प्रति प्रोत्साहित कर यह संदेश देकर कि भूमि का क्षरण रोकना और बंजर भूमि का पुनर्स्थापन संभव है, इसलिए हर वर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण और अनावृष्टि रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य भूमि के क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे के खतरों के बारे में वैश्विक स्तर पर जन जागरूकता फैलाना है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD को लागू करने के लिए समर्पित है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण का स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान के साथ मरुस्थलीकरण को सतत विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में पहचाना गया था। 2 साल बाद वर्ष 1994 में महासभा ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी UNCCD की स्थापना की, जो पर्यावरण और विकास को अस्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। बाद में वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2010 से 20 को मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक और UNCCD सचिवालय के नेतृत्व में भूमि क्षरण से लड़ने हेतु वैश्विक सहयोग जुटाने को मरुस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की। श्रोताओं, शुष्क, अर्ध शुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में भूमि का क्षरण होता है। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। यह मौजूदा रेगिस्तानों के विस्तार का उल्लेख नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुष्क भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, जो दुनिया के एक तिहाई से अधिक भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं, अति दोहन और अनुचित भूमि उपयोग के कारण बेहद संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, वनों की कटाई, अत्याधिक चराई और खराब सिंचाई प्रथाएं आदि सभी भूमि की उत्पादकता को कम कर सकती हैं। सूखे की बात करें तो सूखे को दीर्घ अवधि में वर्षा में कमी के रूप में माना जाता है, आमतौर पर एक मौसम या उससे अधिक, जिसके परिणाम स्वरूप जल की कमी होती है, जिससे वनस्पति, जानवरों और लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वनाग्नि के कारण भी सूखा पड़ सकता है, जिससे मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है और मृदा में जल की कमी हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के अलावा भूमि क्षरण के परिणाम स्वरूप सूखे में वृद्धि होती है। पिछले 2 दशकों की तुलना में वर्ष 2000 से सूखे की घटना और अवधि में 29% की वृद्धि हुई है। 55 मिलियन आबादी हर साल सूखे के कारण प्रभावित होती है। और वर्ष 2050 तक 3/4 आबादी के प्रभावित होने की आशंका है। 2.3 अरब लोग पहले से ही जल संकट का सामना कर रहे हैं। हमें से अधिक लोग जल की अत्याधिक कमी वाले क्षेत्रों में रह रहे होंगे, जिसमें वर्ष 2040 तक अनुमानित 4 बच्चों में से एक शामिल होगा। इस प्रकार कोई भी देश सूखे से सुरक्षित नहीं है। इसके उपाय हैं त्वरित वनीकरण और वृक्षारोपण की आवश्यकता, जल प्रबंधन, मिट्टी के समृद्ध और अति उर्वरीकरण की आवश्यकता। श्रोताओं, सतत विकास लक्ष्यों 2030 का लक्ष्य 15 घोषित करता है कि हम ग्रह को क्षरण से बचाने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं, जिसमें स्थायी खपत और उत्पादन, इसके प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन पर तत्काल कार्रवाई करना शामिल है, ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। अन्य संबंधित पहलों यानी राष्ट्रीय स्तर पर पहलों की बात करें तो एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार के सृजन के साथ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, संरक्षण और विकास कर पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। अब इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसे नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा मरुस्थल विकास कार्यक्रम, इसे वर्ष 1995 में सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और पहचाने गए रेगिस्तानी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार को फिर से जीवंत करने हेतु शुरू किया गया था। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसे वर्ष 2014 में 10 वर्ष की समय सीमा के साथ भारत के घटते वनावरण की रक्षा, पुनर्स्थापना और वनों के विस्तार के उद्देश्य अनुमोदित किया गया था। वैश्विक पहलों की बात करें तो बॉन चुनौती एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत दुनिया की 150 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत और बंजर भूमि पर वर्ष 2020 तक और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 2030 तक वनस्पतियां उगाई जाने वाली हैं। पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में भारत ने स्वैच्छिक रूप से बांध चुनौती पर स्वीकृति दी थी। वर्तमान में 26 लाख हेक्टेयर खराब पड़ी भूमि को बहाल करने का लक्ष्य संशोधित किया गया है। तो श्रोताओं, अभी हमने देखा कि किस तरह से मरुस्थलीकरण का संकट बढ़ता जा रहा है। श्रोताओं, अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ माइंड टेस्ट का। इस स्तंभ में हम हर सप्ताह 2 सवाल पूछते हैं, जिसके जवाब आपको डाक या ईमेल के द्वारा हमें भेजने होते हैं, और सही जवाब भेजने वालों के नाम हम अपने कार्यक्रम में भी शामिल करते हैं। तो इंतजार किस बात का, आइए सबसे पहले जान लेते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए सवालों के बारे में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह का हमारा पहला सवाल था कि रेलवे का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, जिसका सही जवाब है जॉर्ज स्टीफेंसन। और पिछले सप्ताह का हमारा दूसरा सवाल था कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है 8 जून। और इन सवालों के सही जवाब हमें लिख भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं जतिन राज और उज्जवल कुमार तिलका मांझी भागलपुर से, और चंदन कुमार सिन्हा और राकेश कुमार सिन्हा ने पूर्णिया बिहार से। आप सभी श्रोताओं को हमारे कार्यक्रम ध्यान से सुनने के लिए और सही जवाब हमें लिख भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब नोट कर लें आज के सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है कि रक्त वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने की। सवाल एक बार फिर से सुन लें, रक्त वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने की। और आज का हमारा दूसरा सवाल है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। सवाल एक बार फिर से सुन लें, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। श्रोताओं, सवाल तो आपने नोट कर ही लिया होगा, अब नोट कीजिए हमारा पता और लिख भेजिए इन सवालों के सही जवाब हमें डाक या ईमेल द्वारा। हमारा पता है कार्यक्रम विज्ञान वाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर, पिन 812001। और हमारा ईमेल है phairbhagalpur@gmail.com, यानी phairbhagalpur@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों और ईमेल्स का। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विज्ञानवाणी कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि विज्ञानवाणी का अंक आपको पसंद आया होगा। विज्ञानवाणी के माध्यम से आपको बहुत सारी विज्ञान के क्षेत्र में नई जानकारियां मिली होंगी, और इन रोचक जानकारियों से आप विज्ञान के अपने ज्ञान को और बढ़ा पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो श्रोताओं, घड़ी की सुई इशारा कर रही है और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो इस वादे के साथ ये होगी आपसे फिर मुलाकात, इसी दिन इसी जगह इसी समय यानी आकाशवाणी केंद्र भागलपुर पर। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त पीयूष आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: संदेश के पहले आप सुन रहे थे विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञानवाणी, प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया।
0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं संगीत कुमार नाहर का गायन राग मुल्तानी में। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं सैयारे नादान गए, द्रुत के बोल तीन ताल में हैं, छाड़ी दे कलाई मोरे मतवारे श्याम। तो आइए सुनते हैं संगीत कुमार नाहर का गायन राग मुल्तानी में।

श्रोताओं, हमें खेद है कि हम आपको किसी कारणवश संगीत कुमार नाहर का गायन नहीं सुनवा पा रहे हैं। आइए सुनते हैं शंकर मिश्र नाहर का गायन। आरंभ में सुनिए राग गुजरी तोड़ी।

सुरसंगम कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं शंकर मिश्र नाहर का गायन। राग गुजरी तोड़ी सुनने के बाद अब प्रस्तुत है राग मिश्र शिवरंजनी।

शंकर मिश्र नाहर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे राग मिश्र शिवरंजनी, और इसके साथ ही सुरसंगम कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वीरेंद्र कुमार ठाकुर के गाए लोकगीत।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम हम पुनः लेकर आएंगे 1:20 पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 1:10 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वस्थ भारत निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का झारखंड दौरा। रांची में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन आंदोलन बनाने के लिए तैयारियां तेज। 21 जून को राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर होंगे कार्यक्रम। सरायकेला के कुकुडू नक्सली घटना के 7 साल पूरे। शहीद जवानों को किया जा रहा याद। दुगनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन और 18वीं झारखंड राज्य सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का सरायकेला में उद्घाटन। 22 जिलों से आए 165 खिलाड़ी ले रहे भाग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा, सुशासन और जन कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रम के तहत पदयात्रा, स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण जैसे जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज रांची पहुंचे। उन्होंने तेतर टोली तालाब के समीप आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने तालाब परिसर में चलाए गए स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया और साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कई अन्य कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ निरंतर सेवा दे रहे हैं। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनी नगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प दोहराया। कहा कि इसके लिए योजनाओं को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा, इसमें जन सहभागिता रहेगी।
1: ये वर्षों के अथक परिश्रम का प्रश्न है और ये सरकार की मनोदशा को चिन्हित करने वाली बात है। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को जन आंदोलन के रूप में, जन सहभागिता के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। उन्होंने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है, मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत निःशुल्क ब्लड ग्रुप और हेमोग्लोबिन जांच के साथ रक्तदान शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, शपथ समारोह और स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया है। इधर सिमडेगा में सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम सुंदर सामद ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने रक्तदान महादान का संदेश देते हुए समाज को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया।
2: आज विश्व रक्तदाता दिवस है। प्रत्येक वर्ष 14 जून को बनाई जाती है और ये खास करके हमारे जो रक्तदाता हैं, जो कि रक्तवीर हैं, उनको सम्मान देने के उद्देश्य से ये रक्तदाता दिवस बनाया जा रहा है। रक्त केंद्र सिमडेगा में जितने रक्तदाता हमारे सिमडेगा जिले में हैं, उन लोग हम लोग सम्मानित करेंगे।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक सह आयुष निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को जन आंदोलन बनाने के लिए 21 जून को राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रम होंगे। स्कूल, कॉलेज, पार्क, वृद्धाश्रम, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और सरकारी संस्थानों में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत सामूहिक योगा अभ्यास कराया जाएगा, जिसमें जन प्रतिनिधि, पुलिस, एनसीसी कैडेट, आंगनबाड़ी सेविकाएं और आम नागरिक शामिल होंगे। इस वर्ष की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावा में कुकुडू साप्ताहिक हाट में नक्सली हमले में शहीद हुए 5 पुलिसकर्मियों की स्मृति में आज पुलिस केंद्र दुगनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी सहित जिले के सभी वरीय एवं पुलिस पदाधिकारी भाग लेकर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 14 जून 2019 को कुकुडू हाट में परिसर में नक्सली हमले में एक ASI समेत 5 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए थे।
3: नक्सलियों के द्वारा हमारे 5 वीर जवान शहीद हुए थे। हम लोग दिवस शहीद सम्मान मनाते हैं, जिनमें उनके आश्रितों को हम कुछ सम्मान टोकन स्वरूप देते हैं और इस दिन को याद करते हैं, हमारी स्मृति में रखते हैं, ताकि हमारी आज के और भविष्य के भी जो पुलिस की जो पीढ़ियां हैं वो उनकी कुर्बानी को याद रखे।
0: जमशेदपुर में टाटा स्टील की सुरक्षा टीम ने एक बड़ी चोरी की घटना को विफल करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में तांबे की केबल बरामद की गई है, जिसे कथित तौर पर प्लांट परिसर से चोरी कर बाहर ले जाने की तैयारी की जा रही थी। बिष्टुपुर थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। धनबाद जिले में किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। बलियापुर क्षेत्र में जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक कुमार के नेतृत्व में उर्वरक, बीज और कीटनाशी दुकानों की जांच के दौरान एक प्रतिष्ठान में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। बिना लाइसेंस चल रही उर्वरक बीज दुकान को कृषि विभाग ने सील किया।
4: मामला सिर्फ इतना है कि जो न्यू दीपक बीज भंडार है, इनके प्रतिष्ठान में अवैध रूप से कीटनाशी है वो पाया गया है, इनके पास अनुज्ञप्ति नहीं, साथ ही साथ बीज और खाद में कुछ अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उस व्यवस्था को देखते हुए जो मैं इनको स्पष्टीकरण, और चूंकि अवैध रूप से ह्यूज अमाउंट में पेस्टिसाइड है जो जहर है और एक्ट के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है, बड़ी मात्रा में पाया गया है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपए प्रति किलो है। रामगढ़ जिला स्थित सिद्धो कानू मैदान में 21वीं उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र बोकारो के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। IG ने कहा कि खेल केवल जीत हार का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, समर्पण और टीम वर्क का सबसे बड़ा पाठ भी सिखाता है।
5: झारखंड पुलिस का हर साल इवेंट होता है, उसी के अंतर्गत इस बार ये रामगढ़ जिला में हो रहा है। सभी 5 जिला से प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कई प्रकार की इवेंट है इसमें। हाँ, ये पुलिस में एक बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर कि सबसे पहले रेंज लेवल पे एक टूर्नामेंट होता है जिसमें कि सभी जिले पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो बढ़िया परफॉर्म करेगा उनकी रेंज की एक टीम बनेगी जो स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी।
0: झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में सरायकेला खरसावा में 18वीं झारखंड राज्य सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के 22 जिलों से आए 165 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वस्थ भारत निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का झारखंड दौरा, रांची में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन आंदोलन बनाने के लिए तैयारियां तेज, 21 जून को राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर होंगे कार्यक्रम। सरायकेला के कुकुडू नक्सली घटना के 7 साल पूरे, शहीद जवानों को किया जा रहा है याद। दुगनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन और 18वीं झारखंड राज्य सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का सरायकेला में उद्घाटन, 22 जिलों से आए 165 खिलाड़ी ले रहे भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, एक बार फिर स्वागत है लोकरंग कार्यक्रम में।
7: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
6: श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं वीरेंद्र कुमार ठाकुर को।

0: वीरेंद्र कुमार ठाकुर को आप सुन रहे थे लोकरंग कार्यक्रम में।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण। प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: अंग दर्पण कार्यक्रम सुनने वाला सब श्रोता भाई बहन का गैरु के नमस्कार। श्रोता भाई बंधु, अभी गर्मी अपनो चरम पर है, देखिए रहलो छो कहना उमस भरनी छे और रौदा एकदम चिलचिला रहलो छे। एहनो समय में अपनो स्वास्थ्य के विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आरो देखो कि एहने जब समय होय छे तो बहुत लोग के देखबो कि ब्लड प्रेशर सनी यानी कि रक्तचाप जे छे वो बढ़ी जाय छे। कई एहनो समय आबे छे जबकि बीमार आदमी जे होय छे कुछ खास करी के गंभीर रूप से वहूं में जहाँ कोई दुर्घटना ग्रस्त लोग रहे छे ने तो ओकरा बहुत प्रकार के जरूरत होय छे हॉस्पिटल में अस्पताल में। लेकिन एक विशेष जे जरूरी होय छे जेकरा ली कि लोग एकदम तलमलाय जाय छे कि कहाँ से ऊपर भेतै होच के रक्त यानी कि खून। सुनते हबो कि एक बोतल खून चढ़ी गेलै, दू बोतल खून चढ़ी गेलै, तो है जब केकरे जरूरत पड़े छे रक्त के खून के तो वह समय में लोग सोचा लागे छे कि अब हाय बाप की करूं। अहने समय पर बहुत एहनो फरिश्ता के रूप में लोग होय छे जेकि अपनो रक्त के दान करे छे, ओकरा के छे रक्तदाता। आरो हौ रक्तदाता भगवान नियन आबी के जे छे कि वह मरीज के वह हमरो माय दाय के जेकरो कि जेकि मौत के मुँह में एकदम करीब रहे छे ओकरो जान बचा ले छे। तो आय वही रक्तदाता सनी के याद करे के हुनका सम्मान दे के आय विशेष दिन छिके। ये बात हम अलेली करी रहल छे श्रोता भाई बंधु कि हर साल 14 जून का विश्व रक्तदाता दिवस मनेलो जाय छे, यानी कि आज के दिना विश्व रक्तदाता दिवस पूरे दुनिया भर में मनेलो जा रहल छे। आरो आय कारण छे कि रक्तदाता दिवस आइ खना कहने मनेलो जाय छे, तेकरो जे विशेष कारण छे हो छे कार्ल लैंडस्टीनर के आइ खना जन्मदिन छिके। तो अब अपना सनिक मनोम होते कि है कौन एक नाम आवी गले कार्ल लैंडस्टीनर। तो हम बताबे छे कि अभी जे हम सनिक कहे छे ना कि हमरो जे छे कि रक्त के समूह ब्लड ग्रुप एच के बीच के ओच के या पॉजिटिव निगेटिव, तो है ब्लड ग्रुप के रक्त समूह के जे खोज करता रहे नी ओकरे नाम छे कार्ल लैंडस्टीनर। इनके कारण हम सनी अपनो ब्लड ग्रुप जाने पारल छे या आ पूरा दुनिया कहे छे कि भाई एच को बीच को ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव ओ निगेटिव बी पॉजिटिव ऐ प्रकार से जे बोले छे तो उ हुनके खोज छे। हर साल मनेलो जाय छे और हर साल कोनो न कोनो एक थीम के साथ ये दिवस के मनेलो जाय छे। वर्ष 2026 में आज को दिवस के जे थीम छे उच के वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ, यानी कि मानवता की एक बूंद रक्त दो जीवन बचाओ, यानी कि एक बूंद रक्त भी जे छे केकरे जीवन बचावे के लेली पर्याप्त छे। कभी कभी एना देखे ला मिले छे, यह जे छे कि एक एक बूंद रक्त के महत्व छे। यह थीम के साथ अवर को है रक्तदाता दिवस मनेलो जाय छे। WHO के कहना छे कि ई थीम याद दिलावे छे कि हर रक्तदान खाली एक मेडिकल प्रोसेस नै छिके बल्कि एकजुटता करुणा आरु सामूहिक जिम्मेदारी के अभिव्यक्ति छिके। एक बूंद में समुच्चे मानवता झलके छे है। तखनिए पता चले छे कि जब कोई जरूरत पड़े छे ना रक्त के तो देखबो कि घरों में छौ 50 आदमी, ओकरा यहाँ ब्याह शादी होलौ मरनी हरनी कुछ होलौ तो देखबो कि 200 लोग भोज खाए ला आबी गेलौ। लेकिन जब जरूरत पड़े छे ना कि एक यूनिट रक्त के तो लोग तखनी एगो नजर नहीं आबे छे। यही लेली WHO ने है बात के कहल के कि एक बूंद रक्त के कितना महत्व छे। हरु हौ केवल एक मेडिकल प्रोसेस नहीं के बल्कि सामाजिक एकजुटता एकता आरु करुणा। जब तक लोगों के हृदय में दया नहीं रहते, करुणा नहीं रहते, प्रेम नहीं रहते, श्रद्धा नहीं रहते तो वो मनुष्य भय का भी मनुष्य नहीं छिके। आरु देखबे करे छो कि दुनिया केहनो होलो जाय छे तो है सब चीज के जरूरत छे, तभी कोई व्यक्ति जे छे कोई आदमी रक्त के दान करे छे। ई दिवस मनावे के शुरुआत 2004 में पहली बेर WHO ने विश्व रक्तदाता दिवस आयोजित करी के करल के। ई दिवस के मनावे के पीछू जे उद्देश्य छे हौ छे कि स्वैच्छिक रूप से आज के समय में बहुत काला बाजारी भी बढ़ी गेलो छे। श्रोता बंधु जब देखबो कि बहुत एहनो अस्पताल होय छे जेकरो इर्द गिर्द कुछ एहनो गलत सलत आदमी गलत मानसिकता के लोग आ बहुत एहनो कि रक्त के खरीद फरोख्त करे छे जे कि कानूनन अपराध छे सरकार ओकरा निषेध करे छे। तो रक्तदान जे होय के चाही उ स्वैच्छिक होय चाहिए और बिना भुगतान के यानी कि रक्तदान के बदला में पैसा नहीं पैसा ले लो तब की करूँ ना कि उ तो खरीद बिक्री भाग ले छे कि नहीं। नियमित रक्तदान के बढ़ावा देना आरो रक्त आरो प्लाज्मा दान के जीवन रक्षक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना। प्लाज्मा के बाद जब कोरोना काल चली रहलो रहे तखनी खूब सुन लहबो कि रक्त नहीं प्लाज्मा चाहिए ठीक है ना। तो ई सब होय छे आरो रक्तदाता सिनी के योगदान के सम्मान देना एकजुटता मानव के मूल्य के बढ़ावा देना सरकार के सुरक्षित रक्त ट्रांसफ्यूजन के लेली जे छे कि राष्ट्रीय रक्त कार्यक्रम में निवेश के लेली प्रोत्साहन करना आरो रक्तदान जे भी आदमी करे छे देखो एकरा से तत्काल थोड़ा बहुत लगे जरूर छे मानसिक रूप से कि कमजोरी होय छे लेकिन एहनो मेडिकल साइंस कहे छे कि रक्तदान करला से हरेक व्यक्ति तीन तीन महीना में नहीं तो छः महीना में रक्तदान करा पड़े छे ओकरा से की होय छे कि नया खून बने छे आरो जब नया खून बने छे तो शरीर आरो तरोताजा हो जाए छे आरो ओकरा में युवापन आवे छे। तो रक्त आरो रक्त उत्पाद के ट्रांसफ्यूजन हर साल लाखों लोग के जान बचाबे छे आपातकालीन स्थिति में सर्जरी में दुर्घटना में प्रसव के दौरान जटिलता वाली महिला सिनी के लिए सीवियर मलेरिया एनीमिया आरो सिकल सेल के बच्चा आरो मरीज के लिए कैंसर के इलाज में थैलेसीमिया जैनो बीमारी में ब्लड डिसऑर्डर वाला मरीज के जे छे कि है काम आवे छे। एक यूनिट रक्त तीन लोगों के जान बचाव सके छे। आरो भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 18 से 65 साल के उम्र के कोई भी आदमी जेकरो वजन कम से कम 45 किलो हुए हाँ ध्यान से सुनना छे कि जे 18 से 65 साल के आदमी जेकरो वजन कम से कम 45 किलो हुए हीमोग्लोबिन के मात्रा 12.5 ग्राम डेसीलीटर से ऊपर हुआ वह रक्तदान करा पा रहा। रक्तदान सरल होय छे सुरक्षित छे आरो एकरो असर जे होय छे स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन होय छे। तो है तो जानकारी रहे रक्तदाता दिवस के संबंध में श्रोता भाई बहन अब कार्यक्रम में आगू बढ़बे आरो सुनबे एक अंगिका में काव्यपाठ जे जेठ के है भड़की दुपहरी से संबंधित छे लेकिन एकरा से पहिने कुछ जरूरी संदेश।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल

0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: जेठ महीना रो वर्षा पर कविता छे। अले जेठ गिरले वर्षा भर गेले नदी आरु नाला, खेतों में हरियाली छैले झूमे किसान राजा। अले जेठ गिरले वर्षा भर गेले नदी आरु नाला, खेतों में हरियाली छैले झूमे किसान राजा। नया नया कोमल पत्ती देखो वृक्ष में अले ताजा, रही रही मंद पवन आवे छे जियारा नाचे मोरा। नया नया कोमल पत्ती देखो वृक्ष में अले ताजा, रही रही मंद पवन आवे छे जियारा नाचे मोरा। झिंगुर झनझन गीत सुनावे बगुला ध्यान लगाए, मेढ़क टरटर बिगुल बजावे अले बड़ा ताजा। झिंगुर झनझन गीत सुनावे बगुला ध्यान लगाए, मेढ़क टरटर बिगुल बजावे अले बड़ा ताजा। डाल डाल पर पक्षी चहके रही रही करे कलरव गान, सारा जग में खुशी मच गेले धरती छे स्वर्ग रो धाम। डाल डाल पर पक्षी चहके रही रही करे कलरव गान, सारा जग में खुशी मच गेले धरती छे स्वर्ग रो धाम। बिन वर्षा सब कुछ से सुना सुना नदी तलाव, आरो सुना जग संसार, पानी बिना मछलियां तड़पे लगैना छे वर्षा रो आस। बिन वर्षा सब कुछ से सुना सुना नदी तलाव, आरो सुना जग संसार, पानी बिना मछलियां तड़पे लगैना छे वर्षा रो आस। खुशी के मारे चल किसन मा कंधे धरे कुदाल, खुशी के मारे चल किसन मा कंधे धरे कुदाल, मस्ती में झुमी झुमी गीत गावे छे सुधी नहीं छे आज। सूरज रो किरण पर कविता छे। सूरज रो किरण छे लाल लाल, आवे छे धरती पर बार बार, फैली जाय छे प्रकाश सारा संसार, खिली जाय छे कली फूल डाल डाल। सूरज रो किरण छे लाल लाल, आवे छे धरती पर बार बार, फैली जाय छे प्रकाश सारा संसार, खिली जाय छे कली फूल डाल डाल। मुस्कुरा जाय छे प्रकृति यो मधुर बाग, पक्षी छोड़ घोसला विचरण करे छे आसमान, हर प्राणी छोड़ी करे छे अपनो काम। मुस्कुरा जाय छे प्रकृति रो मधुर बाग, पक्षी छोड़ घोसला विचरण करे छे आसमान, हर प्राणी बिस्तर छोड़ी करे छे अपनो काम। छे कत्ते पक्का एकरो इंसाफ, हर प्राणी के मिले छे प्रकाश एक बार। छे कत्ते पक्का एकरो इंसाफ, हर प्राणी के मिले छे प्रकाश एक बार, दूर हो जाय छे सारा अंधकार। चिड़िया हर्ष कलरव रो करे छे गान, घोसला छोड़ी उड़े छे आसमान। चिड़िया हर्ष कलरव रो करे छे गान, घोसला छोड़ी उड़े छे आसमान। सूरज रो किरण छे लाल लाल, आवे छे धरती पर बार बार। छे कत्ता पक्का एकरो इंसाफ, वे करे नहीं छे केकरो इंतजार, समय पर आबी के काम करे छे अपने आप, नहीं तो पल भर में मिटी जेते सारा संसार। छे कत्ता पक्का एकरो इंसाफ, वे करे नहीं छे केकरो इंतजार, समय पर आबी के काम करे छे अपने आप, नहीं तो पल भर में मिटी जेते सारा संसार। वे सबरो सुने छे हर बात, गरीब रहे या अमीर बराबरी बात। वे सबरो सुने छे हर बात, गरीब रहे या अमीर बराबरी बात। उठले किसन मा ले चलले कुदाली, मस्ती में झूमी कुदाली चलावे छे, गीत खुशी में गावे छे धरती का स्वर्ग बनावे छे। उठले किसन मा ले चलले कुदाली, मस्ती में कुदाली चलावे छे, गीत खुशी में गावे छे धरती का स्वर्ग बनावे।

भारत देश रो गरिमा पर छे कविता। जहां गंगा जमुना सरस्वती रो बहै छे कंचन धारा, ओकरो शक्ति से भारत सदा महान छे। भारत देश रो गरिमा सदा महान छे। जहां गंगा जमुना सरस्वती रो बहै छे कंचन धारा, ओकरो शक्ति से भारत सदा महान छे। भारत देश रो गरिमा सदा महान छे। जहां संत ऋषि मुनि बाबा संत गुरु साहिब महात्मा गांधी आवि का तपस्या करना छे, ओकरो शक्ति से भारत सदा महान छे। भारत देश रो गरिमा सदा महान छे। जहां संत ऋषि मुनि बाबा संत गुरु साहिब महात्मा गांधी आवि का तपस्या करना छे, ओकरो शक्ति से भारत सदा महान छे। भारत देश रो गरिमा सदा महान छे। जहां राजा हरिश्चंद्र राजा रामचंद्र लक्ष्मण सीता ने अपनो कर्म कर्तव्य रो बल पर सारा देश के लेली देना अनमोल रत्न वरदान छे, भारत देश रो गरिमा सदा महान छे। जहां राजा हरिश्चंद्र राजा रामचंद्र लक्ष्मण सीता ने अपनो कर्म कर्तव्य रो बल पर सारा देश लेली देना अनमोल रत्न वरदान छे, भारत देश रो गरिमा सदा महान छे। जहां सत्यम सुइया सती सावित्री सती बिहुला रो कथा अमृत रो खान छे, भारत देश रो गरिमा सदा महान छे। जहां सत्यम सुइया सती सावित्री सती बिहुला रो कथा अमृत रो खान छे, भारत देश रो गरिमा सदा महान छे। जहां चंद्रशेखर आजाद सरदार भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस देश रो झंडा फहराए खातिर देना अपनो बलिदान छे, भारत देश रो गरिमा सदा महान छे। जहां चंद्रशेखर आजाद सरदार भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस देश रो झंडा फहराए खातिर देना अपनो बलिदान छे, भारत देश रो गरिमा सदा महान छे। जहां सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी देश के खातिर देना अपनो बलिदान छे, भारत देश रो गरिमा सदा महान छे। जहां सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी देश के झंडा फहराए खातिर देना अपनो बलिदान छे, भारत देश रो गरिमा सदा महान छे। जहां कोकिला छेड़े छे मधुर तान, भारत देश रो गरिमा सदा महान छे। जहां कोकिला छेड़े छे मधुर तान, भारत देश रो गरिमा सदा छे महान। बुढ़ापा रो लाठी जीवन साथी पर कविता छे। जो कहीं घर से बाहर जाय छे साथ में हरदम लाठी, बिना लाठी के हम गिरी पड़े छी चाची, बुढ़ापा रो लाठी जीवन साथी। जो कहीं घर से बाहर जाय छी साथ में हरदम लाठी, बिना लाठी के हम गिरी पड़े छी चाची, बुढ़ापा रो लाठी जीवन साथी। जो कहीं पैसा पैखाना जाय छी साथ में हरदम लाठी, बिना लाठी के हम लड़खड़ाए के गिरी पड़े छी चाची, बुढ़ापा रो जीवन लाठी। जो कहीं हम टोला पड़ोसा घूमे जाय छी साथ में हरदम लाठी, बिना लाठी के हम कहीं नहीं जावा पड़े छी चाची, बुढ़ापा रो लाठी जीवन साथी। जो कहीं हम टोला पड़ोसा में घूमे जाय छी साथ में हरदम लाठी, बिना लाठी के हम कहीं नहीं जावा पड़े छी चाची, बुढ़ापा रो लाठी जीवन साथी। जो केकरो से बात करे छी साथ में हरदम लाठी, बिना लाठी के हम खड़ा नहीं रह पड़े छी चाची, बुढ़ापा रो लाठी जीवन साथी। जो केकरो से बात करे छी साथ में हरदम लाठी, बिना लाठी के हम खड़ा नहीं रह पड़े छी चाची, बुढ़ापा रो लाठी जीवन साथी। जो कहीं हाट बाजार हम जाय छी साथ में हरदम लाठी, बिना लाठी के हम कहीं नहीं जावा पड़े छी चाची, बुढ़ापा रो लाठी जीवन साथी। जो कहीं हाट बाजार हम जाय छी साथ में हरदम लाठी, बिना लाठी के हम कहीं नहीं जावा पड़े छी चाची, बुढ़ापा रो लाठी जीवन साथी। जो कहीं कदा बरसात में बाहर जाय छी साथ में हरदम लाठी, बिना लाठी के हमरो बेकार जीवन छे चाची, बुढ़ापा रो लाठी जीवन साथी। जो है कहीं कदा बरसात में बाहर जाय छी साथ में हरदम लाठी, बिना लाठी के हमरो जीवन बेकार छे चाची,
बुढ़ापा रो लाठी जीवन साथी। जो कहीं राह में कुत्ता जानवर आवे छे, यह लाठी से जीवन रो रक्षा करे छे चाची।

बुढ़ापा और लाठी जीवन के साथी। सच में एक लाठी के जब चर्चा करे छे तो अपना बिहार खास करी के बड़ी लाठी के नाम पर प्रसिद्ध है। हालांकि कवि बच्चों प्रसाद सिंह जी ने अभी लाठी के बहुत महत्व बतल के और खास करी के जीवन के हो चौथा पड़ाव जबकि कोई आदमी जो साथों नहीं रहले जब शरीर झुकी जाए छे कमर टेढ़ो भ जाए छे चलना फिरना मुश्किल होय छे तो एहनो समय में लाठी साथ दे छे। हम बात करी रहलो रहिए कि लाठी बिहार से जे छे कि बड़ी एकरो संबंध अच्छा रहलो छे कहने कि अपनो गांधी जी जे हमरो सबके राष्ट्रपिता छे पूरा दुनिया आए हुनका मानै छे बल्कि पूजै छे कि हुनको जे अहिंसा सत्य और अहिंसा के संदेश रहे वो अद्वितीय रहे तो हुनको जिम्मा में जे लाठी रहे ना श्रोता बंधु हो अपनो भागलपुर के सुल्तानगंज सतनटा पहने एक गांव पड़े छे घोड़घट तो घोड़घट के ही लाठी गांधी जी अपनो जीवन भर आखिरी समय तक रखने रहे तो इसलिए लाठी के तो बहुत महत्व है और लाठी के एलिए अपनों से नहीं के बड़ी नाम है कि भाई अपनो यहाँ करो लाठी राष्ट्रपिता जिम्मा में रहे। एक पहना भी कवि बच्चों प्रसाद सिंह ने एक बहुत सुंदर कविता सुनलकै जरा में कि अपनो देश के वर्णन रहे देश के क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस नेताजी आरो की कहे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद झांसी की रानी आरो साथे साथ अपनो अंग प्रदेश के कुछ संत के भी चर्चा होनी अपनो कविता में करलके जना कि महर्षि संत सेवी जी महाराज महर्षि साही स्वामी जी महाराज के होनी चर्चा करलके साथे साथ अभी जे जेठ के दुपहरी देखी रहलो छो ओकरो तो चर्चा सुनबे करलो लेकिन वह जेठ के दुपहरिया में भी जे कवि ने जे सुंदरता जे खूबसूरती जे प्रेम खोजल के नहीं और है वो चिड़िया के कलरव कि भोरे उठो 5-6 बजे से जखनी केकरो कुछ पता नहीं रहा तखनी जे छे हौ चिड़िया के चिड़िया चुनमुन के पता चली जाए छे कि नहीं सूरज के पहला किरण जे छे कि अब फूटे वाला छे और ओकरो सूचना दे छे तो बहुत सुंदर तरीका से कवि बच्चों प्रसाद सिंह जी ने हमरा सनी के अपनो कविता से सराबोर करल के एहि लेल हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद दे छे और कार्यक्रम में आगू बढ़ते हुए सुने छे एक देवी गीत।

अलौ तोहरो दुअरिया द दर्शनमा मैया। हर भक्त के है कामना होइ छे, है इच्छा होइ छे, उनका मनोम रहे छे कि हमरा माता के दर्शन हुआ। खास करी का जब कोई भी माय सनी के पूजा आबे छे, देखो जना कि नवरात्रि, साल में चार दाव नवरात्रि आबे छे। दू दाव तो सब कोई जाने छो, एक दाव आसिन महीना के जे हर जगह जे हर घर में मनेलो जाए छे, दोसरो चैत्र के नवरात्रि भी जानबे करे छो कि वो अब धीरे धीरे धीरे धीरे बहुत जगह ओकरो पूजा हुआ लगले वो और मेला सनी लगे लगले। लेकिन दुआरु गुप्त नवरात्र होइ छे और जे साधक होइ छे ओहिमे पूजा पाठ अपना विधि विधान से करे छे। और कभी भी जब हमर सनी पूजा पाठ करे छे, आराधना भक्ति में बैठे छे, तो यह इच्छा होइ छे कि माता के दर्शन हुआ, माता के दर्शन हुआ। जैमे कि आम जे जनमानस छे, जे साधारण व्यक्ति छे, उनका सनी का होइ छे कि मूर्ति के दर्शन हुआ, भाव छवि के दर्शन हुआ, प्रतिमा के दर्शन हुआ। लेकिन जे एक उच्च कोटि के साधक होइ छे, संत होइ छे, हुकना सनी के हो वास्तविक दर्शन जे आँख बंद करी के होइ छे, जे ध्यान में होइ छे, ओकरा लिए लगलो रहै छे। तो ये गीत के माध्यम से बहुत सुंदर जे छे कि प्रस्तुति इन्हें देलके, तो एकरा लिए कलाकार चंद्रशेखर मिश्र जी के बहुत बहुत धन्यवाद। आरो एक बारी फेनू से हम सब श्रोतागण के कही रहलो छे कि आय रक्तदाता दिवस छिके, आरो रक्तदान करला से जे छे कि कोनो नुकसान नहीं होइ छे, आरो दिल के एकरा में जे छे सेहत सुधार होइ छे, शरीर में आयरन के जे छे स्तर संतुलित रहै छे, जेकरा से खून गाढ़ा नहीं होइ छे, आरो हृदय के कार्य प्रणाली के बेहतर बनाबै छे, आरो हार्ट अटैक आरो हार्ट के स्ट्रोक के खतरा एमे कम होइ छे, नया खून बने छे, आरो बोन मैरो जे छे कि जे लाल रक्त कोशिका होइ छे जे आरबीसीज कहै छे, ओकरो निर्माण करै छे, आरो जेकरा सके शरीर में स्फूर्ति बनलो रहे छे, आरो मेटाबॉलिज्म सुधरै छे। तो है रक्तदाता दिवस छिके, चूंकि आप एहली बात करि रहलो छे, गर्मी के समय छे, सब अपनो स्वास्थ्य के बढ़िया से ध्यान रखो, खूब खीरा ककड़ी तरबूज आरो जे पानी वाला फल फ्रूट छे ओकरा खा। बस अब कार्यक्रम के सम्पन्न, सबका गैरू के इस दिए सबको गैरू का इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 2 बजने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे हमारे पटना केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। श्री नड्डा ने कहा कि देश में एम्स की संख्या एक से बढ़कर 23 हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमारी के कारण किसी परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की 1278 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री चौधरी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्य का शुभारंभ भी करेंगे। इधर मुख्यमंत्री ने खरीफ महाअभियान 2026 के तहत किसान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को GI टैग मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह उपलब्धि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला और शिल्प को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गया जी जिले के खिजरसराय में एक नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। यह केंद्र 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में स्थित केंद्रों पर आज मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के अनुसार इस परीक्षा के माध्यम से 4,200 से अधिक पदों पर बहाली होगी। इन पदों पर बहाली के लिए अगली परीक्षा 17 जून को होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। पर्याप्त ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होने से नाराज छात्रों ने स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ और पथराव किया। इससे रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। पटना के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने बताया कि पुलिस के हस्तक्षेप से हंगामे को काबू में कर ट्रेनों का परिचालन सामान्य किया गया। प्रदेश में मानसून की उत्तरी सीमा मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मॉनसून के प्रभाव से कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इधर विभाग ने अगले 2 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा, चनपटिया, नरकटियागंज, लौरिया और सिकटा सहित अन्य प्रखंडों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास आज हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार। इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: वर्ष के अंतर्गत में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। सेठी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

0: किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता नई ऊंचाई दी है। उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देश लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर राजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले दो तीन दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रोताओं के पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत।

श्रोताओं को अणिमा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, रिश्तों की मिठास शब्दों से नहीं एहसासों से बनती है और गीतों की दुनिया में हर फरमाइश एक खूबसूरत कहानी बन जाती है। तो श्रोताओं, आपकी फरमाइशें ही तो हैं जो इस महफिल को सजाए रखती हैं। तो आज की पहली फरमाइश भेजी है आप श्रोताओं ने। आप हैं कहलगांव पुरपटोला वार्ड नंबर 15 पांडे गली से सुजीत रॉय, दीपंकर रॉय और इनके परिवार के सभी सदस्य, डॉगछिया मुमताज़ मोहल्ला से जफर अंसारी, अतर अंसारी, शौकत अंसारी और परिवार के लोग, मधेपुरा अनिरुद्ध चौक से मीना ठाकुर, राज ठाकुर, मुरारी ठाकुर, ऋषि ठाकुर, प्रेमचंद ठाकुर, सुभाष मिश्र, भवानी, लवकुश, अरुण, मोहल्ला सदरुद्दीन चक से मोहम्मद शहजाद हाशिम, मोहम्मद हाशिमुद्दीन और परिवार के सभी लोग, शालबाग भागलपुर से अभिजीत, अभिषेक, सोनी, भाव्या, सोनू, पारस, आदित्य, प्रीति और मोनी, दिल्ली से हिना नाज, अदीबा और फातिमा नाज, सुल्तानगंज सीतारामपुर से प्रमोद पासवान, सुष्मिता सागर, दीपा, करीना, सूरज, भट्टा बाजार पूर्णिया से लीनू, निशु और उनके मम्मी पापा, कुनौनी बांका से आप हैं बबलू, डब्लू, नीपू, चंदा और ललन, और ग्राम कुड़रो से पप्पू, लीली, अपरा, वैष्णो और कौशिक। तो आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और आशा भोंसले को फिल्म उत्सव में। गीतकार वसंत देव और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सुरों का सफर जब दिल से होकर गुजरता है तो हर गीत किसी न किसी की याद बन जाता है। अपनी अपनी यादों को समेटे हमारे इन श्रोताओं ने हमें खत लिख भेजा है, जिसमें फरमाइश की है तीसरी कसम फिल्म के इस गीत को सुनवाने की। आवाज़ दी है जिसे लता मंगेशकर ने। आप हैं गुलफराज आलम, बेगम शमारा, बड़ी खंजरपुर भागलपुर से, गौरव मदन, अनिल मानसी और कविता अरोड़ा आप हैं उत्तम नगर नई दिल्ली से, भिखनपुर भट्टा रोड भागलपुर से, गणेश पासवान, सुधा पासवान, मुंदीचक भागलपुर से, दिलीप कुमार सोनी, ममलखा लैलक से, विनोद यादव, राधे विद्यार्थी आप हैं सहरसा से और डॉक्टर हेमंत कुमार आप हैं भागलपुर से। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है तीसरी कसम।

मोहब्बत की भाषा शब्दों से नहीं धड़कनों से लिखी जाती है और कुछ गीत उसी अनकही कहानी के पन्ने होते हैं। ऐसा ही एक प्यारा सा गीत सुनना चाहा है हमारे कुछ श्रोताओं ने। मोहल्ला तातरपुर भागलपुर से अरशान अहमद, जरीश वासी अहमद, शाजली शादाब अहमद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, केंद्रीय आवासीय परिसर आशियाना दीघा रोड पटना से लुत्फ अली लेन मोहल्ला काजवली चक से फौजैल नसीम रोज सोमेरा, शहरीन फैसल नसीम, शादान सिमरा सिदरा जोया अनम, नज़ीर मोमिन लेन इस्लामपुर चंपानगर से शब्बीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर, तारिक अनवर, शोभानपुर कटोरिया बांका से खजांची टोला शहादत अली, सालिक शहादत, सिदरा शहादत, शाहिना परवीन, भागलपुर भिखनपुर भट्टा रोड विशहरी स्थान से योगेंद्र प्रसाद राय, विभा राय, विप्लव वैभव, यामिनी यशा, रमेश शाह और परिवार के सभी सदस्य आप हैं। ग्राम झिकुलिया जिला बांका से ग्राम पोस्ट गोराडी से डॉक्टर हेमंत कुमार, जीवेश नंदन, नीलेश नंदन, अलीबख्श लेन मोहल्ला नाथनगर से हिबा फौजैल, दानियाल उमर, मायरा उमर, उमर फारूक, मोहम्मद फौजैल, जुबैर अंसारी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मीरा विरक, बलविंदर विरक, जैतेक विरक, हरदेव मीका, भानपुर भोपाल मध्य प्रदेश से राम गोपाल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा,

मैं विश्वकर्मा, योगिता विश्वकर्मा, और आप हैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से आदित्य और उनके परिवार के सभी लोग। और आप सबों ने जो गीत सुनना चाहा है वो है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में, जिसे हमने लिया है फिल्म सिलसिला से।

मोहब्बत का रंग बड़ा निराला होता है, कभी मुस्कान बनकर खिलता है तो कभी गीत बनकर गुनगुनाता है। ऐसे ही एक गीत को सुनवाने के लिए हमें खत भेजा है मुजाहिदपुर पूरब टोला से मोहम्मद राजू खान, मोहम्मद जहांगीर खान, शबनम, जानम, खैरू भाई, रूबी बेगम, अरबाज खान, अयाज खान और महमूदा खातून। बसवारा पुंसिया से पवन कुमार सिंह, सचिन, छोटू, राजा, सौरभ और गोलू। बक्सर बिहार से शफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी और डॉक्टर डब्लू अंसारी। सैनिक रेडियो श्रोता संघ बबुरा धनकुंड से मोहम्मद परवेज आलम, हुसनारा स्वीट, मोहम्मद रियाज, अनाया परवेज, आदि परवेज, नायब सूबेदार मोहम्मद परवेज आलम। सारिमपुर बक्सर से आप हैं राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी और डॉक्टर सोनम अदीबा। साथ ही आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। और आप सबों की फरमाइश पर लीजिए सुनिए फिल्म सूर्या का ये नगमा अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में।

जिंदगी की राहों में जब थकान महसूस हो तो कोई प्यारा सा गीत अक्सर सहारा बन जाता है। हर इंसान की जिंदगी में दोस्तों एक गीत ऐसा जरूर होता है जो उसे उसकी सबसे प्यारी यादों तक ले जाता है, और इन्हीं यादों को लिख भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदोरकर, सदानंद मंदोरकर, कुमार गौरव मंदोरकर, सल्लार पहलगाम कश्मीर से पैरजादा मिर्जाउद्दीन, और आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। और बहुत प्यारी सी इन्होंने एक बात लिख भेजी है कि हमारा नाम किसी भी गीत में आप शामिल करें तो यही है मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। और फिर आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, आपका भी यही मैसेज है कि किसी भी गीत में आप हमारा नाम शामिल करें। ये प्यार और ये अपना जो आपका जो अनुरोध है ना, हमेशा बनाए रखिएगा। आप हैं चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू और मोहम्मद यासीन अनजान, फिरोज शेख आप कहलगांव से हैं। आप सभी ने सुनना चाहा है, हम आपका भी नाम, जिन्होंने फरमाइशें नहीं भेजी हैं सिर्फ नाम कहा है, तो आपका नाम हम शामिल करते हैं जंजीर फिल्म के इस गीत में। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

महफिलें खत्म हो जाती हैं मगर गीत नहीं, सफर थम जाते हैं यादें नहीं। आज के इस सुरों के सफर में फरमाइशें भेजने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो दोस्तों, फरमाइशों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, सुरों का कारवां यूं ही सजता रहे, आपका प्यार मिलता रहे हर कदम पर और संगीत दिलों को यूं ही जोड़ता रहे। तो सुनते रहें आकाशवाणी भागलपुर, और अभी के लिए दीजिए अणिमा को विदा।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षा पाठ कन्नड़ भाषा में।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार हैं।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप
1: हाँ।
0: सब लिख लीजिए।
1: हाँ?
0: हाडु तिहवु हारु तिहवु,
1: हाडु तिहवु हारु तिहवु,
0: कडल करेय खगकुला,
1: कडल करेय खगकुला,
0: यनितो
1: मुगिला,
0: उद्द अगला,
1: उद्द अगला, जी की दनितु,
0: बांदड़ा,
1: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टैंजा है। हाँ?
1: हाँ।
0: आगे का स्टैंजा है, बान लोक नगुव नाका,
1: बान लोक नगुव नाका,
0: हारो हक्की पालीगे,
1: हारो हक्की पालीगे,
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी,
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे,
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा, दूर दूर हारी हारी,
1: दूर दूर हारी हारी,
0: व्योम कानुवा बगे,
1: व्योम कानुवा बगे,
0: हसीव मरेसी,
1: हसीव मरेसी,
0: वांछे मेरेसी,
1: वांछे मेरेसी,
0: दिगंत सेरो लघु बगे,
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा।
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते
1: हाँ।
0: हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो,
1: याव नाडो यंथ काडो,
0: हारो आसे हक्कीगे,
1: हारो आसे हक्कीगे,
0: मुक्त गगन नूरु काल,
1: मुक्त गगन नूरु काल,
0: ईजो शक्ति रेक्केगे,
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ। हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम होना है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी। हाँ?
1: हाँ।
0: को हम रिक्वेस्ट कर देंगे। हाँ?
1: हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे।

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तिश्र नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद हो गई है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा, जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा, जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा, जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
2: संदेशों के पहले आप सुन रहे थे सामुदायिक गान पाठ कन्नड़ भाषा में। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा, जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

समूस्वर में आप सुन रहे थे देशभक्त गीत। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अपराह्न के 3:25 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण दिल्ली केंद्र से। इसे आप सुन पाएंगे संत

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मनचाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव 5 गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूँ।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है, पांडवों ने अपनी धन संपदा राज सब कुछ द्यूत में हार दिया है। दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं। उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते
0: हैं। वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं द्यूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत किया भाग लिया था। शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है।
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों छुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी। कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम?
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं
1: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं, उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
0: महाराज।
1: हाँ गांधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक है, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज हैं। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
0: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए, पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
1: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गांधारी।
0: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
1: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
0: ईश्वर

0: युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं ये निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं, उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज, जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ,

रानी गांधारी, आपका पुत्र विकर्ण मारा गया।

चित्रसेन, उपचित्र, सुचारू, चित्राक्ष, नंद और उपेंद्र मारे गए।

राज, दुर्मुख, दुर्जय, दुष्कर्ण, शत्रुंजय, बिंद। गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रह गई।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव। दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय। कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
3: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना, सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
3: परंतु
1: कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
3: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपट कर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर
0: पड़े। बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई। सब वेदनाएं सो गई। दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
3: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर ढोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोंछो कांधारे, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो, उठो।
4: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
0: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
4: शांत हो राजमाता।
0: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसों स्त्रियों का आतनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
4: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहां। राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
0: नहीं कृष्ण, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
4: देवी गांधारी,
0: कृष्ण, मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है। फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे? किसका मुंह देख कर जिएंगे? बताओ।
4: मुझे क्षमा करो माता।
0: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
4: माता, जो अवश्यम भावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
0: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ। मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा उस संवेदना से परे

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक शाद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी। हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ।
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वाशु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो, एक ज्योतिहीन के गले बंधने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही। कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद, उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृ कुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता।

0: विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओ, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म पातिव्रत्य न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना।
1: हाँ, कही थी।
0: और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी। आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी।
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं, आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी, तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है कांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आप।
0: गुरु वंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं कांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति चली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए कांधारी, कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओ, प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय। इसीलिए वो 100 होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हाँ, अपराधी वे नहीं, हम हैं महाराज, हम हैं।
0: कांधारी, देखो, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु जिस हठ धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो, युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको, और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरा

0: अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
0: गंधारी, लगता है पास का अन्न जल रहा है, उसमें आग लग गई।
1: आपको कैसे क्या हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहाँ तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ।
1: महाराज,
0: हाँ गंधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकिए, रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए, इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित कर दें।
0: चलो, तावानल पड़ रहा है। आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है, तो उसका परित्याग क्यों किया जाए? चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ। इसी तरह
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय की प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार कर

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक

0: कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
1: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
2: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना रे, हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
1: वो तो बहुत पॉपुलर था।
2: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरिदर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
1: बिल्कुल,
2: बहुत सारे हरिदर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
1: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
2: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
1: अच्छा।
2: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी। हम गाते थे।
1: अच्छा।
2: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
1: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें।
2: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी। फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा। हाँ
1: ठीक है, मतलब
0: हाँ।
1: वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी। और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो? मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं नहीं नहीं उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं।
0: अच्छा।
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है, मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जी,
1: कि भाई ये काम आप क्यों करेंगी।
0: हाँ, लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी, आपकी
1: तो बड़ी
0: भी अपनी
1: हो
0: दुनिया
1: थी।
0: बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने तो, शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्रॉइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग किया, वो फिर गर्व महसूस करने लगे।
0: मितुल जी, कहते हैं कि माँ कवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थी, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था, और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा।
0: जी जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप?
1: हाँ,
0: जी ने
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं, और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं।
0: हाँ।
1: कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है,
0: खूबसूरत।
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो,
0: क्या बात है। हाँ, क्या बात,
1: तो मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ तुम
0: थे।
1: हाँ, तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा
1: क्या
0: प्यार,
1: प्यार पसंद है। तो ये भी कितना सुंदर सुंदर से गीत है,
0: बहुत स्वीट,
1: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
0: हर पल के गीत,
1: हर पल मौके। ये रोमांटिक गाने भी उन्होंने लिखे, और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: भी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की
1: जी
0: हमने।
1: जी बिल्कुल
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला,
1: मौका
0: और फिर
1: मिला।
0: उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी, और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो
1: वाह
0: प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के बिहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन। मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो,
1: है। हाँ
0: मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम हो।
1: तुम हो, क्या बात है।
0: तो
1: इतनी
0: ये
1: रुमानियत, इतनी
0: रुमानियत
1: गहरी गहरी
0: कितनी
1: तरीके से
0: गहरी।
1: लिखी
0: तो
1: है।
0: मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: उसके
1: कुमकुम,
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर। जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो बहुत ही
0: हाँ,
1: खूबसूरत तरीके से
0: तो
1: प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है।
1: जी, और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि, जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहां रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा,
1: जी
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला, 98 में।
1: जी
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के
1: जी
0: लिए, लेकिन तब भी वहाँ के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे,
1: किस बात पे।
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा।
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे।
1: जी
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा, तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हीलचेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हीलचेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए।
1: जी
0: प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं
1: नहीं
0: चलते
1: आते
0: हैं, वो
1: जी,
0: वहीं खड़े रहते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के, और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम
1: जी
0: था, और वो
1: जी
0: कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया, उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं।
1: जी
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए, यश चोपड़ा जी वहां खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया,
1: जी
0: वो भी ऑडियंस में थे।
1: जी और कवि प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है।
1: जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप।
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए,
1: चलिए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।
0: बहुत सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ, हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफेद वाले, जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जाम्बून।
0: हाँ हाँ
1: हाँ, काले नहीं, सफेद
0: सफेद। हाँ हाँ,
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा। उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा।
1: हाँ, तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के, उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे। ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं। रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप।
0: अच्छा,
1: इतनी मजबूत है।
0: क्या बात है,
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर,
0: मंदिर है।
1: है
0: जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी
0: उसको खड़ा किया।
1: हाँ
0: जी, मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
0: जी
1: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं। और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
0: जी,
1: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर करके स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी,
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया
0: जी,
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो, माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहां से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना,
0: लक्ष्मी के, नवरात्रा में मनाते हैं, दीपावली में,
1: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
0: ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी।
1: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं नहीं मुझे वो मजा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली
0: जी,
1: बोलती है आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती है नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए। मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने में।
0: जी, जी।
1: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है आपके क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी।
0: अच्छा।
1: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन
0: जी,
1: गई
0: जी।
1: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
0: मकसद मिल गया,
1: मकसद मिल गया
0: जी।
1: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब गुरु बनते हैं ना तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और आपका जीवन बदल जाता है।
0: बदल जाता है।

0: तो कभी था।
1: मिथुन जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही?
2: जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती हैं। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया कोई भी सफेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
1: अच्छा,
2: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना,
1: ड्राइंग
2: करते
1: तो
2: रहे।
1: आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
2: बहुत बहुमूल्य चीज है, मेरे पास आज खजाना है।
1: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
2: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा
1: है,
2: अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं। और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी, और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।
1: ऑयल पेंटिंग
2: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर। तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है। कहीं पर आप बंधते नहीं है। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहाँ बंध जाते हैं।
1: जी,
2: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
1: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर।
2: तो वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
1: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने
2: आपको
1: आर्ट...
2: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
1: अच्छा जी,
2: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
1: जी जी जी।
2: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरे कला है मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहां पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहां पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है, अपनी कला को एक कला प्रति रहने दिया है।
2: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहां पर। आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए,
1: बिल्कुल,
2: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
1: तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
2: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की बात कर रहे हैं।
1: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
2: जी।

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा है, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी।
1: लोगों के पास जैसे मैंने कहा बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए। तो उसके लिए पोर्ट्रेट है, चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए
0: जी।
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी, तो वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, तो अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे के बच्चों को, सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
0: मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, इस तरह का, सभी तरह के आप।
1: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको आप अपने पेंटिंग बनाइए।
0: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: मेरी माँ से।

0: मित्र जी, आपने बताया कि आप इतने प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: जो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं, जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर के आजू बाजू रहती हैं,
1: रहती हैं और रोज खाने के लिए आती हैं। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो ये सब भगवान है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितने कुत्ते पाल रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही
1: है? हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही तेज है, तगड़ी है, बड़ी है, और कुत्तों को डराती हैं।
0: तो 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब।
0: जी जी, जी। तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है।
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है।
0: अच्छा,
1: है ना। जैसे ब्राउनी है।
0: हाँ।
1: ब्लैकी है,
0: उनको पता ही उनके नाम है।
1: हाँ, सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिनटिन है तो दूसरा है चिनचिन। जैसे चुन चुन भी है। सो किटकैट भी है।
0: अच्छा, ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती है?
1: हाँ, हाँ।

0: कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है।
0: पूरा पूरा जंगल है, और बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
1: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान।
0: जरूर सुनवाइए।

0: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल जी, वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में?
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ
0: जी।
1: और मैं ये कहना चाहूंगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए
0: जी,
1: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए
0: जी। बहुत खूब, बहुत शानदार। मितुल जी, आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनकी जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को, उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं आभारी हूँ विविध भारती। मैंने जैसे पहले ही कहा कि

0: हमारी रग रग में बसा है
1: जी,
0: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से। और आज की ये बातचीत बस यहीं तक, अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: उजाले उनकी यादों की। उजाले।

0: में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी। प्रस्तुत करता है सौरभ कुमार।

नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता युववाणी के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप भी हमारी तरह कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज संडे है यानी फंडे। आज हम आपके लिए ढेर सारी चीज़ें लाए हैं। शुरुआत करेंगे हम चर्चा से, फिर संविधान से जुड़ी जानकारियाँ देंगे आपको, पुराने नगमे सुनाएंगे आपको, डेली ट्रिविया के अंतर्गत प्रश्न पूछेंगे आपसे, रोचक तथ्य बताएंगे आपको, एवं अंत में समसामयिकी और हाँ हाँ फिल्मी गीत भी सुनाएंगे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा से। आज चर्चा का विषय है विश्व रक्तदान दिवस। दोस्तों, ये दिवस हर साल 14 जून यानी आज मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2004 में विश्व स्वास्थ्य

0: संगठन द्वारा की गई थी। 14 जून नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन है, जिन्होंने खत समूहों की खोज की थी। इस दिन का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक करना और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को धन्यवाद देना है। इसकी शुरुआत 2004 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटीज द्वारा की गई थी। 14 जून की तारीख मध्यन कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चुनी गई, जिन्होंने ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। रक्तदान को महादान कहा जाता है, क्योंकि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है। एक यूनिट रक्त से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। दुर्घटना, प्रसव, थैलेसीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों में रक्त की अत्यधिक आवश्यकता होती है। फिर भी हमारे देश में रक्त की भारी कमी है। अज्ञानता, डर और भ्रांतियों के कारण लोग रक्तदान से कतराते हैं, जबकि स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से दाता को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि नए रक्त के निर्माण से शरीर स्वस्थ रहता है। इस दिवस पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है और लोगों से अपील की जाती है कि वे स्वेच्छा से रक्तदान करें। हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान करेंगे, क्योंकि आपका दिया हुआ रक्त किसी का जीवन बचा सकता है। रक्तदान करें, जीवन बचाएं। दोस्तों, आज विश्व रक्तदान दिवस पर चर्चा में केवल इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अंतराल के पश्चात कार्यक्रम में पुनः स्वागत है दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपसे डेली ट्रिविया के अंतर्गत एक प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितने ऑल इंडिया रेडियो केंद्र थे? आप तब तक इसका उत्तर सोचिए और लीजिए एक मधुर गीत का आनंद। गीत है दिल क्या करे, फिल्म जूली, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत दिल क्या करे फिल्म जूली से। गायक कलाकार थे किशोर कुमार। दोस्तों, मैंने आपसे डेली ट्रिविया में एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर है 6। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल 6 ऑल इंडिया रेडियो केंद्र थे। आपको आकाशवाणी से संबंधित एक रोचक तथ्य बताती हूँ। आप क्या जानते हैं कि दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत 15 अगस्त 1965 से हुई थी। चलिए इसी बहाने अब एक और मधुर गीत का आनंद ले लेते हैं। गीत है मौसम प्यार का, फिल्म सितमगर से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार एवं आशा भोंसले।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत मौसम प्यार का फिल्म सितंबर से। गायक कलाकार थे किशोर कुमार एवं आशा भोंसले। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्तंभ, आइए जाने संविधान को इसकी ओर। दोस्तों भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 14A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 323A और 323B के अंतर्गत अधिकरणों का प्रावधान किया। इसका उद्देश्य न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ कम करना और त्वरित सस्ता न्याय उपलब्ध करना है। अनुच्छेद 323A में संसद को केंद्र और राज्यों के लोक सेवकों की भर्ती व सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के निपटारे हेतु प्रशासनिक अधिकरण CAT की स्थापना हुई। ये अधिकरण उच्च न्यायालयों का विकल्प है। अनुच्छेद 323B में अन्य विषयों के अधिकरण संसद और राज्य विधानमंडलों को कर, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार, विदेशी मुद्रा आदि विषयों के लिए अधिकरण बनाने की शक्ति देता है। ये विषय केंद्र व राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अधिकरण तकनीकी विशेषज्ञों से युक्त होते हैं। प्रक्रिया सरल है और निर्णय जल्दी होते हैं। हालांकि एल चंद्रा कुमार केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके निर्णयों की न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालय कर सकते हैं। दोस्तों संविधान से जुड़ी जानकारियों में केवल इतना ही। लेते हैं एक और मधुर गीत का आनंद। गीत है ये जो मोहब्बत है, फिल्म कटी पतंग से गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत ये जो मोहब्बत है, फिल्म कटिंग पतंग से। गायक कलाकार थे किशोर कुमार। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले स्तंभ समसामायिकी की ओर। हाल ही में ऑपरेशन मिलाप गुजरात में शुरू किया गया। विश्व बैंक ने FY27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6% अनुमानित की है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने पहली बार टी बैग्स उत्पाद में एपीक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। ICC महिला T20 विश्व कप 2026 का आगाज इंग्लैंड में हुआ था। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को 127वां स्थान मिला है। दोस्तों, समसामयिक की खबरों में केवल इतना ही। सुनते हैं एक और मधुर गीत। गीत है आया तेरे दर पर दीवाना, फिल्म वीर जारा से। गायक कलाकार है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक बहुत ही मशहूर कवाली। कवाली थी आया तेरे दर पर दीवाना। फिल्म वीर ज़ारा से लिया गया था। गायक कलाकार थे अहमद हुसैन एवं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा? आप हमें अपने सुझाव से अवश्य अवगत करा सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर phair@gmail.com पर। आप हमें पत्र या ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा पता है आकाशवाणी आदमपुर भागलपुर, द्वारा केंद्र निदेशक युववाणी कार्यक्रम, पिन कोड संख्या है 812001। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अब तो घड़ी भी इशारा कर रही है, हम फिर मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे, फिल्मी गीत भी सुनेंगे। तब तक इंतज़ार रहेगा आपका। इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त अर्पिता को। नमस्कार, शुभ संध्या।

युवावाणी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। 5:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। आरंभ में सुनिए हसन कमाल का लिखा गीत, रवि के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है निकाह, आवाज़ है सलमा आगा की।

जानिसार अख्तर का लिखा कलाम सुनिए। खय्याम के संगीत निर्देशन में इसे हमने लिया है रज़िया सुल्तान फिल्म से। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तवायफ फिल्म में सुनिए महेंद्र कपूर को। कलाम है हसन कमाल का और धुन है रवि की।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

मीरा का मोहन, इस फिल्म में सुनिए मोहम्मद अजीज को। शब्द हैं इंदिवर के और तर्ज है अरुण पौडवाल की।

फिल्म संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर नवल किशोर नबीना से आप सुनेंगे लोकगीत। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुर लहरी में विजय कुमार दास को आप सुन पाएंगे। 8 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे। साथ ही 9:30 पर भी आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कलाकार होंगे J.S. श्रीराम, इनसे आप सुनेंगे कर्नाटिक वोकल। ये तो थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब कुछ जानकारियां कल के कार्यक्रमों की हम आपको देंगे।

कल हमारी प्रातःकालीन शुभारंभ होगी 5:48 पर, 5:55 पर खेत खलियान कार्यक्रम में कृषि आधारित वार्ता आप सुन पाएंगे। 6:05 पर आप सुनते हैं चिंतन मनन। 6:10 पर भक्ति संगीत सुनेंगे वंदना कार्यक्रम में। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में डॉक्टर पप्पू कुमार की वार्ता आप सुनेंगे सफ़ेद दाग का उपचार। 6:40 पर रामचरितमानस गान का प्रसारण किया जाएगा। 7:00 से 7:55 तक मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन

प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में सुगम संगीत सुनेंगे विजय कुमार दास से। अंग्रेजी वार्ता आप सुनेंगे क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। वार्ताकार होंगी रंजना वर्मा। इसके अलावा फिल्म संगीत, रेल सूचना, मौसम सूचना, अखबारों की सुर्खियां और कुछ बातें होंगी इतिहास की। प्रस्तुत करता होंगी अतुल कुमार प्रियदर्शन।

कल के कार्यक्रमों में फिल्मी गीत आप सुनेंगे सुबह 9:06 पर, 10 बजे, 11 बजे एवं 11:30 पर, साथ ही दोपहर 2:30 पर। 9:30 पर सुगम संगीत सुनेंगे डेजी प्रिय दर्शनी से, 10:30 पर लोकगीत सुनेंगे चंद्रशेखर मिश्र से, 12 बजे नारी लोक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के, 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे उमंग, 1 बजे लोकरंग कार्यक्रम में जय नारायण ताती को आप सुन पाएंगे, 1:30 पर घर आंगन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रिय दर्शन, 3 बजे बांग्ला गान सुनेंगे, 3:20 पर देशभक्ति गीत सुनेंगे, 3:25 से शाम 5 बजे तक विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल शाम 5 बजे युवा सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार, 5:30 पर फिल्म संगीत सुनेंगे, 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रिय दर्शन, 7:10 पर लोकगीत सुनेंगे इंद्राणी सिन्हा से, 7:52 पर सुगम संगीत सुनेंगे सुरलहरी कार्यक्रम में राकेश कुमार से, 8 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे, 8:15 पर साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी का प्रसारण किया जाएगा, प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद, 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित निखिल बनर्जी से राग चंद्र कौश आप सुन पाएंगे, 10:30 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे पसंद आपकी। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, शाम की 6 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी, प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को सोना का नमस्कार।
1: अरुक सबका गरु के भी नमस्कार, अपने के भी नमस्कार सोना बहन।
0: नमस्कार नमस्कार गरु भाई, और बताइए क्या हाल समाचार है?
1: और सब कुछ बढ़िया चली रहा छ, अपना सुनाबो की हाल चाल छे?
0: हाल चाल तो सब ठीक ठाक है गरु भाई। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी बात है स्वस्थ रहना है। क्योंकि कहते हैं कि जब हमारा कुछ संपत्ति अगर हानि होती है तो कुछ सोचते हैं कि कुछ भी हानि नहीं हुई है, और जब हमारा स्वास्थ्य हानि होता है तब हम समझते हैं कि हमारे शरीर के साथ साथ हमारा सब कुछ हानि होता है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा मन किसी काम में लगता भी नहीं है, और हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है।
1: हाँ, सुना बहन कहे जे ना कि स्वास्थ्य जे छके उत्तम धन छके, यानी सबसे बढ़िया धन छके।
0: बिल्कुल।
1: लेली कि सब सब कुछ हुआ पड़ा दोबारा लौटे छे बढ़िया से कुन, लेकिन जो शरीर के परेशानी हो जाए छे, ज्यादा परेशानी हो जाए छे, तो हो बीतलो दिन जे दिन के हम आनंद लिया पड़े रही है, हो तो

0: प्रयास करना चाहिए कि अपना दिनचर्या एना रखिए जे कि हम सनी स्वस्थ रहिए।
1: और हम आशा भी करते हैं कि जितने भी श्रोता भाई बहनों हैं और जितने भी हमारे यहाँ भी जितने भी भाई बंधु हैं सब स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहे कैसे गुरु भाई, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत मोटी सी बात है। सबसे पहले हम अपना ध्यान खान पान पर दें कि हम खाते क्या हैं, हम जिस तरह का खाएंगे वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा। और खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए और हमें कभी भी कहीं ऊपरी चीज़ की आवश्यकता हो जाए। ऊपरी चीज़ मतलब समझ रहे हैं ना, जो हमारा खान पान बनाता है, हमारा खाना का काम क्या होता है, वो हमारे पेट में जाकर हमारे शरीर में भोजन जो होता है वो रक्त में परिवर्तित हो जाता है और पूरे शरीर में रक्त को संचारित करता है। और यही रक्त जो है हमारे नसों में दौड़ता है और हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं भी बहुत लोगों को सुनते हैं कि रास्ते में बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए और वो अस्पताल में भर्ती हो गए। और तुरंत उन्हें किस चीज की आवश्यकता होती है,
0: खून के।
1: और दो ही चीज बहुत जरूरी है, एक ऑक्सीजन और एक खून। तो ऑक्सीजन तो वो अस्पताल से उपलब्ध हो जाता है लेकिन खून अस्पताल से बहुत ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि दो तीन तरह का खून जो होता है बहुत नदारद मिलता है। ऐसे में बहुत लोगों से आशाएं की जाती है कि वह अपने आप को उस ढंग से तैयार रखे कि अगर कहीं भी किसी को खून की आवश्यकता है तो लोग अपने मानसिकता में उस ढंग से बदलाव रखे कि हम दूसरे के लिए एक दान कर पाए, यानी रक्तदान। तो आज संपूर्ण विश्व में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है।
0: अच्छा, यही लेली बात करी रहलो रो रक्त के ना सुना हालांकि ये तो बहुत बढ़िया बात छे। रक्तदान कहे छे कि सर्वोत्तम दान छे,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उत्तम दान छे, रक्तदान यानी कि जीवन दान। कहे छे कि एक यूनिट जे खून दे छे सोना बहन, एक यूनिट जे खून होय छे आपात स्थिति में वह कम से कम तीन आदमी के
1: जीवन
0: को
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हां हां ठीक है ना। रक्त दिला से भी बहुत फायदा छे, रेडियो में लगातार ये सब चीजों के तो जानकारी देते रहे छे, सुनते रहे छो अपनों से कि रक्त दिला से बहुत लोग डरे छे कि रक्त खून देबे तो हम कमजोर भए जबे बीमार पड़ जबे, जबकि एहनो बिल्कुल नहीं छे सोना बहन। रक्त दिला से जे छे कि जना कि जे दिल के मरीज छे, हार्ट के मरीज छे, तो ओकरा जे छे ना कि रक्त दिला से फायदा होय छे बल्कि कोनो घाटा नहीं होय छे। नियमित रक्तदान से खून में आयरन के स्तर जे छे सोना बहन वो नियंत्रित रहे छे।
1: अच्छा।
0: और एकरा से रक्त के चिपचिपाहट कम होय छे और जकरा से कि हार्ट अटैक यानी जकरा कहे छे दिल के दौरा और ओकरो स्ट्रोक जोखिम काफी हद तक काम हो जाए सोना भाई।
1: बहुत बड़ी बात है गैरू भाई। और जानते हैं इस दिन को मनाने का उद्देश्य भी यही है कि जो सुरक्षित रक्तदाता है, रक्त उत्पादों की जो आवश्यकता होती है उस विषय में साधारण जनमानस में जागरूकता भी फैलाएं और स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षक उपहारों के लिए धन्यवाद दें।
0: एक रातन टा बढ़िया समझावो नहीं कि बोली दिलो स्वैच्छिक आरु बिना वेतन की।
1: अच्छा देखिए, स्वैच्छिक मतलब हर व्यक्ति के अंदर में खुद से होना चाहिए कि मुझे दूसरे के जीवन को बचाना है। अगर आपके आसपास कहीं किसी को दुर्घटना होता है तो आप उसे तुरंत उठा करके अस्पताल तक ले जाइए। आजकल तो कोई ये भी परेशानी भी पुलिस या परेशानी भी नहीं होती है। और उस समय अगर उस व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है तो अपने मन से आप तुरंत आगे बढ़िए कि ये रक्त ग्रुप मेरा है, क्या उस व्यक्ति का ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप से रक्त के ग्रुप से मिल रहा है, तो अगर मिलता है तो उसको तुरंत ही रक्तदान के लिए आप तैयार होइए। और सबसे बड़ी बात है जो ओ नेगेटिव होता है ना वो दूसरे से ले नहीं सकते हैं गरु भाई, लेकिन ओ पॉजिटिव जो है वो सर्वदाता होते हैं। और ए ए बी प्लस ए प्लस ए बी प्लस ये जो भी है ये ओ प्लस से ले सकते हैं लेकिन ओ नेगेटिव ग्रुप बहुत ही बिरले मिलता है। ऐसे लोगों को अगर रक्त की आवश्यकता होती है, मान लीजिए कोई गर्भवती स्त्री ही है और वो प्रसूति के वहां गई है चिकित्सक के यहाँ और उसको रक्त का आवश्यकता पड़ जाए, तो ऐसे में ये जो ब्लड ग्रुप होता है ना वो नेगेटिव बहुत ही बिरले मिलता है, तो इसके लिए उसे पहले से ही व्यवस्था करके जानी होती है क्योंकि उस ग्रुप का जो ब्लड होता है उस स्तर का वो बहुत कम मिल पाता है। तो इन सारी चीजों के लिए मानसिक रूप से एक नैतिकता का जो उत्थान हो, अवैतनिक इसलिए बोल रहे थे गुरु भाई कि इसका ना एक महादान है, एक पुण्य की काम है, इसके लिए भगवान ने कोई वेतन नहीं निर्धारण किया है।
0: अच्छा।
1: लेकिन बात यह है कि आपका वेतन

0: मिलता है, कर भला तो हो भला। अगर हम यहाँ किसी का भला इस धरती पर किसी एक जन का करते हैं तो वो पुण्य के खाते में मेरा नाम लिखा रहता है, तो कहीं ना कहीं भगवान हम उसको उस वापस भी कर देते हैं। शायद मेरे ही जीवन में कभी मुझे ही कोई आवश्यकता पड़े और मुझे भी कोई उसी तरह रक्तदान करे, इसलिए कब कुछ अच्छा कर्म करके रखेंगे तभी तो अच्छा भी मिलेगा ना।
1: अरे कहियो कहियो जे छे ना ये हम आब बुझी गेलियो कि अवैतनिक की होय छे, लेकिन कहियो कहियो सुनलाम आबे छे ना कि कुछ लोग खून के यानी कि ब्लड के खरीद फरोख्त भी करे छे।
0: हाँ।
1: जे कि संवैधानिक रूप से सही नहीं छे, एकदम गैर कानूनी छे। तो ऐ लेली जब भी रक्तदान करना चाहिए स्वैच्छिक तो होना ही चाहिए, यानी केकरे प्रेशर में नहीं हुआ।
0: बिल्कुल।
1: आब की होय छे कि केकरे से बिल्कुल भी पैसा के बदला में रक्तदान नहीं छे के करे के,
0: बिल्कुल
1: ठीक ना। यह भले अवैतनिक, बहुत बढ़िया सोना बहन, बहुत
0: बढ़िया। इस साल का जो थीम है गरु भाई वो है एक बूंद मानवता की, रक्तदान जीवन दान। इसमें मानवता शब्द जोड़कर साधारण जन को मानवता के गुणों से परिचित करवाकर रक्तदान कर जीवन दान करने को प्रेरित किया गया है। मतलब आप मानव हैं, सिर्फ ये मत सोचिए कि हम मानव हैं। जब तक आपके अंदर मानवता का गुण नहीं है तो आप कहीं ना कहीं मानव नहीं है। ये अपने आकलन से पता चलेगा कि हम दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, क्या हमने अपने पूरे जीवन में कभी दूसरे के लिए कुछ किया। सभी पूजा अर्चना अरदास से भी श्रेयस्कर है एक जीवन दान करना। मतलब एक व्यक्ति अगर अपने पूरे जीवन में पूजा नहीं किया, अर्चना नहीं किया, कहीं मंदिर नहीं गया, मस्जिद नहीं भी गया, लेकिन उसने अगर एक जीवन को अपने शरीर के रक्त से पुनर्जीवित कर दिया तो उस परम मानव धर्म से बड़ा कुछ है ही नहीं। वही श्रेयस्कर है, यही सत्य है और यही हमेशा सत्य भी रहेगा। रक्तदान, नेत्रदान, ये सब महादान समझा गया है गैरू भाई, है ना। और आप रक्तदान कब कर सकते हैं पता है? जब आप खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप रक्तदाता अच्छे नहीं बन सकते।
1: स्वस्थ के आप, भाई?
0: हाँ, आप एक सफल रक्तदाता तभी बन सकते हैं जब आप खुद एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ शरीर, मतलब कि शुद्ध रक्त आपके शरीर में प्रभावित हो रहा हो, वह भी आपके शरीर में आपके शरीर की आपूर्ति से अधिक रक्त आपके पास हो। मान लीजिए आप खुद रक्त अल्पता से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो आप रक्तदान करेंगे तो आपका तो खुद ही जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा, आपको चक्कर आने लगेगा, तो ऐसे में आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत बुरी स्थिति होती है जब घर के किसी को रक्त की आवश्यकता होती है, तो ऐसे लोगों का भी रक्त ले लिया जाता है कि जिनके शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो कम होती है। तो ऐसा नहीं कि आपका शरीर खुद आपके शरीर का जो रक्त आपूर्ति नहीं कर पा रहा है तो आप रक्तदान करने चले गए। जब हमारे शरीर में हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है वो ही रक्त नहीं है तो हम दूसरे को रक्त कैसे दे सकते हैं।
1: मतलब कि पूर्णतः जो स्वस्थ आदमी छे, वयस्क आदमी छे, कम से कम जेकरो 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच उम्र छे आरो वजन लगभग 45 से 50 के बीच में छे, तभी वो व्यक्ति रक्तदान।
0: और भी छोटी छोटी बातें हैं, मान लीजिए उनको कोई बीमारी है तो वैसी वाली बीमारी जो आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर, जैसे कि किसी को शुगर पेशेंट है या कोई दूसरा भयानक घातक बीमारी है वो नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है जैसे कि महिलाएं, छोटी बच्चियां, जिनको कि रेगुलर आप निरंतर जो मासिक धर्म का आना होता है उन बच्चियों से रक्तदान नहीं करा सकते हैं। वैसी महिलाएं जो मासिक धर्म में रहती हैं और उनके शरीर में खुद का ही रक्त अल्पता का दिक्कत है तो वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप नित्य जो हमारे घर आंगन में बीट होता है, सब्जी वाला केला होता है, पालक का साग होता है, अनार होता है, तो ऐसी पोषक तत्व जो जिनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है वो नित्य ग्रहण करना चाहिए, तो आपके शरीर का जो रक्त का जो स्तर है वो बराबर बना रहेगा और अधिक भी रहेगा, तभी आप दूसरे को आसानी से रक्त दे भी सकते हैं, है ना। तो खुद को स्वस्थ रखिए, नित्य साफ स्वच्छ संतुलित पौष्टिक आहार करें, ताजी हवा में सैर करें, योग व्यायाम करें, हरे साग सब्जी मौसमी फलों का नित्य भोजन करें, तभी आप स्वस्थ भी रह सकते हैं और दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, मतलब रक्त दान कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया जानकारी दिलो सोना बहन, एकदम सुनी का और जानकारी प्राप्त करी के मन गदगद भए गेले आरो एकदम मन तो अभी करे लागल हो, कखनी कोई जरूरत पर मिली जाए तो तुरंत रक्तदान करी दिए।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सोच, बहुत अच्छी भावना है आपकी गैरू भाई। और आए दिन भी कैंप लग जाते हैं कहीं भी, तो वहां से जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा करवा सकते हैं और करवा के आप रक्तदान शिविर में शामिल होकर सबसे बड़ा पुण्य का काम, धर्म का काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो अपनो नजदीकी जे सरकारी अस्पताल निश्चित रूप से वहां भी जाकर कोई भी व्यक्ति रक्तदान करा पड़े छे। रक्तदान करना पूर्णतः सुरक्षित होय छे आरो एकरा से कोई विशेष कमजोरी नहीं आवे छे आरो शरीर के जे छे स्वास्थ्य के लाभ ही होय छे आरो दान करलो गेलो रक्त कुछ ही हफ्ता में शरीर ने पुनर्निर्माण करी ले छे।
0: बिल्कुल सही।
1: चलो सोना बहन आवाज,
0: ये तो ही कुछ सेहत की बातें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं
1: और सुने छे कुछ जरूरी संदेश।
2: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
4: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी श्रोता भाई बहनों का स्वागत करते हैं आप ही के इस प्रिय कार्यक्रम गांव जगत खेती गृहस्थी में और हम सभी की मंगल कामना करते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा देवी गीत।

0: बाबा बहुत ही प्यारा सा भक्ति भावपूर्ण गीत हम लोगों ने सुना
1: जी।
0: दुर्गा मैया के देखो श्रृंगार सखिया। और हम हमेशा भगवान की आराधना इसलिए करते हैं गैरू भाई कि हमारे जो घर में अपने परिवार है सब सुखी संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, है ना
1: जी, यस।
0: तो हमेशा बोलिए गैरू भाई कुछ बोलना चाह रहे थे।
1: ले लीजिए सबसे पहना धन्यवाद दे दीजिए कलाकार बलराम यादव जी का।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो स्वस्थ रहें इसके लिए हम कामना करते हैं हर समय माता पिता की, जो हाथ हमेशा पूजा के पास उठती हैं तो एक ही प्रार्थना रहता है कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, है ना गैरू भाई।
1: पूजा पाठ तो होबे करे अपना परंपरा में भी है, परंतु सोना बहन अपना सनी का सबका बल्कि एक विशेष ध्यान रखे के चाहिए। और जे कुछ भी अपना सुरक्षा के उपाय छे जेकरा से कि रोग से बचलो जाबा सके, पहले से जे कुछ संभव छे सरकारी व्यवस्था छे या स्वास्थ्य विभाग में ओकरो लिए व्यवस्था करलो गेलो छे तो मेडिकल साइंस जेकरा उपयोग में लाने छे हो जरूर करना चाहिए। हम बात करी रहलो छे बच्चा में टीकाकरण के।
0: ऐसे तो गैरू भाई जब भी आपके घर में कोई घर आंगन में भी अपने गांव घर में कोई महिला गर्भवती होती है तो सबसे पहले उनके घर आशा दीदी पहुंचती है और उनको टीकाकरण स्थल तक ले जाती है। तो बच्चे जब जन्म लेते हैं तब से ही उनका टीकाकरण नहीं होता है गैरू भाई, जब बच्चा गर्भ में आने लगता है ना तभी से उसका टीकाकरण शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि वो गर्भ में भी सुरक्षित 9 माह काटे, 9 माह का समय बहुत लंबा होता है और उसमें टीकाकरण तब भी होता है ताकि बच्चा एक सुरक्षित गर्भ के अंदर पले। लेकिन जब वो जब जन्म ले लेता है गैरू भाई तो उसका सुरक्षा जो है ना और कवच को बढ़ाना होता है, क्योंकि वो तुरंत एक बाहरी एक अंदरूनी आवरण से निकलकर एक बाहरी वातावरण में आ जाता है तो उसमें टीकाकरण की विभिन्न तरह की बीमारियों का पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो उन सारी बीमारियों से बचाने के लिए 1 से 5 साल तक बच्चों में और 1 से 12 साल तक लड़कियों को टीकाकरण की आवश्यकता होती है। और समय समय पर जो आंगनबाड़ी केंद्र है, अस्पताल है, सब जगह जच्चा बच्चा का कार्ड बनवा करके मुफ्त टीकाकरण का व्यवस्था सरकार द्वारा किया गया है। तो आइए इसी विषय पर विस्तार से हम लोग डॉक्टर मृगेंद्र कुमार की पूर्व प्रसारित वार्ता बच्चों में टीकाकरण विषय में विस्तार से जानते हैं।
1: जी,
2: ये कार्य पूरे विश्व में किया जाता है जिनकी जिम्मेवारी केंद्रीय सरकार, बिहार सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ के द्वारा चालित होता है। इन टीकों के अभाव में 8 तरह की बीमारियों की संभावना होती है जो बच्चों माँ दोनों के लिए जान पर खतरा रहता है। इन खतरों से बचाव के लिए ही ये हिंदुस्तान के हर क्षेत्र और राज्यों में व्यवस्था के अंदर ही खाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवहार को धरती पर उतारने के लिए माइक्रो प्रोग्राम बनाया जाता है। इनके के लिए उपकेंद्र, सभी प्रतिरक्षण स्थल, सभी उपकेंद्र, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल हॉस्पिटल, अनुमंडलीय अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र आदि पर देने की सुनिश्चित जगह रखी गई है ताकि टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य कोई भी बच्चे टीकाकरण से यानी 8 प्रकार के बीमारियों से बच सके जो जानलेवा बीमारी होता है। ये 8 बीमारियां टीबी, पोलियो, पोलियोमेलाइटिस, पीलिया, गोलघोट, कुकुर खांसी, टेटनस, खसरा, जापानीज इंसेफेलाइटिस जिसे मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है जो बच्चों के लिए जानलेवा होता है। और माँ के गर्भावस्था के बाद उन्हें टेटनस की सुई दी जाती जिसे बच्चे और बच्चे की माँ को भी बचाया जा सकता है। अतः यही कारण है कि हर अस्पताल में टेटनस को कम कर दिया गया है। टीकाकरण बचपन के होने वाली बीमारियां यानी 8 जानलेवा बीमारियों का एक सुरक्षित और असरदार तरीका है। अतः इस की कार्यक्रम के को उच्च प्राथमिकता देते हुए जीवन निरंतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऐसे पोलियो का उन्मूलन तथा टेटनस का निर्मूलन करने में कामयाबी मिली है। भारत को 3 सालों तक पोलियो मुक्त का विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सर्टिफिकेशन हो चुका है। अतः अभी और सजग से रहना है ताकि अगले 3 सालों तक पोलियो वायरस मानव शरीर में नहीं रहे, जिससे भारत को पूर्ण पोलियो मुक्त का सर्टिफिकेट मिल सके। इसमें जनता से अनुरोध करूंगा कि किसी भी क्षेत्र में शरीर के किसी भी अंग में लुंज पुंज या लकवा जैसी शिकायत मिलने पर तुरंत इंफॉर्मेशन के माध्यम से रिपोर्ट करें, ताकि विश्व स्वास्थ्य संगठन अपना कार्य तुरंत कर सकें, ताकि पता चले कि भारत में बच्चों में पोलियो वायरस तो नहीं है, इसे अवश्य समझें। जनता की जागरूकता की आवश्यकता है, जिससे बच्चे की मृत्यु दर तथा गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर पर काम कम से कम हो। यदि स्वास्थ्य शिक्षण का उद्देश्य मिशन का उद्देश्य यदि 100% बच्चे इम्यूनाइज हो जाते हैं, तो हमारा बच्चा 100% मृत्यु दर से बच जाएगा। टीका के द्वारा पूर्ण टीका नहीं के कारण अनेक हैं। दूर दराज उपकेंद्र स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में असफलता, कुछ बच्चे या एक से अधिक टीके लेकर अगले टीकाकरण के लिए नहीं आते हैं, जिससे टीकाकरण अधूरा रह जाता है। कुछ बच्चे माँ बाप टीकाकरण के बारे में नहीं जानते हैं या सामाजिक आर्थिक बाधाओं के चलते इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। कुछ बच्चे स्वास्थ्य केंद्र या आउटरीच स्थल से दूर रहते हैं, जिससे पूर्ण टीकाकरण लेने नहीं आ सकते हैं। इसमें भौगोलिक पहुंच का अभाव भी होता है। कुछ बच्चे माता पिता टीकाकरण सेवाओं के प्रति यकीन नहीं रखते, चाहे स्वास्थ्य केंद्र नजदीक ही क्यों न हो। कुछ लाभार्थी अन्य विकारों के कारण स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, किंतु कार्यकर्ता उन्हें टीकाकरण के बारे में नहीं पूछते, जिससे एक महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल जाता है। अतः आपसे उम्मीद है कि सभी योग्य शिशुओं और गर्भस्थ महिलाओं का राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार टीकाकरण की जाए। आपकी जिम्मेवारी निम्न प्रकार है। आपके यहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा अपने क्षेत्र के सभी लाभार्थी एक एक बच्चे की गिनती करें। दूसरा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा नवजात शिशुओं और टीकाकरण के अन्य स्रोतों के भी पासात परामर्श कर लाभार्थियों की सूची तैयार करें। सभी गांव, शहर, मोहल्ला एवं बस्तियों सहित उपकेंद्र क्षेत्र का नक्शा तैयार करें। आंगनवाड़ी तथा आशा कार्यकर्ता उपकेंद्र संबंधी सूक्ष्म योजना तैयार करें। आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पंचायत सदस्यों तथा अध्यापकों को टीकाकरण को स्वीकार करने टीकाकरण का समय एक स्थान के बारे में बताने तथा टीकाकरण सत्र में आने के लिए परिवारों को प्रेरित करने की दिशा शामिल करें। टीकाकरण के लिए बच्चों को सही तरीके से बिठाएं। लाभार्थियों की देखभाल करने वाले को मामूली विपरीत घटना से बचने के लाभार्थियों के देखरेख के ख्याल रखें। टीकाकरण के बाद लाभार्थियों को आधे घंटे तक इंतजार करना आवश्यक है। लाभार्थियों को ये जानकारी होनी चाहिए कि अगला टीकाकरण के लिए कब आना है और साथ में कार्ड लाने के लिए भी तैयार रहना होगा। तपेदिक, डिप्थीरिया, काली खांसी, नवजात टेटनस, खसरा जेई, अचानक लुंज पुंज लकवा ग्रस्त संबंधी सभी संदेहास्पद मामलों के बारे में चिकित्सा पदाधिकारी के आश्वस्त करें। टीकाकरण के संबंध में माता पिता के 4 मूलभूत संदेशों की जानकारी दें। कौन सा टीका दिया गया और टीका से किस बीमारी से बचाव होता है। अगले टीके के लिए वे बच्चे को कब और कहां ले जाकर लेकर आएं? तीसरा, टीकाकरण के बाद कौन से सामान्य विपरीत प्रभाव साइड इफेक्ट हो सकते हैं तथा यदि ऐसा होता है तो उन्हें सूचित करना चाहिए। अपना टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखें और जब भी बच्चों को टीकाकरण के लिए लाएं यह कार्ड साथ में लेकर आएं। नियमित टीकाकरण की सारणी, पहला जो है जैसे जन्म के तुरंत बाद BCG, OPV जीरो डोज, हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज दिया जाता है। 1.5 महीने पर Polio 1, OPV 1 जिसे कहेंगे, DPT 1 और Hepatitis 1 जाता है। 2.5 महीने के बाद OPV 2, DPT 2, हेपेटाइटिस बी दिया जाता है। 3.5 महीने पर Polio 3, OPV 3, DPT 3, Hepatitis 3 थर्ड डोज दिया जाता है। 9 महीने के बाद मिजिल्स का एक डोज, विटामिन ए पहली खुराक, बाकी 6 खुराक

0: है।
1: 3.5 महीने पर पोलियो 3, पोलियो OPV 3, DPT 3, हिपेटाइटिस 3 थर्ड डोज दिया जाता है। 9 महीने के बाद मिजिल्स का एक डोज, विटामिन ए पहली खुराक, बाकी 6 खुर

0: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: बहुत ही फिर से हम स्वागत करते हैं हम अपने श्रोता भाई बहनों का इस अंतराल के बाद। और अभी हम लोग बात कर रहे थे
3: टीकाकरण के बात कर रही है सोना बहन। और अभी
2: अच्छी बहुत ही अच्छी जानकारी की बातों को हम लोगों ने सुना। और इस टीकाकरण के वजह से जो हमारे अभी तो टीकाकरण का कार्यक्रम बहुत जोर शोरों से चलता है और लोगों में भी बहुत जागरूकता फैल गई है गैरू भाई।
3: जी जी जी, पहले तो लोग देखो कि बहुत डरे रहे, खास करी के जब कोरोना के समय अले, कोविड के समय अले, देखो हर लोग कितना अपनो सुरक्षा के लिए सब लोग टीका लेके। और एक पहले देखबे कर लो सोना बहन कि हेपेटाइटिस बी के जे छे कि टीका के टीकाकरण के पूरा प्रचार चल ले। आरो जे लोग ले लेल के वहां त सुरक्षित छे, जे नए लेल के ना बहुत एहनो केस देखलो जा रहलो छे, बड़ी दर्दनाक स्थिति हो जाय छे ओकरो। एहि लेल हम सब जे छे कि अपनो ए कार्यक्रम के माध्यम से अपनो सब श्रोतागण से आग्रह करै छे, श्रोता भाई बहन से, अपनो किसान भाई बहन से जे भी सुनै छे, त ओकरा से आग्रह करै छे कि अपना से निश्चित रूप से जे आरो टीका जरूरी छे ओकरा लेना चाहिए, ले लेना ही बेहतर छे। आरो सबसे बड़ो बात ई छे सोना बहन कि अब त टीका लेके कोनो टको पैसा खर्चा नहीं होय छे।
2: बिल्कुल,
3: सब सरकारी अस्पताल में जहां भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र जे छे कि हर जगह हौ टीकाकरण जे छे कि हौ मुफ्त छे, त निश्चित रूप से टीका ले लेना चाहिए ताकि जे छे कि कोई गंभीर बीमारी से बच सको। और अभी के जे समय छे हौ त बड़ी बढ़िया समय चली रहलो छे कि अभी जे छे कि कई सरकार के जे योजना छे वो बढ़िया योजना छे, जकरा में कि चाहे गरीब गुरबा कोई भी रहे, समाज के अंतिम पायदान पर भी जे लोग खड़ा छे, हासिया पर छे, ओकरो अब कोई दिक्कत नहीं छे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जे छे कि ओकरा 5 लाख तक के कोई भी गंभीर बीमारी के भी मुफ्त इलाज सरकारी में तो होते छे, प्राइवेट में भी होय छे अब सोना बहन।
2: आयुष्मान भारत भी चलाया गया है, बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं चलाई गई है गैरू भाई। तो हम लोग कार्यक्रम को फिर से एक बार संगीत में करते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा लोकगीत।

0: हाँ अब के मेला घुमेबे। कितना बढ़िया ये पति पत्नी के बीच के वार्तालाप का ये गीत में ढाली के कलाकार ने सुनेल के बहुत बहुत धन्यवाद दे
1: और
0: छे।
1: बहुत ही झूमने वाला था गैरू
0: हाँ
1: भाई,
0: एकदम एकदम एकदम
1: मैं तो देख रहे थे आप तो पूरा झूमे जा रहे थे गीत के साथ
0: बिल्कुल
1: साथ,
0: बिल्कुल।
1: लगा अब आप नृत्य शुरू करेंगे, अब आप नृत्य शुरू करेंगे।
0: सुना बहन देखो कुछ कुछ है ना समय आ भी जाए छे, कुछ माहौल है ना बन जाए छे कि
1: हाँ।
0: मन के साथ साथ तन भी झूमे लगे छे।
1: बिल्कुल
0: तो सच में एहने गीत रहे। और अब किसान भाई बहनी सनी का जे छे कि कुछ मौसम के
1: मिजाज
0: सटीक
1: से भी अवगत करा
0: अवगत
1: दीजिए।
0: कराए दे छे। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर बिहार और बिहार आज के आरु ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जे छे कि आगामी 17 जून तक जे छे कि दक्षिण बिहार के जिला में 1 से 2 स्थान पर गरज के साथ साथ आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा चले के और हल्का मध्यम वर्षा हुए के संभावना छे। हालांकि भागलपुर और बांका में 13 से 14 जून यानी का भारी आय रात्रि तक जैसे कि भारी वर्षा होए के संभावना छे। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना छे। सापेक्ष आर्द्रता भोरे भोर 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहे के संभावना छे। पूर्वानुमान अवधि में 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दक्षिण पूर्वी हवा चले के अनुमान छे। आरो दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के किशनगंज अररिया सुपौल पूर्णिया कटिहार मधेपुरा एवं मधुबनी जिला में पहुंची चुकलो छे और आगामी 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के भागलपुर आरो बिहार के शेष भाग में आगू बढ़ी के परिस्थितियां जे छे कि वो अनुकूल बनलो छे यानी बस 2-4 दिन के देरी छे ओकरा बाद झमाझम बारिश शुरू हो जते। अब एने में समसामयिक जे सुझाव छे सलाह छे अपनो किसान भाई बहन सनी के लिए जे धान के खेती करी रहलो छे तो लंबी अवधि वाला धान के किस्म सबौर श्री स्वर्णा सब एक राजेंद्र मंसूरी राजेंद्र श्वेता स्वर्णा आरो VPT 5204 के नर्सरी आसमान साफ रहला पर स्थापित करे के सलाह देलो जाय छे। स्वस्थ पौधा के लिए नर्सरी में सरलो गोबर के खाद के व्यवहार करना उचित छे। नर्सरी में क्यारी के चौड़ाई 1.25 से लेकर 1.5 मीटर आरो लंबाई सुविधा अनुसार रखे के सलाह देलो जाय छे। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के नर्सरी तैयार करना चाहिए। बीज के व्यवस्था प्रामाणिक स्रोत से करना चाहिए और बीज गिरावे से पहले बीजोपचार अवश्य करी लेना चाहिए। और जितना क्षेत्र में धान के रोपा करना होते ओकरा जे छे कि ओकरा दशांश हिस्सा में बीज गिरावे के सलाह दिला जाए। बीज गिरावे से पहले 1.5 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करे के सलाह दिला जाए। मक्का के जे किसान छे सोना बहन ओकरा लेली खरीफ मक्का के बुआई आसमान साफ रहे पर ही कर तो बेहतर रहते। खेत के जुताई में से 10 से 15 टन गोबर सरलो खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करला से उपज अच्छा होते। बुआई के समय समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम स्फूर और 50 किलोग्राम पोटास के व्यवहार करें के जे छे की सलाह दिला जाए। अनुशंसित मक्का के किस्म जैसे सुवान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 गंगा 11 छे। और अभी बागवानी के समय जे छे की अब लीची बहुत जगह खत्म हो वाला छे हिन्ना लेकिन खासकर बरसात शुरू होय से पहले बगीचा के जुताई करे के सलाह और खाद उर्वरक के प्रयोग करे के सलाह देलो जाय छे। आसमान साफ रहला पर और जे पशुपालक भाई सनी छे सोना बहन ओकरा लेली छे कि गलघोटू और लंगरी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य कराना छे और सब दुधारू पशु में टीकाकरण अवश्य कराएं। आरो जे छे कि नया गेहूं गहूं गहूम के जे भूसा खिलाबे से पहिने करीब 2 घंटा पानी में फुलाए ले आरो 50 ग्राम खनिज मिश्रण आरो 50 ग्राम नमक चारा मिलाए कर दे के सलाह देलो जाय।
1: ये तो हुई मौसम की जानकारी और थोड़ा हम लोग भी प्रकृति की ओर चले और सुने एक प्यारा सा पर्यावरण गीत।
0: है मैडम।

0: बहुत बढ़िया, धरती के हरियर बनेबे
1: हम गाछ
0: लगेबे। और सही है,
1: सब जन यदि यही सोचे कि हम एक गाछ लगा देंगे
0: तो एक अभी गर्मी झेली रहल छौ सोना भाई, आए जे एसी फैल हो रहल छौ, कूलर फैल कर रहल छौ, एकरो नौबते नहीं,
1: बिल्कुल
0: छै कि नहीं। आरो समयो आबि रहल छै, अब
1: गाछ के नीचे बैठे बैठे ठंडी ठंडी हवाएं, गांव घर का माहौल तो बहुत ही अच्छा लगता है।
0: आरो आब वही बीचो में आम लीची जो गाछी तोड़ी का अपनो खा तो कत्ता मजा आई,
1: बहुत मजा
0: है कि नहीं। आरो देखो समय आबि रहल छै सोना बहन, अब इन्ने देखो उत्तर बिहार में जे छौ किशनगंज भेलौ, अररिया भेलौ, उन्ने मधेपुरा सुपौल किशन पूर्णिया, इन्ने मानसून लगभग आबि गेलो छै
1: बिल्कुल।
0: अभी मौसम विभाग के सूचना देलिए ओकरा में जानकारी भी छै, तो दो तीन दिनों में बेसी से बेसी चार से पांच दिन मैं जे छे कि अपनो भागलपुर बांका मुंगेर है सनी बगल के हिन्ना जे जिला छौ जे दक्षिण बिहार छे गंगा के दक्षिण में, तो वहूँ मानसून आबी छे
1: बिल्कुल।
0: और मानसून

0: जमीन हो जब तृप्त होते नी ओकरो बाद जे अपनो सनी गाछ रोप भो बीज रोपण कर भो पौधा लगे भो त हो एकदम मिट्टी में हाल बनी से 10-15 दिनों में
1: बिल्कुल
0: वह हाल में जब पौधा रोपण होते तो वो गाछ सुरक्षित रहते यानी कि लागी जेते
1: आरो
0: तब
1: फसल भी बहुत अच्छी होगी
0: उपजा
1: भी बहुत अच्छी
0: ना तो की होता है कि पूरा एकदम वातावरण देखो गाछ लगेला से ढेरी फायदा छे ओकरो फायदा से निकल लाभ लेबे आरो अभी जे छे कि आगु बढ़े छे कार्यक्रम में आरो सुने छे एक वार्ता जकरो विषय छे के गर्मा खरीफ फसलों में सम सामायिक कृषि
1: वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार मौर्य आइए सुनते हैं
2: किसान भाई गर्मा खड़ी फसलों में इस समय क्या क्या काम करें। मुख्य रूप से गर्मा में किसान भाई मक्का लगा रखते हैं, मूंग है, सूरजमुखी है, तिल है और गन्ना की खेती है। तो इस समय जैसा कि मौसम चल रहा है सिंचाई बहुत ज़रूरी है। मक्का में सिंचाई मोचा निकलने से दाना बनने तक खेत में पर्याप्त नमी रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सूखा की स्थिति में दाना में दूध बनते समय नमी के लिए सिंचाई आवश्यक करें। साथ साथ मक्का में जो किसान अभी लगाए हैं उसमें खरपतवार एवं निराई गुड़ाई के प्रबंध करें। खरपतवार निकालने के लिए बुवाई के 20 से 25 दिन बाद प्रथम निकोनी और दूसरी जो है आप 30 से 35 दिन बाद करें। साथ साथ मक्का की खेती में हमें यूरिया का उपरवेशन करना है, वो भी 35 से 40 दिन बाद जब घुटने के आकार का हमारा मक्का हो जाए तो उस समय 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन का उपरवेशन करें। उसी तरह से मूंग और उड़द में गर्मा मूंग एवं उड़द में 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रथम सिंचाई बुवाई के 20 से 25 दिन बाद करें, उसके बाद अन्य सिंचाई 12 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। लेकिन जब फसल पूर्ण पुष्पावस्था में हो तो सिंचाई नहीं करना चाहिए। अगर पूर्ण पुष्पावस्था में होगी तो उसमें फलन की समस्या होगी, विस्टेटी वनस्पति ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा, फलन कम होगी। तो मौसम को देखते हुए सिंचाई करें। दूसरा गर्मा मूंग में 2 से 3 गुड़ाई की आवश्यकता निकोनी की आवश्यकता होती है। प्रथम 25 से 30 दिन पे करें, दूसरा बुवाई के 45 दिन बाद करना चाहिए। लेकिन जो किसान खरपतवार नाशी का अगर प्रयोग करना चाहते हैं, अगर मूंग की फसल 18 से 20 दिन की हो गई हो तो इमीजाथाइपर जो परस्यूट नाम से बाजार में आती है कि 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोलकर छिड़काव करें। लेकिन छिड़काव करें उस समय खेत में नमी पर्याप्त होना चाहिए, नमी कम होने पर खरपतवार नाशी काम नहीं करेगा। मूंग में और उड़द में कुछ कीट और रोग मुख्य रूप से आते हैं, जिसमें से पीला सिरा मुजैक है। इस रोग के पहचानने के लिए फसल की पत्तियों पर 1 महीने के अंतर्गत दिखाई देने वाले लक्षण आ जाते हैं। रोगी पौधों की पत्तियों पर पीली सुनहरे चकते पाए जाते हैं। रोग की उग्र अवस्था में पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है, पत्ती निरूपित होकर आकार में छोटी हो जाती है, पुष्प एवं कलियाँ स्वस्थ पौधे की अपेक्षा कम लगती हैं एवं दाने सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं। यह एक विषाणु जनित रोग होता है जो सफ़ेद मक्खी कीट के द्वारा फैलाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए कीटनाशी सफ़ेद मक्खी को मारने का प्रयोग करते हैं। इसमें से मुख्य रूप से इमीडाक्लोरपीड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में या डाइथमेट 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो समय से मूंग हमारे लग गए हैं उनकी कटाई भी मतलब कि जो फरवरी के प्रथम से दूसरे पखवाड़े में लगे हैं उसकी तुड़ाई भी इसी माह में करने योग्य हो जाएगी। मूंग 2 से 3 बार की तुड़ाई की आवश्यकता होती है,

0: जैसे इसकी फलियां पक जाए, काली हो जाए, तो उसको तोड़ के रख लेना चाहिए। लेकिन अगर उड़द की खेती किए हैं तो उसकी सारी फली एक साथ पकती है, उसको काट के उसकी मड़ाई कर लेना चाहिए। मड़ाई के उपरांत दाने को सुखाकर ही भंडारण करें। उस समय नमी 12 से 13% होना चाहिए। ज़्यादा नमी की अवस्था पे मतलब कि मूंग या उड़द जो है खराब होने की संभावना रहती है। उसी तरह से आप इस समय तिल में हम क्या किसान भाई क्या क्या काम करें जो गर्मा तिल की खेती किए हैं। उर्वरक 40 से 50 किलोग्राम यूरिया फूल आने के समय अर्थात बुआई के 30 दिन बाद सिंचाई करके ऊपर वेषन करें। गर्मा तिल में 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं फूल आने एवं फली आने की अवस्था है। इसके लिए जल निकास की उचित प्रबंध होना चाहिए। अगर जिस खेत में अगर पानी रुक जाएगा तो तिल जो है सूखने का बहुत बड़ी समस्या होती है। जिस तरह से हमारा मूंग खराब होता है उसी तरह से तिल में भी पानी रुकने में समस्या हो जाएगी। जब भी सिंचाई करें हल्की सिंचाई करें। और जो तिल में जो नुकोनी करना है तिल लगाने के 20 से 25 दिन बाद करें और दूसरा जो है 35 से 40 दिन बाद करें। लेकिन तिल जो आपका मार्च में लग गया है उसमें आप फूल आ रहा होगा, ऐसी दशा में आप जो है सिंचाई की व्यवस्था उचित रखें।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी की बातों को हम लोगों ने सुना और इतनी अच्छी जानकारी के लिए देते हैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होता है। गहरू भाई लेते हैं सभी श्रोता भाई बहनों से विदा। सबको सोना का नमस्कार।
2: सबका गहरू का भी नमस्कार।

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से प्रस्तुत समाचार।
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रांची में प्रबुद्ध नागरिक संवाद में हुए शामिल। कहा, किसान हुए खुशहाल, गरीब कल्याण को मिला आयाम, देश की सुरक्षा अभेद्य। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की रामगढ़ खदान हादसे की जांच की मांग। प्रभावित परिवारों से मिलकर हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। दो सीटों के लिए तीन प्रत्याशियों के बीच रोचक मुकाबला। भाकपा माले इंडी गठबंधन को देगा समर्थन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया स्पष्ट, मैपिंग और इन्यूमरेशन के दौरान मतदाताओं से नहीं लिया जाएगा कोई दस्तावेज। सत्यापन अवधि में चिन्हित मतदाताओं पर ही होगा लागू। और धनबाद में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्राओं ने लिया हिस्सा। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय झारखंड दौरे के क्रम में रांची में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। श्री राय ने ओरमांझी के कुच्चू में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन प्रबुद्ध नागरिक से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में किसान खुशहाल हुए हैं और गरीब कल्याण को नया आयाम मिला है। श्री राय ने कहा कि देश के सतत विकास को लेकर कई पहल हुए हैं और देश की सुरक्षा अभेद्य है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 12 वर्षों का कार्यकाल भारत के लिए गौरव का कार्यकाल रहा है। इसमें गरीबों का घर बना, 81 करोड़ परिवार को आज मुफ्त का अनाज मिल रहा है, 5 लाख तक का इलाज प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से हो रहा है। आज प्रत्येक किसान भाइयों के घर में खुशहाली है किसी न किसी रूप में। आज विकास का दर बढ़ा है और दुनिया में हम चौथी अर्थव्यवस्था है।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। श्री मुंडा ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों और साधन विहीन लोगों के उत्थान के लिए लगातार काम हो रहे हैं।
3: अपने देश के 140 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए भविष्य का भारत को बनाने के लिए लंबे कालखंड तक भारत एक सशक्त राष्ट्र बन करके लगातार

0: दुनिया के सामने प्रधानमंत्री जी के अपनी मर्यादा को अपने सम्मान को बनाए रखे।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल निषेध बाधक पदार्थों की रोकथाम को लेकर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री सोरेन राजधानी के प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय से इस राज्यव्यापी अभियान को लेकर प्रचार वाहनों को रवाना करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रामगढ़ जिले के अरगड्डा में अवैध कोयला खदान में मृतक युवकों के परिजनों से मुलाकात की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि बंद पड़ी खदान में एक व्यक्ति के गिरने के बाद उसे बचाने गए चार लोगों की दम घुटने से मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्ट तंत्र का परिणाम है। श्री मरांडी ने मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। झामुमो के

घुटने से मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्ट तंत्र का परिणाम है। श्री मरांडी ने मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। झामुमो के

0: भावना देता हूँ।
1: संथाल और कोल्हान प्रमंडल में मॉनसून के दस्तक देने के बाद इसकी रफ्तार में कमी आ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि ये अगले 4 से 5 दिनों के अंदर राज्य के कुछ अन्य जिलों में प्रवेश कर सकता है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। केंद्र के अनुसार राज्य में 20 जून तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान तेज आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रांची में प्रबुद्ध नागरिक संवाद में हुए शामिल। कहा, किसान हुए खुशहाल, गरीब कल्याण को मिला आयाम, देश की सुरक्षा अभेद्य। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की रामगढ़ खदान हादसे की जांच की मांग। प्रभावित परिवार से मिलकर हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशियों के बीच रोचक मुकाबला। भाकपा माले इंडी गठबंधन को देगा समर्थन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया स्पष्ट, मैपिंग और इन्यूमरेशन के दौरान मतदाताओं से नहीं लिया जाएगा कोई दस्तावेज। सत्यापन अवधि में चिन्हित मतदाताओं पर ही होगा लागू। और धनबाद में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्राओं ने लिया हिस्सा, उत्कृष्ट प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 7:10 हुए हैं। लोकगीत सुनिए नवल किशोर नबीना से। आरंभ में इनसे सुनिए ये कृषि गीत।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: रानी अब

लोकगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं नवल किशोर और अबिना से झूमर। अब इनसे एक और झूमर सुनिए।

0: घर में।
1: आप सुन रहे थे लोकगीत कार्यक्रम में नवल किशोर नबीना को, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 7:30 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ। आयुष्मान योजना से करोड़ों लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर दिलाई जाएगी नई पहचान। प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला चरण आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। और बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। श्री नड्डा ने कहा कि देश में एम्स की संख्या आज 23 हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमारी के कारण किसी परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण का नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत जनता का अटूट विश्वास और सेवा भाव है, जिसके बल पर देश आज आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जितने काम हुए हैं और गांव गरीब के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपने आप में पूरे देश और दुनिया में बेमिसाल है। विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और विशेष करके गरीबों का कल्याण, किसान की खुशहाली, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण और इस तरह के बहुत से ऐसे काम किए जो अपने आप में उनके कार्यकाल का बेमिसाल नमूना है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाया जाएगा। श्री चौधरी आज पटना में पर्यटन विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में राजगीर, गया और नालंदा सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में राजगीर, मां मुंडेश्वरी मंदिर और करकटगढ़ जलप्रपात के लिए हेलीकॉप्टर सेवा तथा वाल्मीकि नगर के लिए रियायती वायु सेवा शीघ्र शुरू करने को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर को वैश्विक आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र और नालंदा को वैश्विक ज्ञान एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू की जाएगी। उन्होंने विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने तथा पर्यटकों के लिए पटना से गंतव्य तक सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। प्रदेश के सभी जिलों में स्थित केंद्रों पर आज मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही

0: भर्ती के लिए पहले चरण की लिखित परीक्षा दो पालियों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। इन पदों पर बहाली के लिए दूसरे चरण की लिखित परीक्षा 17 जून को होगी। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के अनुसार इस परीक्षा के माध्यम से 4,200 से अधिक पदों पर बहाली होगी। इधर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने पर्याप्त ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाते हुए पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। नाराज छात्रों ने स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ और पथराव किया। पटना के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने बताया कि पुलिस के हस्तक्षेप से हंगामे को काबू में कर ट्रेनों का परिचालन सामान्य किया गया।
1: अभ्यर्थी कुछ असामाजिक तत्व से जो ट्रेन को खुलने नहीं दे रहे थे, पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, तो उनके द्वारा पथराव इत्यादि किया गया। जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उन सभी का वीडियो फुटेज फोटोज इत्यादि हमारे पास उपलब्ध है। प्राथमिकी रेल थाना के द्वारा दर्ज करके उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
0: इधर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कहा कि सरकार इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
2: हम ये बात समझते हैं कि ये छात्रों का काम नहीं है, इसमें जरूर असामाजिक तत्वों का हाथ होगा और असामाजिक तत्वों की वजह से इस तरह का कृत हुआ है। इसकी सरकार जांच कराएगी और जांच कराने के बाद जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: वहीं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया है कि रेल प्रशासन और सरकार की ओर से परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा स्थल तक पहुंचने की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी।
3: इस घटना की जांच होनी चाहिए। अराजक स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये सरकार का, रेलवे प्रशासन का फेल्योर है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की 1,278 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री चौधरी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1,512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्य का भी शुभारम्भ किया। इधर मुख्यमंत्री ने खरीफ महाअभियान 2026 के तहत किसान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गया जी जिले के खिजरसराय में एक नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। यह केंद्र 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य का सर्वोच्च कानूनी पद रिक्त हो गया है। हालांकि इस्तीफे के कारण की अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पीके शाही बिहार की राजनीति और विधि जगत का एक जाना पहचाना नाम है। वे सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। महाधिवक्ता के रूप में उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में बिहार सरकार का प्रभावी ढंग से पक्ष रखा और सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाई। तत्कालीन महाधिवक्ता ललित किशोर के इस्तीफे के बाद पीके शाही को 16 जनवरी 2023 को बिहार का

0: महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जो सरकार को कानूनी सलाह देने के साथ साथ उच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक मंचों पर उसका पक्ष रखता है। बिहार के 3 पारंपरिक उत्पादों, नालंदा के 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट, भोजपुर की पीढ़िया प्रिंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है। इससे इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य के शिल्पकारों, बुनकरों, कलाकारों और संबंधित संस्थाओं को बधाई दी। श्री चौधरी ने कहा कि यह उपलब्धि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला कौशल और ग्रामीण प्रतिभा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली है। नालंदा जिले की प्रसिद्ध 52 बूटी बिहार की प्राचीन बुनकरी परंपरा का एक अद्वितीय उदाहरण है। इस विशिष्ट वस्त्र कला में कपड़े पर 52 प्रकार बौद्ध एवं सांस्कृतिक प्रतीकों के हथकरघे से बना जाता है। इस कला में प्राकृतिक रंगों एवं पारंपरिक प्रतीकों के माध्यम से लोक जीवन, पारिवारिक संबंधों, आस्थाओं और ग्रामीण संस्कृतियों का सजीव चित्रण किया जाता है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस अवसर पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। रक्तदान के महत्व के बारे जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है, मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। इस अवसर पर पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला प्रशासन के अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और आम लोगों ने रक्तदान किया। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। बिहार इंटरवेंशनल काउंसिल 2024 के 4th वार्षिक सम्मेलन का आज पटना में किया गया। कार्यक्रम में हृदय रोगों के आधुनिक नई तकनीकों और जटिल मामलों के प्रबंधन पर विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर BB भारती ने कहा कि मोटापा, तनाव और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण हृदय रोगों के मामले बढ़ रहे हैं।
1: जो रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का, वो बढ़ रहा है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए, नए रिस्क फैक्टर में जैसे कि ओबेसिटी, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, इसके अलावा जो फिक्स एजिंग है, इसके अलावा है, लिपिड है, जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हाइपरटेंशन है, ये सब सारी बातें जो एक्चुअली एजुकेशन का अभाव है भारतीय लोगों में। समझना पड़ेगा कि किस चीज के कारण हार्ट अटैक होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए।
0: असम के जोरहाट एयरबेस में विमान हादसे में शहीद हुए बिहार के 2 वीर सपूतों, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार और अग्निवीर दानिश आलम का पार्थिव शरीर आज पटना के बिहटा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की ओर से दोनों शहीदों को सैन्य सम्मान दिया गया। श्रद्धांजलि के बाद अग्निवीर दानिश आलम का पार्थिव शरीर भोजपुर जिला और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार का पार्थिव शरीर जहानाबाद जिले के लिए रवाना कर दिया गया। प्रदेश में मॉनसून की उत्तरी सीमा अब मुजफ्फरपुर होकर गुजर रही है। मॉनसून के प्रभाव से कैमूर, औरंगाबाद और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है।
2: दिनांक 15 जून राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास आज हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रोहतास पुलिस ने फ्लिपकार्ट के महंगे सामानों की हेराफेरी कर ठगी करने वाले अंतर जिला गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले में एक्सिस बैंक के ATM को तोड़कर नकदी चोरी के मामले में पुलिस ने घटना में इस्तेमाल वाहन को मोहनिया से बरामद कर लिया है। SDPO संजीव कुमार ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ। आयुष्मान योजना से करोड़ों लोगों को कैशलेस इलाज मिल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर दिलाई जाएगी नई पहचान। प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला चरण आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। और बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने अपने पद से दिया इस्तीफा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी एट 90 इस साल की आवाज दिल से दिल नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरव 90 साल

0: आकाशवाणी पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है अररिया जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।
1: अररिया जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां मौसम में ठंडक बनी हुई है, वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। बारिश के चलते खेतों में नमी बढ़ गई है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। विशेषकर धान की रुपाई और अन्य खरीफ फसलों की तैयारी के लिए यह बारिश लाभकारी साबित हो रही है। हालांकि लगातार के कारण कुछ इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इधर जिले में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर प्रभारी सचिव मोहम्मद सोहेल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी विनोद तुहन, पुलिस जितेंद्र कुमार तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि जिले की 72 पंचायतें पूर्ण रूप से तथा 60 पंचायतें आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में आती हैं। बैठक के दौरान 15 जून तक तटबंधों की मरम्मत कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में 165 नावें, 10 मोटरबोट, 40,790 पॉलिथीन शीट्स, 135 लाइफ जैकेट सहित अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 397 सामुदायिक रसोई केंद्र तथा 363 राहत शिविर भी चिन्हित किए गए हैं। प्रभारी सचिव ने सभी अंचलाधिकारियों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बीते दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना से सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों के बैंक खातों में पेंशन राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया। अररिया जिले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 2,59,648 लाभुकों के 30,34,00,000 रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। इस अवसर पर अररिया समाहरणालय स्थित सभागार में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभुकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक माह की 10वीं तारीख को पेंशन की राशि लाभुकों के खातों में अंतरित की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जून 2026 से के सभी प्रखंडों और पंचायतों में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, टिकाऊ और लाभकारी कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक बनाना है। इस अवसर पर जिला कृषि आत्मा परियोजना निदेशक गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

0: उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने, मिट्टी के परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत जिले में 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की हस्तलिखित पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण कार्य जारी है। इस अभियान के तहत अब तक जिले में कुल 176 पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, पुस्तक प्रेमियों तथा निजी संग्रहकर्ताओं से अपील की गई है कि यदि उनके पास ताड़पत्र, कागज अथवा ताम्रपत्र पर लिखी गई 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक या सामाजिक महत्व हो, तो वे इसकी जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं। जिला एवं कला संस्कृति पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के तहत किसी भी संग्रहकर्ता से मूल पांडुलिपि नहीं ली जाएगी, केवल पांडुलिपियों का फोटोग्राफ और आवश्यक विवरण ज्ञान भारतम ऐप पर अपलोड किया जाएगा, जिससे उनका डिजिटल अभिलेख तैयार किया जा सके। जिले के सभी प्रखंडों में आगामी 17-18 जून 2026 को 2 दिवसीय प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना है। विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, निबंधन, दस्तावेज का सत्यापन, ईकेवाईसी प्रक्रिया, लंबित मामलों का निष्पादन तथा स्वीकृत लाभों का त्वरित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को कार्यालयों में अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़े। शिविर में सुचारू और में पदाधिकारियों की प्रतियुक्ति की गई है। जिला पदाधिकारी विनोद दुहन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार की संयुक्त अगुवाई में अररिया और जीरोमाइल राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में अतिक्रमण किया। अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि, सड़क किनारे सुरक्षा क्षेत्र तथा राइट ऑफ वे पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में जिले से होकर गुजरने वाली सभी राष्ट्रीय मार्गों को चरणबद्ध तरीके से मुक्त किया जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे अररिया जिले के हलचल, प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:52 होने को हैं। इस वक्त आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं विजय कुमार दास। आरंभ में इनसे सुनिए नेपाली की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आप सुन रहे थे विजय कुमार दास को। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 8 बजे हैं, वक्त है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। आगाज करते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ से। फिल्म का नाम है तुम बिन, कलाम है फैज़ अनवर की। फैज़ अनवर के कलाम को मौसिकी से संवारा है निखिल विनय ने।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जिस फिल्म में सुनिए एमएम करीम को, गीतकार हैं सईद कादरी और संगीतकार हैं एमएम करीम।

जिस्म फिल्म में आप सुन रहे थे सईद कादरी की रचना, इमाम करीम के संगीत निर्देशन में आवाज़ थी के की। अब सुनिए उमराव जान फिल्म में आशा भोसले को। गीतकार हैं शहरयार और संगीतकार हैं खयाम।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: प्रेम गीत फिल्म में सुनिए अनुराधा पौडवाल को। गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार हैं जगजीत सिंह।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

फिल्मी गीत आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। कार्यक्रम है रजनीगंधा। अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों ने, गीत लिखा है संतोष आनंद ने।

अब सुनिए संतोष आनंद की रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है शोर, आवाज है लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की।

रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्मी गीत, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 8:45 होने वाले हैं। दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है और इसी रिश्ते

0: रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: A country with 1.4 billion inhabitants.
3: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
2: Frontier models is spearheading global innovation.
1: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है। समाचार

0: बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
3: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
2: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
4: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
2: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ा पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में।

0: भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation level talks at historic Villa Carolus at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolus at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defense, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolus. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती हैं, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
3: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जामे शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैरालिस डेस एक्सपोजिशन में भारत इन्वेस्ट का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। फरीकैन के दरमियान तबादले ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत कलीदी शोबों में खसूसी आलमी जामे शराकत दारी को हाल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और सीनियर हुक्काम मौजूद थे। सदर मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और खारजी उमूर के वजीर जीन नोएल बैरोट और दिगर की। इससे कबल दिन में वज़ीर आज़म मोदी और फ्रांस के सदर मैक्रों ने नीस में पहले देश एक्सप्रेसियो में भारत इन्वेस्ट्स तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा ये अहम तरीन तकरीब भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स, इख्तराकार, मुहक्किकीन और सरमायाकारों को आलमी इख्तराई फंड्स और फुटप्रिंट के साथ यकजा करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के टैलेंट और यूरोपीय कैपिटल के दरमियान एक पुल के तौर पर उभर रही है, जो नौजवान इख्तराकारों को आलमी महारत के साथ मुंसलिक होने के नए मौके वज़ा कर रही है। भारत के स्टार्टअप इनकलाब को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आलमी चैलेंजों के लिए उन शोबों में हल तैयार कर रहे हैं जो मसनूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर माहौल साजगार तवानाई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई इख्तरा तक का अहाता करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं और ये इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के उसूल के जरिए इंसान मरकूज जिद्दतकारी की क्यादत के मॉडल को फरोग दे रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत फ्रांस ताल्लुकात की तकवियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जब बहुत से मुल्क तिजारत और जामे तआवुन में मसरूफ हैं, ऐसे में चंद मुल्कों के ताल्लुकात को

पगला कहीं का। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। अब सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत रवि के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है नीलकमल, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

सफ़र फ़िल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार थे इंदीवर और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अब सुनिए मेरे हुजूर फिल्म में मोहम्मद रफ़ी को। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मेरे हुजूर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। और कार्यक्रम के अंत में सुनिए खामोशी फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं हेमंत कुमार।

0: फिल्म संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। 11 बजने वाले हैं, दिल्ली से सुनिए समाचार पहले हिंदी में।
1: सभा के आज रात के प्रसारण में हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री जे एस।
0: दिल्ली से सुनिए अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम।
1: कला कर रहे हैं
0: एस श्रीराम, इनसे
1: मृदंगम पर
0: नाटिक वोकल
1: और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री जे एस श्रीराम। ही इज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय वी एस पी गायत्री शिवानी, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पेरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम by श्री एम चंद्रकांत।
1: श्री जे एस श्रीराम एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान आकेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अभी वही संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसन कीर्तन में भी माहिर है और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
2: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। He is known for his expressive and dynamic style of singing. He hails from a distinguished musical family. Sriram was initiated into music by his mother, Srimati J. Chidrupa Lakshmi. Later, trained under Vidwan Dwaram Satyanarayan Rao and Laya exponent Vidwan Akella Mallikarjuna Sharma. He is a MA Music Gold Medalist from Sri Suravaram Prataparedi Telugu University, Hyderabad, where he is currently pursuing his PhD in music. Equally adept at Carnatic vocal concerts and Nama Sankirtanas, he performs at major festivals in India and abroad. As a dedicated teacher, he has trained many students to concert level. He also volunteers with Sampradaya, a non-profit organization promoting fine arts.
1: श्री जे श्रीराम अपने गायन का आरंभ वालाजी पेटा वेंकटर अमना भागवतर की एक कृति से कर रहे हैं जो राग ललिता तथा आदि ताल में निबद्ध है।
2: श्री जे श्रीराम begins his vocal recital with a composition of वालाजी पेटा वेंकटर अमना भागवतर in the राग ललिता set to आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chapu Taal.

0: श्री जी श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे एस श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाई विद्वान पेरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाई श्री यम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसवी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे एस श्रीराम इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय वीएसपी गायत्री शिवानी, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पेरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत। दिस कॉन्सर्ट वॉज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद फॉर रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा and was brought to you from the Delhi State.

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाई विद्वान पेरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाई श्री यम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसवी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे एस श्रीराम इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय वीएसपी गायत्री शिवानी, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पेरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत। दिस कॉन्सर्ट वॉज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद फॉर रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा and was brought to you from the Delhi State.

0: कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
2: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence,

उत्पन्न होती है हमारी आज की ये सभा। सुबह 5:48 पर हम फिर आपके साथ होंगे। अभी हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।